आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्व

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: बेचकर अपना फायदा उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही किसान भाइयों। आज हमारे साथ थे उन्नत कृषि कार्यक्रम में डॉक्टर पवन कुमार, जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप इस कार्यक्रम में आए हमारे साथ। और किसान भाइयों, आगे आपसे फिर मुलाकात होगी अलग विषय के साथ, अलग चर्चा के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।
1: उन्नत कृषि सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों, इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाली सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट और पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज अंग उमंग में हम बात करने वाले हैं भागलपुर के बारे में। जी हाँ, भागलपुर के नामों के बारे में। आपको पता तो होगा ही कि भागलपुर को अंग प्रदेश, अंग देश जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी भागलपुर के कई सारे नाम हैं और आज हम उन सारे नामों के बारे में बातें करने वाले हैं। बहुत सारी बातें होने वाली है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। तो चलिए हम बातें शुरू करते हैं भागलपुर के बारे में, भागलपुर के नामों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम भागलपुर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। भागलपुर बिहार के पूर्वी भाग में बसता है और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये तो सभी को पता है, यहाँ गंगा माता को कितना पूजा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो गंगा नदी ही है। इसके अलावा कुछ छोटी नदियाँ और नाले हैं, लेकिन

करें कोशी की। हालांकि ये सीधे भागलपुर से नहीं गुजरती है, पर कोशी का प्रभाव भागलपुर पे जरूर पड़ता है। और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि भागलपुर के अलग अलग नामों के बारे में। सबसे पहले तो हम जो भागलपुर आज के समय में इस नाम का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी सी कहानी मानी जाती है कि है ये एक लोक मान्यता है। इस नाम को समझे तो इसका मतलब होता है भाग्य का नगर, समृद्धि का नगर। और अभी यानी कि आधुनिक दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अगर कोई नाम है तो वो भागलपुर ही है। इसके अलावा विदेशों में, देशों में हम एक और नाम से जाने जाते हैं, वो है सिल्क सिटी। जी हाँ, सिल्क सिटी बहुत ही प्यारा सा नाम है। और सिल्क सिटी इस नाम से क्यों जाना जाता है ये तो आप सभी को पता होगा ही, क्योंकि यहाँ पर सिल्क से जुड़े हुए जो बहुत सारे व्यवसाय हैं वो हैं। और यहाँ के जो सिल्क के बने कपड़े होते हैं अपने देश भर में तो जाते ही हैं, साथ ही विदेशों में भी भागलपुरी सिल्क की बड़ी डिमांड रहती है। इसी वजह से भागलपुर को लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम की, तो वो है चंपापुरी, चंपा नगरी, चंपावती। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब यहाँ पर चंपा के पेड़ बहुत सारे हुआ करते थे, जिसकी वजह से इस जगह को चंपावती या चंपा भी कहा जाता था। अगर हम बहुत सारी किताबों में, लिटरेचर में देखें तो चंपावती नाम से भी इस जगह को जाना गया था। और अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में चंपापुरी को एक बहुत ही पवित्र जगह माना गया है। और साथ ही संस्कृत की कविताओं में और कालिदास के लेखों में अक्सर इस जगह को अक्सर मालिनी स्थित चंपा भी कहा गया है। तो ये कुछ जो नाम है बहुत ही रिलीजियस नाम है, धार्मिक, सांस्कृतिक और साथ ही लिटरेचर से जुड़े हुए नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो अंग देश के नाम से भी भागलपुर को जाना जाता है। और अभी भी कई जगहों पर हम भागलपुर को अंग प्रदेश के नाम से संबोधित करते हैं। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो पहले 16 प्राचीन महाजनपद थे उनमें से एक हमारा ये अंग देश था। और यहाँ पर राज कौन करते थे? जी हाँ, यहाँ पर राज करते थे कर्ण। और इन्हीं के राज से जो अभी हमारे भागलपुर का नाम है ना वो पनपा था, वो बना था। आप सभी को ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि राजा कर्ण कितने बड़े दानवीर थे। मतलब उनसे उनका कवच मांग लिया गया था तो उन्होंने वो भी दे दिया था, वो भी युद्ध से पहले। जो भी राजा कर्ण के देश में यानी कि अंग देश में आता था उसके भाग्य उदय हो जाते थे। इसी वजह से तब इस जगह का नाम पड़ गया था। जो कुछ बाहर की नगरी से, बाहर के देशों से आकर यहाँ बसे, अंग देश में बसे या उनका यहाँ पर उद्धार हुआ तो उन्होंने अंग प्रदेश को भगदत्तपुरम कहना शुरू कर दिया। भगदत्तपुरम यानी कि जो जहाँ पर किसी का भाग्य उदय हो जाए, भाग्य बन जाए। तो भगदत्तपुरम से बाद में ये भगदत्तपुरम थोड़ा बिगड़ता हुआ, थोड़ा बनता हुआ भागलपुर बन गया। और अब हम इसे भागलपुर कहते हैं, यानी कि जहाँ लोगों के भाग्य उदय हो जाते हैं, भाग्य बन जाते हैं। इसके अलावा हम और कुछ नामों की बात करें ना तो वो जो कुछ नाम है वो मालिनी है। जी हाँ, ये बहुत ही पोएटिक सा नाम है। कवि अपनी कविताओं में भागलपुर को, अंग प्रदेश को मालिनी नाम से संबोधित करते थे। मालिनी एक नदी का नाम है और जिसके किनारे चंपा बसता था। तो इसी वजह से संस्कृत की कविताओं में, ग्रंथों में पोएटिक रेफरेंस के तौर पर मालिनी नाम का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि मालिनी कभी भी ऑफिशियल नाम नहीं बना, लेकिन कुछ कवियों ने मालिनी नाम से भी भागलपुर को संबोधित किया। इसके अलावा हम बात करें तो भागीरथपुर, जी हाँ, भागीरथपुर नाम से भी भागलपुर को जाना गया था एक वक्त पे। अगर हम बात करें ना तो अभी हमारे पवित्र धरती को जो पवित्र बनाती है यानी कि गंगा नदी, गंगा नदी को धरती पर लाने का अगर श्रेय दिया जाता है लोक मान्यताओं में, पौराणिक कथाओं में, तो वो भागीरथ ऋषि को दिया जाता है। और इसी वजह से लोक कथाओं और पुरानी मान्यताओं में भागलपुर के आसपास के जो क्षेत्र है ना उन्हें कभी कभी भागीरथपुर भी कहा गया, क्योंकि हमारा जो भागलपुर है वो गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और कई बार होता है ना कि हम किसी शब्द को किसी और तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कोई और उसी शब्द को किसी और तरीके से बोलता है, लिखता है। उसी का एक उदाहरण है भोगलपुर। जी हाँ, जिसे हम भागलपुर के नाम से जानते हैं ना, मुगल कालीन दस्तावेजों को आप अगर देखेंगे तो कुछ जगहों पर इसे भोगलपुर के नाम से संबोधित किया गया है, भोगलपुर लिखा गया है, जो कह सकते हैं कि उच्चारण करने का सिर्फ एक भिन्न तरीका है। लेकिन कुछ मुगल के लेखकों ने भागलपुर को भोगलपुर बोला और भोगलपुर लिखा, तो कुछ दस्तावेजों में आप भोगलपुर भी देखेंगे, पढ़ेंगे। और इसके साथ ही बात करें ना तो एक ऐसा भी वक्त था जब भागलपुर को प्राची देश भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भागलपुर का जो क्षेत्र था ना वो प्राची देश के पूर्वी भाग में आता था। इसके साथ ही अगर हम बात करें ना अंग प्रदेश के नाम के पीछे अगर हम कुछ पौराणिक

0: कथाओं को समझें, मान्यताओं को समझें, तो प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अंग, और वो इस जगह पर राज किया करते थे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया अंग प्रदेश, यानी कि राजा अंग का प्रदेश। हमने आपको बताया कि कुछ कवियों ने, लेखकों ने हमारे इस अंग प्रदेश को मालिनी नाम से भी संबोधित किया है। मालिनी नगर का ही मतलब होता है, जहाँ पर सौंदर्य हो, फूल हो, वृक्ष हो। रामायण और महाभारत में भी भागलपुर अंग प्रदेश का बहुत जिक्र मिलता है। तो हमारी ये जो अपनी धरती है, भागलपुर की धरती है, और इसका जो नाम है भागलपुर, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग कहानियों में, अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग दस्तावेजों में भागलपुर के नाम को दिखाया गया है, लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने भागलपुर के लगभग, जी हाँ, या तो फिर कह सकते हैं कि सारे नामों के पीछे की वजह को समझ लिया होगा। अगली बार अगर कोई पूछे कि तुम्हारे शहर का नाम अजीब सा क्यों है भागलपुर, तो उसे बहुत अच्छे से बताइएगा, भागलपुर का मतलब होता है जहाँ लोगों के भाग्य उदय होते हैं। आज के अंग उमंग कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। आप हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
5: खुद भी बचे देश भी बचाए।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुश।

0: खुशहाली तक। उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे हर रोज़ के खास कार्यक्रम, जी हां, किसान भाइयों को समर्पित हमारा यह कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम। तो इसमें बातें होती हैं उन्नत खेती बाड़ी की और आज हम लेकर आए हैं धान के बारे में कुछ बातें। जी हाँ, आज हम जानेंगे कैसे इनके रोगों का प्रबंधन करें, धान में लगने वाले रोग का प्रबंधन हम ससमय कैसे कर पाएँ। तो इस विषय को कर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बिहार क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो बिहार क्षेत्र में जो लगने वाले धान हैं उनमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
1: बिहार में मुख्यतः जो है कुछ फफूंद से रोग लगते हैं, कुछ बैक्टीरिया से लगते हैं, कुछ विषाणु से, लेकिन मुख्यतः यहाँ कुछ रोग हैं जो कि किसान भाई जानते भी होंगे। जैसे कि अगर फफूंद से जो रोग होते हैं उसमें आजकल फाल्स मट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, फाल्स मट की जिसको कई जगह कलिया बीमारी भी कहा जाता है। अच्छा। इसके साथ बैक्टीरिया से जो बीमारी होता है या जीवाणु से जो बीमारी होता है उसको हम लोग जीवाणु पर्ण अंगमारी या अंग्रेजी में उसको बैक्टीरियल लिप ब्लाइट कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया से होता है। इसके साथ ही जो है ब्राउन स्पॉट, जो कि भूरा धब्बा, पत्तियों पर भूरा धब्बा आ जाता है। साथ ही साथ जो है इसमें सीथ ब्लाइट होता है
0: जी।
1: सीथ ब्लाइट में जो होता है वो पत्तों पे जो है जैसे सांप के ऊपर जो होता है चकता चकता होता है, उस तरह से चकता चकता हो जाता है।
0: अच्छा।
1: इसके साथ ही जो है कुछ न्यूट्रिएंट से कमी के कारण बीमारी होता है, जैसे कि जिसको कि खैरा बीमारी कहते हैं। किसान भाई जानते होंगे कि जिंक की कमी से, और ऐसा कहा भी जाता है कि 3 साल के अंतराल पे आप अपने खेत में जो है एक बार जरूर जिंक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिंक की कमी होने के कारण से बिचड़ा जब आप लगाते हैं उसके बाद जो है इसका जो है सिम्टम दिखाई देने लगता है। तो ये जो प्रमुख रोग हैं मुख्यतः जो है आज के जमाने में, आज के स्थिति में, आज के परिस्थिति में ये बीमारी आ रहे हैं। लेकिन किसान भाई को मैं ये कहूँगा कि फाल्स मट जो है अभी इमर्जिंग प्रॉब्लम है, जिसको कि उसमें आप जानते हैं कि जब धान पक जाता है उसके बाली में जो है पीले रंग का जो हल्दी के समान अब जब खेत में के अंदर जाते हैं तो आपके कपड़ों पे वो चीज़ लग जाता है।
0: अच्छा।
1: और ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा आजकल देखा जाता है, तो इसको किसान भाइयों को पहले से इसका प्रबंधन करना पड़ेगा। नहीं तो फिर इसका प्रबंधन अगर पहले से नहीं करेंगे तो इससे बचाव आप नहीं कर सकते
0: जी।
1: इसलिए ये प्रमुख रोग हैं जो कि बिहार के विभिन्न भागों में किसानों के द्वारा बताए हुए और हम लोगों के द्वारा भी जो है किसान जो जगह जगह रिपोर्ट करते हैं उसके अनुसार ये प्रमुख रोग हैं। लेकिन मुख्यतः किसान भाई आप लोग फाल्स मट या कलिया बीमारी पे आप लोग विशेष कर ध्यान देंगे, और ये मोस्टली आप देखेंगे कि जो हाइब्रिड धान है उसमें इसका बीमारी का प्रकोप होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और हाइब्रिड में क्योंकि आप नत्रजन नाइट्रोजन या जो आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा मात्रा में करते हैं, और हाइब्रिड में जो है ये इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। अगर पिछले साल किसी किसान भाई के खेत में बीमारी आया हो तो उसका प्रबंधन के लिए अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि आने के बाद आप इससे बचाव आप करना मुश्किल होता है। इसके बचाव करने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है जब फ्लावर आ जाए या फूल बन जाए या 50% फ्लावर आ जाए उस समय एक छिड़काव जरूर कर दें। अगर आपके विगत वर्ष में ये बीमारी आपके खेत में या कहीं भी किसान अपने गांव में या कहीं भी आया हो, क्योंकि इसके फफूंद जो हैं 11 महीने तक मिट्टी में जो है जीवित रह सकते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं बिहार क्षेत्र में लगने वाले धान में रोग, और रोग प्रबंधन के लिए अभी इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
1: जैसे किसान भाई अभी तो लगा रहे होंगे, जैसे कि अभी तैयारी कर रहे होंगे धान का, गेहूँ तो अभी हो गया होगा, खेत आपका खाली होगा, और अभी के स्थिति में क्योंकि अभी आपका उत्तम समय है आप उसको कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आपके खेत में जो है बहुत सा बैक्टीरिया, मिट्टी जनित कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फफूंद मिट्टी जनित होते हैं। तो मिट्टी का अब बाद के अवस्था में क्योंकि उसके जो कारक हैं वो मिट्टी में हमेशा रहते हैं, तो उस कारक को आपको मारना होगा। अगर उसका जीवन चक्र अगर आप रोक देंगे तो वो जो है आप उससे बचाव कर सकते हैं,
0: वो खुद ब खुद मर जाएगा
1: जी। अभी का स्थिति में ये है कि अब अभी जो उत्तम समय, क्योंकि मौसम

0: भी काफी ज्यादा गर्म है।
1: बिल्कुल।
0: तो आप अगर गहरी जुताई करेंगे, क्योंकि हम लोग बताते भी हैं, लेकिन अभी समय है, क्योंकि अभी के समय में उपयुक्त यही है, क्योंकि धान तो आप अभी आप लगाने की तैयारी कर रहे होंगे, तो अभी का उपयुक्त, क्योंकि खेत आपका खाली होगा, तो आप गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करने से जो नीचे का मिट्टी है ऊपर आ जाता है, और जिससे जितने भी आपके फफूंद के कारक होंगे या जीवाणु के कारक होंगे, या इवन जीवाणु और फफूंद ही नहीं, आप कीट भी जो होंगे वो ऊपर की सतह पर आ जाएंगे।
1: अच्छा।
0: और धूप लगने के कारण से वो जो है मर जाएंगे। तो अभी का समय काफ़ी उत्तम है, किसान भाई अगर इसको करेंगे तो न केवल धान के रोग से, आप उसके कीट से भी बचाव कर सकते हैं
1: गहरी जुताई से।
0: जी
1: जी डॉक्टर साहब, रोग प्रबंधन के लिए क्या बीजोपचार बहुत ज़रूरी है?
0: जैसे कि हम जानते हैं कि बीमारी कई तरह से होता है, जो फफूंद जो है, जैसे कि पहले मैं कहा भी कि कुछ फफूंद जो है मिट्टी जनित होते हैं, कुछ फफूंद जो है बीज जनित होते हैं, कुछ जो है हवा के द्वारा आते हैं।
1: अच्छा।
0: तो आपको जो है, आपको ऐसा बीज का इस्तेमाल करना है कि वो जो है उसमें जो है रोग लगने का चांसेस कम रहेगा। तो आजकल सरकार का भी ये है कि हमको बीज उपचार करना है। बीज उपचार करने से ये फ़ायदा है कि आप जो है एक आवरण बन जाता है, और आप बाज़ार में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है फफूंद नाशक, जो कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और सिस्टमिक फंजीसाइड का मिश्रण का जो मिलता है बाज़ार में, जिसमें कि मैनकोजेब होता है और कार्बेंडाजिम होता है, उसका मात्रा जो है आप 2 ग्राम मात्रा लेकर आप जो है बीज उपचार, बीज लगाने के पहले, क्योंकि आप जब बिचड़ा लगाते हैं कि एक बार पैसा आप इतना लगाते हैं, बीज खरीदते हैं, फिर उसका बीज स्थल तैयार करते हैं, तो बीज लगाने के पहले आप बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने से फ़ायदा क्या है, जो 2 फफूंद नाशक हैं, जो कि ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं, वो क्या करता है कि आपके ऊपरी आवरण से जो भी फफूंद लगेगा, जैसे कि ब्राउन स्पॉट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, बिचड़ा में ब्राउन स्पॉट बहुत देखा जाता है, कहीं कहीं ब्लास्ट भी देखा जाता है, झोंका बीमारी भी देखा जाता है, और ख़ासकर जो है देखेंगे कि जो सेंटेड राइस है, जो सुगंधित धान है, उसमें होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए जो 2 फफूंद नाशक है, उसमें 1 फफूंद नाशक जो है आपके आवरण को जो भी बीमारी लगेगा उसको रोकेगा, और दूसरा जो फफूंद नाशक है, जो कि सिस्टेमिक फंजीसाइड है, वो बाद के अवस्था में भी जो पौधा आपका बड़ा हो जाता है, तो वो जो है उससे रोगों से आपको बचाव करेगा। इसलिए किसान भाई का मेरा सलाह है कि जब भी आप बिचड़ा लगाएं, बीज उपचार जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का जो फफूंद नाशक का जो मिश्रण आता है, इसका 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप इस्तेमाल करें, और उसके बाद ही उसको आप लोग अपने खेत में बिचड़ा लगाएं।
1: एक जो सवाल है किसान भाइयों की तरफ से आता है डॉक्टर साहब, कि कम पानी और अधिक पानी की स्थिति में कौन से रोग लगते हैं और उनका हम कैसे निवारण करें, ये जानना चाहते हैं हमारे किसान।
0: जैसे कि हम जानते हैं कि कोई कोई एरिया में जो है ऊपरी सतह होता है, इसको कि अपलैंड कहा जाता है, कोई कोई जो है लोलैंड होता है। अपलैंड में क्या होता है कि पानी उसमें ठहरता नहीं, और लोलैंड में जो है पानी लगा रहता है,
1: अधिक जमा हो जाता है।
0: तो अपलैंड की स्थिति में दूसरा बीमारी लगता है, और उसका बचाव के लिए आपको अलग से, क्योंकि पहचान जब तक आपको होगा नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे, और लोलैंड की स्थिति में दूसरे बीमारी का लगता है। तो ऊपरी सतह पे या अपलैंड की स्थिति में प्रमुख रूप से 2 बीमारी हैं जो कि देखा जाता है प्राय बिहार में। पहला जो है भूरी चित्ती, जिसको अंग्रेजी में ब्राउन स्पॉट कहा जाता है, और दूसरा जो है ब्लास्ट है, जिसको कि झोंका कहा जाता है। अब इसको जो है, जो भूरी चित्ती है, आप देखेंगे कि जैसे ही बिचड़ा लगाते हैं पत्तियों पे भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, और बाद के दिनों में जो है ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं। तो ये मुख्यतः जो है अपलैंड की स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में बीज उपचार तो ज़रूर करें आप। उसके बाद जो है आप कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा, अगर मान लीजिए कि आपके अगर बिचड़ा में आ जाए या खड़ी फसल में आ जाए, तो कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बीमारी है, जिसको कि हम लोग झोंका या ब्लास्ट कहते हैं, पूरा का पूरा पौधा आपका ब्लास्टेड, मतलब पूरा जला हुआ दिखाई देगा, और ख़ासकर आप देखेंगे कि आप जो सेंटेड है उसमें ये ज़्यादा लगता है। उसके लिए, उसके बचाव के लिए आपको करना क्या है कि ये भी ऊपरी ज़मीन में होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसके लिए ट्राईसाइक्लाजोल नाम का एक फफूंद नाशक आता है, उसका जो है 0.5 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की प्रति लीटर में आप पानी में डाल के, या 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमा जो दूसरा आपका प्रश्न था जिसमें

0: कि कहा गया है कि निचली सतह में, निचली सतह में दो बीमारी होने का चांसेस रहता है जो बिहार में मुख्यतः देखा जाता है। पहला जो है बैक्टीरियल लिप ब्लाइट है, जिसको कि पर्णअंगमारी कहा जाता है, वो जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। ये बीमारी दो अवस्था में होता है। पहली अवस्था में जब आप बिचड़ा लगाते हैं तो उस स्थिति में पूरा पौधा आपका जला हुआ दिखाई देता है, और दूसरा स्टेज है जब आपका टिलरिंग स्टेज होता है उसमें आपको ये ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो उस स्थिति में आपके लिए जो है बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है इसमें कि आपको बैक्टीरियासाइड के साथ एक फफूंदनाशक का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना है। अगर ये बीमारी आ जाता है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा और स्ट्रिप्टोसाइक्लिन का 50 ग्राम मात्रा प्रति 1000 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमारी है जिसको कि कहा गया शीत ब्लाइट, मैं पहले भी आपको बताया था शीत ब्लाइट के बारे में
1: जी।
0: जब पानी ज़्यादा रहता है तो इसमें सतह जो शीत रीजन है वहाँ पे ये पहले बीमारी का कारण दिखाई देना शुरू करता है, और बाद में जब पत्तियों पे ये सांप के ऊपर जैसे चकता होता है उस तरह से धब्बे बन जाते हैं। और ये बीमारी ऐसा है कि दोनों बीमारी अगर एक खेत का पानी बैक्टीरियल लिप ब्लाइट में भी और इसमें भी एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाता है तो वो भी खेत जो है आक्रांत हो जाता है। तो इस बीमारी से बचाव करने के लिए, शीत ब्लाइट के बचाव करने के लिए आप वेलिडामाइसिन का आप जो है अब 2 कंसंट्रेशन में आता है तो उसका जो है 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप उसका छिड़काव कर सकते हैं।
1: तो यहाँ पर किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि धान में कौन कौन से रोग लगते हैं, आप उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आशा करते हैं ये ज़रूर आपके लिए मददगार साबित होगा आज का ये वार्ता। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आप सुन रहे हैं अपना प्यारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई कई के आज नए एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी। और वैसे तो पिछले कई सारे एपिसोड्स में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं वेक्टर बोरोन डिजीज़ की भी, कभी फाइलेरिया की, कभी काला आजार की, तो कभी मलेरिया की। पर आज हम बात करने वाले हैं एक अहम वेक्टर जनित रोग की, यानी कि एक्यूट एनफ्लाइटिस सिंड्रोम की, जिसे कि हम जापानी दिमाग के बुखार के नाम से भी जानते हैं। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी आरजे उमा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो शख्स जिनसे पूरा इलाका सलाह लेता है, सेहत के बारे में पूछता है। हमारे साथ सेहत के साथी हैं सेहतिया सिंह जी। सेहतिया सिंह का स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। सेहतिया भैया, आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक घटना के बारे में बात करना चाहूंगी। हमारे पास के ही गांव में 6 साल की बिटिया चिंगी की बात करेंगे हम आज। बारिश के बाद बगल के खेत में पानी भर गया था और चिंगी वहीं खेल रही थी, और शाम तक उसे तेज बुखार चढ़ गया और रात में अचानक उसे दौरा भी पड़ने लगा था।
1: हाँ आरजे उमा, यह मामला AES या JE का ही था। परिवार को लगा कि बस थकान होगी, किसी ने झाड़ फूंक की सलाह दी और अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। यही इस बीमारी की सबसे बड़ी परेशानी है, ये इंतजार नहीं कराती।
0: और देखिए, दुख की सबसे बात यही है कि ऐसी घटनाएं अकेली नहीं होती है, ऐसी घटनाएं बरसात के मौसम में कई बच्चों को होती है और कई बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि लोग इस बीमारी को सही समय पर पहचानें।
1: अरे भाई, आज फिर

0: कुछ काम की बात करेंगे। आजकल मौसम ही ऐसा है कि सतर्क रहना जरूरी है, इसलिए आज हमें सुनने वालों को बताना बहुत जरूरी है कि जेई एईएस क्या है, कैसे फैलता है और गांव समाज मिलकर कैसे इसे रोक सकते हैं, ताकि एक भी बच्चा चिंगी जैसी स्थिति में ना पहुंचे।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल गांव, बाजार, खेत, खलियान, हर जगह एक ही शब्द सुनाई देता है, एईएस और जेई। लोग इन शब्दों से डरे हुए भी हैं, उलझन में भी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे श्रोताओं को सही और सरल भाषा में पूरी जानकारी दे दी जाए। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर एईएस या फिर जिसे जेई भी कहते हैं, वो आखिर होता क्या है।
0: देखो आरजे उमा, एईएस का पूरा नाम है एक्यूट इन्फ्लाइटिस सिंड्रोम, यानी अचानक होने वाली तेज दिमाग की सूजन वाली बीमारी, और जेई यानी जैपनीज इन्फ्लाइटिस यानी जापानी दिमाग की बुखार, एईएस का ही एक गंभीर रूप है।
1: यानी एईएस एक बड़ा नाम है और जेई इसका मुख्य कारण है।
0: बिल्कुल सही। जैसे बरसात में कई तरह के बाढ़ आते हैं पर उनमें से एक बहुत खतरनाक होता है, उसी तरह से एईएस में कई वजहें होती हैं पर जेई उनमें भारी बीमारी है।
1: अब सबसे बड़ा सवाल ये कि लोग कह रहे हैं कि ये हवा से फैलता है, कोई कहता है फल से फैलता है, कोई कहता है मच्छर से फैलता है, लेकिन सच्चाई क्या है?
0: आरजे उमा, जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी जेई का फैलाव पूरे देश में एक जैसा नहीं होता। इसका कारण इसका अपना पर्यावरणीय चक्र है। इस वायरस को बढ़ने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक एम्प्लीफाइंग होस्ट जैसे सुअर और कुछ पक्षी जैसे बगुला, सारस वगैरह वगैरह, और दूसरा क्यूलेक्स मच्छर जो इन जानवरों से वायरस लेकर इंसानों तक पहुंचाता है। इसी वजह से जेई ज्यादातर उन इलाकों में मिलता है जहां धान की खेती ज्यादा होती है, खेतों में पानी भरा रहता है और बरसात के बाद मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं। यानी यह बीमारी न पूरे देश में फैलती है न हर मौसम में, यह खासकर धान के खेतों वाले इलाकों और बरसात के बाद सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है।
1: थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना सेहतिया भैया।
0: अरे मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जेई एक वायरल बीमारी है और वेक्टर यानी मच्छरों के जरिए फैलती है, खासकर क्यूलेक्स मच्छर। ये वही मच्छर होते हैं जो भारी गंदे पानी, खेतों के किनारे जमा पानी, सुअरों के पास तथा जंगल के इलाकों में ज्यादा मिलते हैं।
1: अच्छा, इसका मतलब मच्छर ही इसके मुख्य कारण है।
0: हाँ, बात यही नहीं खत्म होती। ये वायरस पशुओं खासकर सुअर और पक्षियों में चक्कर लगाता है और मच्छर उसे इंसानों के शरीर तक पहुंचा देता है। इसको बोलते हैं जूनोटिक चक्र।
1: और एईएस की किन वजहों से होता है?
0: एईएस कई कारणों से हो सकता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, गंदा पानी, पोषण की कमी, लीची खाने से भी अगर बच्चा भूखा हो, लेकिन जेई इसका सबसे खतरनाक रूप है।
1: अब तक हम जान गए कि कैसे फैलता है, लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि कौन से लक्षण दिखे जो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए, ना कि किसी और तरीके का सहारा लेना चाहिए।
0: बहुत जरूरी सवाल। एईएस या जेई में लक्षण अचानक आते हैं, इसमें जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, जिसे मुख्य लक्षण है तेज और अचानक बुखार, उलझन, बच्चा बार बार रो रहा हो, नींद ज्यादा आना या उल्टा हो सकता है कि नींद बिल्कुल आना ही नहीं, लगातार रोना, दौरा पड़ना जिसको मिर्गी या फीट बोलते हैं, बच्चा होश में न रहना, गर्दन अकड़ना या चलने फिरने में दिक्कत होना।
1: मतलब ये सारे लक्षण बहुत तेजी से खराब होते चले जाते हैं, इतनी तेजी से कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है।
0: अरे हाँ, एईएस समय बर्बाद नहीं कराता, इसलिए हमें भी नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को लक्षण दिख जाए तो घर वाले क्या करें ऐसी स्थिति में?
0: कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आसान भाषा में बताता हूँ। तुरंत अस्पताल ले जाएं, समय बिल्कुल न गवाएं, घरेलू इलाज जैसे झाड़ फूंक, देसी दवा में समय बर्बाद न करें। रास्ते में मरीज की सुरक्षित रखने के लिए कुछ आपको हम टिप्स दे देते हैं, वो है कि बच्चा बेहोश हो तो कुछ भी मुंह में न दें, न पानी न दवा। बुखार ज़्यादा हो तो गुनगुने पानी की पट्टी लगाएं। फिट्स आए यानी कि बेहोशी छाए तो बच्चे के दोनों

0: और करवट दिलाकर रखें। रास्ते में गिरने से बचने के लिए सिर को सपोर्ट दें। अस्पताल में बताए गए नियमों का पालन करें। किसी भी हालत में डॉक्टर द्वारा बताई गई उपचार बीच में न रोकें।
1: अच्छा भैया, बीमारी तो एक तरफ है, पर गांव समाज की इस बीमारी को रोकने में भूमिका क्या है? हम AES या JE को रोकने में क्या क्या कर सकते हैं?
0: बहुत कुछ कर सकते हैं आरजे उमा। AES या JE के खिलाफ असली लड़ाई गांव में ही जीता जा सकता है। JE वैक्सीन, 1 से 15 साल के बच्चों को यह टीका जरूर लगे। यह टीका मुफ्त उपलब्ध है और प्रभावशाली भी है। दूसरा है कि मच्छरों को पनपने से रोकें। घर आंगन में पानी न जमने दें। सुअरों के बाड़े को घर से दूर रखें। नालियों की सफाई, पानी की टंकी को ढककर रखना और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग। इसके साथ ही बच्चों को सुरक्षित रखें। खेलते समय पूरा कपड़ा पहनाएं, शरीर खुला न रखें और सुबह शाम बच्चे बाहर न जाएं। पानी और खाना हमेशा साफ रखें। स्वच्छ पानी AES के मामलों में बड़ा कारण है। उबला पानी दें, बासी खाना न खिलाएं और लीची खाली पेट न दें। लक्षण दिखते ही बेझिझक अस्पताल जाएं। समय पर इलाज, मतलब कि जीवन बचाना,
1: मतलब समय पर अस्पताल जाना जरूरी है। अच्छा भैया, हमारे एक श्रोता हैं रामवरन। पिछले साल उनके पड़ोसी का एक बच्चा बुखार से ग्रसित हो गया। घर वाले बोले कि 2 दिन रुक जाओ, शायद ठीक हो जाए, पर जब अस्पताल पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी।
0: हाँ आरजे उमा, AES में 24 घंटे ही निर्णायक होते हैं। लोग समझते देर कर देते हैं और बीमारी अपना काम शुरू कर देती है। भाइयों बहनों, AES JE कोई आम बुखार नहीं। यह ऐसी बीमारी है जो हमें सोचने का समय नहीं देती। हम जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी जान बचेगी।
1: अच्छा सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी असली कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि AES या JE कितनी गंभीर बीमारी है और समय पर कदम उठाना क्यों जरूरी है?
0: बिल्कुल आरजे उमा, एक घटना आपको सुनाता हूँ जो आज भी मेरे दिल में बस गई है। यह कहानी है हमारे ही पास के एक गांव की, जहाँ सुबह का समय था, बच्चे स्कूल जा रहे थे और औरतें नए ओवरहेडेड टैंक से पानी भर रही थी और गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। उसी समय हमारे इलाके की आशा बहन ममता देवी अपने दिन की तैयारी कर रही थी। अचानक उनका फोन बजा, दीदी मेरा बच्चा बहुत तेज बुखार में है। मैंने 108 पर फोन कर दिया। एक घबराई हुई माँ की आवाज थी। ममता ने तुरंत कहा, बहुत सही किया बहन, बस मैं अभी जा रही हूँ, हिम्मत रखिए। वह अपना स्वास्थ्य बैग उठाकर तुरंत उस घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने मुझसे कहा था, सेहतिया जी यही तो हमारा काम है, जब गांव को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब पहुँचना। जब ममता ने दरवाज़ा खटखटाया तो दस्तक सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, वह परिवार के लिए उम्मीद थी, भरोसा था, जीवन रक्षक कदम था। देखिए आरजे उमा, कुछ साल पहले इसी इलाके में AES और JE ने बच्चों की जान ले ली थी। लोग डरते थे, समझ नहीं पाते थे कि यह बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है या कोई श्राप है, अभिशाप है, कोई जादू टोना है। बहुत से माता पिता झाड़ फूक में विश्वास करते थे और जब तक अस्पताल पहुंचते बहुत देर हो जाती थी। ममता जैसी आशा बहनों सरकारी प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें सिखाया गया कैसे शुरुआती लक्षण पहचाने, कैसे परिवारों को समझाएं और कैसे ई कवच पोर्टल से हर केस को ट्रैक करें।
1: ई कवच ये कैसे मदद करता है भैया?
0: बहुत जबरदस्त टूल है ई कवच पोर्टल। CHO और आशा को यह सुविधा देता है कि कौन बच्चा किस बीमारी के जोखिम में है, किस परिवार को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हों, पोषण NCD से संबंधित जानकारी क्या है, किसे कब रेफरल की जरूरत है। यह ऐप उन्हें कदम कदम पर मार्गदर्शन देता है ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे।
1: वाह, ये तो अच्छी बात है। और ममता बहन ने इन सब का इस्तेमाल कैसे किया?
0: अरे आरजी उमा, ममता तो इस काम में मिसाल बन गई। वो रोज घर जाती, उनके बैग में पर्चे, स्टिकर, टीकाकरण रिकॉर्ड सब रहता। शुरुआत में परिवार टीके से डरते थे, इंजेक्शन से बच्चा बीमार पड़ जाएगा, ऐसा उनका डर था, पर ममता ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपने ही बच्चों का टीकाकरण गांव वालों के सामने करवाया और बोली,

0: देखिए मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, आप भी डरिए मत। और धीरे धीरे लोगों का डर भरोसे में बदल गया।
1: अच्छा सेहतिया भैया, आपने बताया कि जेई बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है, तो इसका बचाव कैसे हो सकता है? क्या इसका भी कोई टीका है?
0: हाँ बिल्कुल आरजे उमा, जेई से बचाव का सबसे अच्छा और मजबूत तरीका टीकाकरण ही है। सरकार ने इस पर बहुत साफ गाइडलाइन बनाई है। हमारे देश में बच्चों को जेई के दो टीके जरूर लगाते हैं।
1: दो टीके कब कब?
0: पहला टीका 9 महीने की उम्र में, ठीक उसी समय जब बच्चों को खसरा का टीका लगता है। दूसरा टीका 16 से 24 महीने के बीच, जब बच्चे को DPT बूस्टर लगता है। अप्रैल 2013 से ये दोनों डोज देश के 334 एंडेमिक जिले में रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है।
1: अच्छा भैया, बच्चों के लिए तो टीका है, और बड़े लोगों के लिए भी टीका होता है क्या?
0: हाँ, जिन राज्यों में बड़ों में भी जेई के केस देखे गए हैं वहाँ एडल्ट वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। 3 राज्यों जिनमें असम के 9 जिले, उत्तर प्रदेश के 7 जिले और पश्चिम बंगाल के 26 जिले में 15 साल से ऊपर के लोगों को जेई का टीका लगाया जाता है। इसके लिए एक खास वैक्सीन इस्तेमाल होती है, जेनवैक, जो कि वयस्कों के लिए बनाई गई है।
1: मतलब बच्चे हो या बड़े, समय पर अगर टीका लग जाए तो जेई से बचाव काफी हद तक संभव है।
0: बिल्कुल आरजे उमा, आपने सही कहा। इसलिए हम आशा, ANM और CHO लगातार यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे गांव का हर बच्चा और हर जरूरतमंद वयस्क जेई का टीका लगवाए।
1: अच्छा भैया, आपको क्या लगता है हमारी रेडियो जैसी कोशिशें कितना फर्क डालती है?
0: बहुत बड़ा फर्क। जब रेडियो से सही जानकारी गांव-गांव तक पहुंचती है तो लोग जागरूक होते हैं, टीकाकरण बढ़ता है, मच्छर रोकथाम पर जोर बढ़ता है, अस्पताल आने में हिचक खत्म होती है। इस तरह सेहत सही और लाभ कई जैसे कार्यक्रम व्यवहार बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
1: तो दोस्तों, आज हमें AES या JE का पूरा ज्ञान मिला, यानी कि इस बारे में हमने पूरी जानकारी ली, इससे कैसे बचना है, इसे कैसे पहचानना है, क्या करना है और कैसे अपने गांव को सुरक्षित रखना है।
0: हम लगातार यही कह रहे हैं, आदत बदलें, सेहत सुधरेगी, साफ सफाई रखें, टीका लगवाएं और जागरूक रहें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दोस्तों ध्यान रखें, जानकारी ही बचाव है और सही समय पर डॉक्टर ही असली उद्धारक। तो अभी के लिए इतना ही, अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए सेहत से जुड़े विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने रेडियो 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। जाने से पहले हम लेंगे अपनी सेहत की शपथ।
0: हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक

0: जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
5: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
6: खुद भी बचे देश भी बचाए।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और मैं आपको बता दूं कि आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम जानेंगे जलवायु अनुकूल कृषि में प्लांटर और रेज बेड की भूमिका। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं, इंजीनियर पंकज कुमार हमारे साथ हैं जो आपको बताएंगे इनकी भूमिका के बारे में। तो सबसे पहले सर, प्लांटर मशीन क्या होता है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
9: सबसे पहले अभी खरीफ के का सीजन अभी चल रहा है
8: जी।
9: और धान की खेती असिंचित एवं सिंचित दोनों परिस्थिति में की जाती है। अब असिंचित दशा में धान की खेती मुख्यतः सीधी बुआई द्वारा एवं सिंचित दशा में रोपाई द्वारा की जाती है। धान की रोपाई मध्य जुलाई तक हो जानी चाहिए, परंतु श्रमिकों एवं पानी की कमी के कारण वर्तमान में धान की रोपाई अगस्त के अंत तक होती रहती है। विलंब से रोपाई के कारण धान की उपज में भारी कमी आती है। धान की रोपाई में मजदूरी अधिक लगती है व खेतों में पानी भरने में व्यय अधिक आता है। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए रोपाई के स्थान पर सिंचित क्षेत्र के लिए एवं असिंचित दोनों दशाओं में सीधी बुआई तकनीक विकसित की गई है। सीधी बुआई करने पर खरपतवार अधिक उगते हैं, अतः खरपतवार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धान की सीधी बुआई दो विधियों से की जाती है। एक विधि में खेत तैयार कर बहुफसलीय बिजाई, जिसको हम बिजाई बहुफसलीय जैसे कि हम प्लांटर आपको बोलते हैं, जो पौधे से पौधे की दूरी तय करे और लाइन से लाइन की दूरी तय करे, उसे हम प्लांटर कहते हैं। तो इस बिजाई मशीन द्वारा बोया जाता है। और दूसरी विधि में खेत में कादो करके अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बोया जाता है। तो ड्रम सीडर में भी हम प्लांटिंग जो है बीज से बीज की दूरी

0: और लाइन से लाइन की दूरी हम बनाते हैं।
1: सर आगे बढ़ते हैं और ये जानना चाहेंगे हम कि प्लांटर से कौन कौन सी फसल की हम बुआई कर सकते हैं।
0: प्लांटर से हम उस फसल की बुआई करते हैं जो कि हम पौध से पौध की दूरी में रहे। जैसे हम अभी खरीफ में अरहर बोएंगे जो कि पौध से पौध की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी हम बनाते हैं। जैसे मक्का हुआ, धान हुआ, ये सब फसल अभी हम प्लांटर से करते हैं। और धान में जैसे खेत की तैयारी के लिए खेत का पलेवा करके डिस्क हैरो या कल्टीवेटर द्वारा तैयार कर लेना चाहिए। उपयुक्त जमाव के लिए खेत का समतल होना आवश्यक है। आप इसको लेजर लैंड लेवलर से आप समतल कर सकते हैं जिसमें कि 20% पानी की बचत और 15% लगभग उत्पादन में वृद्धि होती है। तो खेत के समतल होने से सिंचाई पानी में बचत के साथ ही पैदावार भी बढ़ती है। खेत को लैंड लेजर लेवलर से समतल करना चाहिए। अगर लैंड लेजर लेवलर उपलब्ध नहीं है तो खेत को परंपरागत विधि से समतल किया जा सकता है। काढ़ा उचित जुताई तथा उसके बाद पाटा लगाकर समतल करना चाहिए। बुआई के समय भूमि में पर्याप्त नमी होना चाहिए और खेत तैयार करने के बाद बहुफसलीय प्लांटर बिजाई मशीन जिसको कहते हैं उससे 18 से 22 सेंटीमीटर दूरी पर कतार में बुआई करें। अब रेज बेड तकनीक, जैसे कि आप रेज बेड में हम क्या करते हैं कि खरीफ के महीने में रेज बेड इसलिए हम लेते हैं कि खरीफ महीना में अधिक पानी होने के कारण हमारा जैसे कि मक्का, अरहर, ये सब फसल में पानी लगने का के कारण से उत्पादन घट जाता है। तो इसको हम रेज बेड तकनीक से हम फसल को बोते हैं। तो इसको हम मेर पर बुआई पद्धति का दूसरा नाम फर पद्धति भी कहते हैं। जैसे हम 65 सेंटीमीटर का हम लाइन से नाली से नाली की दूरी हम 65 सेंटीमीटर रखते हैं और ऊपर हम जो बेड रहता है मेरा वो 40 सेंटीमीटर का होता है। इसके ऊपर आप जो है एक लाइन में आप मेज ले सकते हैं 40 सेंटीमीटर से, जो कि हमारा पौध से पौध का जो लाइन होगा वो होगा 65 सेंटीमीटर। तो हम अगर रेज बेड तकनीक से अगर हम बुआई करते हैं तो हमारा जो भी बारिश अगर अधिक पानी होने के चलते हमारा जितना भी पानी है वो नाली में रहने के कारण हमारे जड़ में जो ऑक्सीजन जाना चाहिए पौध में वो ठीक रहता है और हमारा पौध हमारा जितना भी फसल है एक समान दिखता है। इसलिए हम रेज बेड तकनीक अभी हम खरीफ में लेना चाहिए, इसका बहुत बड़ा उपयोगिता है। और आप गेहूं के समय में भी जैसे कि आप अगर आप रेज बेड लेते हैं तो आप जैसे आप 3 पानी आप गेहूं में ले रहे हैं तो इसमें आप जो है 5 पानी रेज बेड में लगेगा, जिसमें कि आप पहला पानी जो हम 2 पानी जो हम इसमें ज़्यादा दे रहे हैं एक जर्मिनेशन के लिए जो कि जब बीज के जमाव के लिए लगभग 1 सप्ताह के अंदर, और दूसरा पानी जो हम इसमें दे रहे हैं वो हमारा मिल्किंग स्टेज में जिसको कि दुधिया स्टेज में बोलते हैं। तो इसके बावजूद भी हमको अगर खेत लेवल है तो 30-40% पानी की बचत होती है।
1: तो श्रोताओं अभी आपने रेज बेड और प्लांटर मशीन के बारे में जाना, इसकी भूमिका भी डॉक्टर साहब ने बताई आपको और क्यों ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है, वो सभी आपने जाना। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों, इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाले सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गला घोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें।

संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है। लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है, या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है, शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है, क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है, या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना।

सबसे जरूरी बात यह है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप इससे संबंधित विभाग तक पहुंचें। तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे और सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए, और आप आवाज़ उठाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए, और इसके साथ ही ये भी जरूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं, यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए, और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा, और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा, और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले तो जो भी वहाँ पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए ज़रूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों, आखिर शी बॉक्स ज़रूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है, और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी, और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगी, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा, और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा, और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा, और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों, लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी, और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचें। बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए, और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों, कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेज

है या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी, तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं, तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज के लिए, तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उसे आपको असहज महसूस हो रहा है, तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है, तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और दोस्तों, जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है, तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दे, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहां भी महिलाएं काम कर रही है, वहां कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है, और कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है, और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है, तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ, इससे नहीं पसंद है, तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है, तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोष की, यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है? इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है, और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है। क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं, और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, ये भी पोष की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और IC की भूमिका क्या है, यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है, ये भी आपको पोष ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत जरूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे, तो आपके घर के जो लड़के हैं ना, वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं, तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है, तो आप उसे रोकिए। पता है, आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है, उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज़्यादा सशक्त महसूस करेंगी। उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है। उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों, तो जो जागरूक पुरुष हैं, जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे, तो रोकते होंगे। और दोस्तों, शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है, तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए। क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे, यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो। और जो पुरुष भी सुन रहे हैं, वो भी ये समझेंगे कि
अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए,

0: तो फिर आपको भी आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आवाज़ उठाइए क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आरजे अनु। तो आज फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक खास विषय लेकर आए हैं और किसान भाइयों के लिए खास है क्योंकि हम आज बात करेंगे कृषि उद्यमिता की। जी हाँ, और बिहार क्षेत्र की बात करें तो बिहार में कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में बायोटेक किसान हब की भूमिका, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर सी के पांडा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक्सटेंशन डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। और आज बहुत सारी बातें हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। बायोटेक किसान हब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके तहत क्या कुछ कार्यक्रम चलाया जाता है और कैसे किसानों को हेल्प करता है ये परियोजना, इसके बारे में आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताएं कि बायोटेक किसान हब क्या है।
1: आज हम लोग बात करेंगे बायोटेक किसान हब कैसे बिहार में एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है 2018 से। देखिए, बायोटेक किसान हब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का अधीनस्थ एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम बायोटेक जो किसान हब है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको मिशन प्रोग्राम के आधार पर लिए है। ये किसान मतलब हुआ कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क है। ये सारा देश की 15 जो हमारा एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, ये 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में चल रहा है। इसी के आधार पर हमारा अपना जो बिहार स्टेट में भी चल रहा है और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनका जो डायरेक्टर है, डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन के नियंत्रण में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में इसका कार्यक्रम चल रहा है।
0: जी, अब इसके उद्देश्य की बात करते हैं, इसका क्या कुछ उद्देश्य है उसके बारे में बताएं डॉक्टर साहब।
1: हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे अपने मैडम। ये इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उद्देश्य है, बहुत महत्व है। ये एक्चुअली किसान के लिए है ये प्रोजेक्ट, ये जो प्रोग्राम जो भी बोलिए, बायोटेक किसान हब। अब देखिए, किसान जो लोकल लेवल में काम करते हैं उनका नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, तरह तरह का प्रॉब्लम खेती के आधार पर वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रॉब्लम जब है उसका सोल्यूशन भी डेवलप होता है, कृषि विश्वविद्यालय बोलिए, कृषि का जो गवेषणागार होता है, रिसर्च स्टेशन होता है, उसमें भी उसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल के आते हैं। लेकिन इस सोल्यूशन किसान तक पहुँचना चाहिए। उस किसान का जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के आधार पर किसान के पास पहुंचाने का काम ही करता है बायोटेक किसान हब।
0: जी,
1: ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा काम क्या है ना, दूसरा काम सबसे बड़ा, दूसरा प्रोग्राम से इसका अंतर क्या है, देखिए दूसरा प्रोग्राम से के साथ इसका अंतर है, इसमें साइंटिस्ट ज़्यादा क्लोजली किसान के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा देखिए, हमारा राज्य में जो स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर है, अब बोलते हैं छोटा जो किसान है, तो उस किसान का नंबर ज़्यादा है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के साथ इकट्ठा होकर हम लोग काम करते हैं। उनका भी कुछ भी प्रॉब्लम जो होता है, उस प्रॉब्लम प्रोडक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। जब प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्शन के बाद उसको मार्केट तक कैसे पहुँच पाए, उसके लिए किसान के अंदर जो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करना, वही काम हम लोग करते हैं। एक कोई किसान अपने लेवल में करते हैं, उसको भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, और बहुत किसान, छोटा किसान बा स्मॉल एंड मार्जिनल जो किसान होता है, सब इकट्ठा जब आ जाते हैं, एक साथ जब आ जाते हैं, उनको भी एक साथ लेके भी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
0: तो ये उद्देश्य है बायोटेक किसान हब परियोजना के। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की हम बात करें डॉक्टर साहब, तो क्या यह परियोजना यहाँ चलाई जा रही है, अगर चलाई जा रही है तो वो कब से चलाई जा रही है उसकी जानकारी दें।
1: हाँ मैडम, ये देखिए 2018 साल से अक्टूबर महीना से हम लोग इस प्रोग्राम को शुरू किए हैं। पहले शुरू हुआ था 3 डिस्ट्रिक्ट में हमारा बिहार का पटना है, लखीसराय है और गया, ये तीनों

0: डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम शुरू किए थे। पहला जो काम था, छोटा एक काम लेके हम लोग आगे बढ़े थे, वो है आपको पता होगा खेसारी बा ग्रासपी जो बोलते हैं, उसी को लिए हम लोग शुरू किए थे। जो एक्चुअली एक समय बिहार में खेसारी का आबादी बहुत होता था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम आया जिसको हम लोग बोआ बा ओडा बोलते हैं, जो लोकल टर्म में हम लोग बोलते हैं। कुछ केमिकल रह जाता है खेसारी के अंदर जो खाने से किसान आदमी के शरीर में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन बात क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हुआ, रतन एंड प्रतीक करके दो वैरायटी भी है। तो उस प्रॉब्लम जो था, उस प्रॉब्लम को हम लोग, हम पहले बताया था ऑब्जेक्टिव में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बोले, उनका जो प्रॉब्लम को हम लोग एड्रेस करते थे। जो प्रॉब्लम था लोकल जो वैरायटी है उसमें ओडाप कंटेंट व बुआ कंटेंट ज़्यादा था, तो उस आधार पर जो रतन एंड प्रतीक जो वैरायटी जो था, उस वैरायटी में जो ओडाप व बुआ कंटेंट व जो केमिकल का कंटेंट है कम था, उसी वैरायटी को हम लोग किसान के अंदर प्रचार किया। जैसे हम स्टेटिस्टिकली बताएं तो 2018 साल में हम लोग जब शुरू किए थे तब हम लोग 33 एकड़ एरिया में शुरू किए थे, और उस समय हम लोग पहुँचे थे 66 फार्मर के पास पहुँचे थे। उसके बाद 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में हम लोग 210 एकड़ एरिया में जो खेसारी का व ग्रासपी का हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन किए थे किसान का फील्ड में, डायरेक्टली किसान का फील्ड में, और उसमें 242 किसान भी बेनिफिटेड हुए थे। 2020-21 में हम लोग और भी एरिया बढ़ाया था, 225 एकड़ तक पहुँचा, उस समय हम लोग 260 किसान के पास पहुँचे। और हम लोग का काम करने का तरीका यही था, फार्मर एक इंटरेस्ट ग्रुप हम लोग बनाए थे किसान के सहायता में, समूह के आधार पर वो लोग सीड प्रोडक्शन करते था और हम लोग उसके लिए सीड सपोर्ट करते थे, रतन एंड प्रतीक का सीड देते थे, कुछ बायो फर्टिलाइजर देते थे, और वो लोग प्रोडक्शन करते थे। उसके बाद हम लोग सीड को प्रोसेसिंग करके फिर उन लोगों को फिर रिसाइकलिंग किया जाता है, मतलब नेक्स्ट ईयर फिर किसान को हम लोग देते थे। इसी आधार पर अभी भी उस जो प्रोजेक्ट जो है ना उसको हम लोग स्केल अप किया है। जैसे आपको पता होगा हमारा यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर एक प्रोग्राम भी चल रहा है, उसी के साथ ये प्रोजेक्ट को जुड़ के हम लोग और भी ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर खेसारी का आबादी होता है उस जगह पर भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैडम
1: तो डॉक्टर साहब ये तो बातें हो गई हैं कि विश्वविद्यालय में कब से चल रहा है ये कार्यक्रम, और अभी क्या कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं इस परियोजना के तहत हमारे विश्वविद्यालय में?
0: हाँ मैडम, इसके आधार पर हम लोग को यहाँ पर और भी काम चल रहा है। एक्चुअली उस पहला जो प्रोजेक्ट हम लोग को मिला था 3 डिस्ट्रिक्ट में खेसारी के लिए, वो जो अच्छा काम हुआ था वो देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगले 2019 के दिसंबर महीना से हम लोग के 6 एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट आकांक्षित डिस्ट्रिक्ट होता है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हम लोग को प्रोग्राम दिया था। जैसे 6 डिस्ट्रिक्ट था हमारा, अभी भी वहाँ पर काम भी चल रहा है, अरारिया है, औरंगाबाद है, बांका है, कटिहार है, खगड़िया और पूर्णिया है। और अब इस सब डिस्ट्रिक्ट में हम लोग क्या काम कर रहे हैं ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये सब डिस्ट्रिक्ट में हम लोग, जैसे मान लिया अरारिया में हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए बिहार में हमारा मखाना एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और हमारा यूनिवर्सिटी के द्वारा एक इम्पोर्टेंट वैरायटी भी हम लोग डेवलप किए सबर मखाना 1। तो सबर मखाना 1 हम लोग किसान के पास लेके जा रहे हैं। अभी अरारिया में 25 हेक्टर एरिया में हम लोग डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। और अब एक आप लोगों को पता होगा बिहार में केला का खेती भी बहुत होता है, तो केला में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो उस आधार पर देखते हुए हमारा यूनिवर्सिटी का भी टिश्यू कल्चर बनाना का लैब है, तो हम लोग टिश्यू कल्चर बनाना प्रोडक्शन करते हैं और केले का पौधा हम लोग किसान बंधु को देते थे। और अरारिया में 10 एकड़ हुआ था। और एक चीज़ देखिए, एक गोट है, जैसे हम लोग बोलते हैं बकरी एक ATM हम लोग बोलते हैं, तो बकरी का भी कुछ इम्पोर्टेंट रोल है किसान का फाइनेंशियल डेवलपमेंट करने के लिए। तो अरारिया में हम लोग बकरी का साइंटिफिक जो बकरी पालन होता है उसके बारे में भी हम लोग किसान बंधु को सपोर्ट करते हैं। और औरंगाबाद में चल रहा है हमारा उसी तरह का, जैसे केला का खेती चल रहा है 10 एकड़ में, मशरूम भी हम लोग करते हैं। देखिए आज मशरूम ऐसा एक जगह हमारा बिहार में पहुंच गया बायोटेक किसान के आधार पर, बहुत महिला किसान जो उद्योग के आधार पर आगे बढ़ गए हैं वो लोग अच्छा कमा भी रहा है। हम लोग मशरूम कल्टिवेशन में भी किसान को सपोर्ट करते हैं, और औरंगाबाद में हम लोग गोट फार्मिंग के भी सपोर्ट करते। इस आधार पर देखेंगे तो जो 6 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग किसान बंधु को सपोर्ट करते हैं। और बी कीपिंग भी हम लोग कराते हैं, जो मधुमक्खी पालन है वो मधुमक्खी पालन भी कराते हैं। आपको पता होगा हमारे यूनिवर्सिटी में बी कीपिंग का एक प्रोसेसिंग का यूनिट भी है, और उसमें भी हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में भी सपोर्ट कर रहे हैं।
1: जी, तो ये कुछ कार्यक्रम है जो हमारे विश्वविद्यालय में चल रहा है, और आगे इस दिशा में अगर हम आकांक्षी योजनाओं के बारे में बात करें तो थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में भी दें।
0: हाँ देखिए आकांक्षित एरिया में हम लोग कैसे किसान बंधु को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम एक्टिविटी जैसे आपको बताते बताया था ना, जैसे केला

0: के बारे में, केला का जो G9 वैरायटी का जो पौधा होता है ना, वो पौधा हम लोग किसान बंधु को देते हैं, उसका वो किसान बंधु को खाद भी देते हैं, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल जो कीड़ा वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए भी किसान बंधु को सपोर्ट करते हैं, पन्नी भी देते हैं और मल्चिंग मटेरियल भी देते हैं। वो नहीं, उसके साथ साथ देखिए हमारा हर KVK में दो यंग प्रोफेशनल है, वो लोग किसान के पास जाते हैं, रेगुलरली विजिट करते हैं, साइंटिस्ट भी जाते हैं, किसान का कुछ ही तरह का प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होता तो किसान को सपोर्ट करते हैं। उसी तरह से जैसे मधुमक्खी पालन में हम लोग किसान बंधु को बी बॉक्स देते हैं, फ्रेम देते हैं, फाउंडेशन सीट देते हैं, सुपर देते हैं, एम्प्टी बॉक्स भी देते हैं। तो इस तरह हम लोग बी कीपिंग के आधार पर किसान को सपोर्ट करते हैं। और मशरूम में हम लोग किसान बंधु को देते हैं जैसे स्पॉन देते हैं, सबस्ट्रेट देते हैं, पीपी बैग देते हैं, फॉर्मालिन देते हैं, हैंड स्प्रे देते हैं। तो इस तरह किसान बंधु का हम लोग सपोर्ट करते हैं। और जो बाकी जैसे गोट के आधार पर, गोट के भी हम लोग जैसे डीवॉर्मिंग करने के लिए, वैक्सीनेशन करने के लिए, और जो बच्चा होता है बकरी का बच्चा, वो भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। और रेगुलरली जैसे होता है किसान के लिए एक प्रॉब्लम होता है बकरी पालन में जो फोडर का प्रॉब्लम होता है, तो उस आधार पर हम लोग पेरिनियल जो फोडर कल्टीवेशन करने के लिए भी किसान को हम लोग सपोर्ट करते हैं। पेरिनियल फोडर मतलब जो देखिए कोई को क्या क्या होता है ना, लीन पीरियड के समय जब होता है किसान को बकरी के लिए खाना नहीं मिलता, उस समय हम लोग सपोर्ट करते हैं। और उसके साथ UMB ब्लॉक बोलते हैं, एक मिसाल फीड मटेरियल हम लोग डेवलप किए हैं, हमारे साइंटिस्ट लोग ने यहाँ का लोकल के आधार पर जैसे जरूरत पड़े उसी तरह उसको मॉडिफाई भी किया है, और उसके आधार पर किसान लोगों को हम लोग सपोर्ट भी करते हैं। और दूसरा जो मखाना जो आबादी होते हैं, जो सबर मखाना जो वन का जो प्रभेद है, वो हम लोग किसान को देते हैं, और कुछ खाद भी देते हैं, इंसेक्टिसाइड भी देते हैं, और रेगुलरली हमारा जो साइंटिस्ट है वहाँ पर किसान के जगह पर विजिट करते हैं।
1: जी, तो ये कुछ बातें हैं जो बायोटेक किसान हब के आधार पर किसानों को सपोर्ट किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब, कृषि उद्यमिता के विकास के लिए और क्या कुछ कार्य हो रहा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
0: हाँ देखिए, प्रोडक्शन के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है किसान बंधु के पास, उसका मार्केट का सेलिंग करना, मार्केट तक पहुँचना, प्रोडक्ट को बेचना सबसे बड़ा चैलेंजिंग होते हैं। देखिए हमारा सबसे ज्यादा जो बायोटेक किसान आपका मेन टारगेट था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को सपोर्ट करना। देखिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का इंडिविजुअल लेवल में मार्केट में बार्गेनिंग करने का पावर ज्यादा नहीं रहते, तो उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मोस्टली हम लोग क्या किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। और टोटल हम लोग 34 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं किसान बंधुओं का। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो सदस्य है उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और उन लोगों को इकट्ठा करके करते हैं, उसके आधार पर प्रोडक्ट बेचने का बंदोबस्त करते हैं। जैसे हम मान लीजिए मशरूम एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, देखिए रॉ मशरूम जो होता है जिस दिन का प्रोडक्शन उस दिन नहीं बेच पाते तो किसान के लिए प्रॉब्लम हो जाता, उसके आधार पर हम लोग कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट उन लोगों को सपोर्ट किए, जैसे मशरूम का बिस्किट, मशरूम का पाउडर, उसका अचार बा पिकेल जो बोले ड्राई सूप, इस तरह प्रोडक्ट डेवलपमेंट किसान को सपोर्ट भी किए है। और शायद के बारे में, हानि के बारे में, हम देखिए हमारा यूनिवर्सिटी में प्रोसेसिंग यूनिट है, तो किसान को हम लोग प्रोसेसिंग कैसे करना चाहिए उसको सिखाते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन का भी बंदोबस्त करते हैं, करने के बाद कैसे बॉटलिंग करके और का प्रोजेक्ट के लोगों के आधार पर प्रोडक्ट को हम लोग ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांडिंग करके लोकल मार्केट और डिस्टेंट जो मार्केट है उस जगह पर बेचने के लिए भी सपोर्ट करते हैं। और मखाना, आप पता होगा मखाना हमारे बिहार में तो ऑलरेडी एक नॉन प्रोडक्ट है, नॉन क्रॉप है, तो और मखाना का बिहार का मखाना का बहुत डिमांड भी है। तो हम लोग मखाने के लिए पहले देखिए किसान लोग क्या करते थे, पहले किसान लोग और जो उसका जो सीड होता है जब प्रोडक्ट मिलता था उसी को जस्ट मिडिलमैन में बेच देते थे, लेकिन अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को उसको कैसे अपना डोर लेवल में प्रोसेस करके, पैकिंग करके, प्रोजेक्ट का लोगो लगा के मार्केट में बेच सकते हैं, उसके लिए हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें फ़ायदा भी हो रहा है, वो लोग ज़्यादा मुनाफा भी मिल रहा है, और उन लोग FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, और अल्टीमेटली उन लोगों को बेनिफिट भी मिल रहा है। और केले के बारे में बताएंगे, केले बहुत ज़्यादा अभी प्रोडक्शन हो रहा है और उसके बेनिफिट भी किसान बंधु को मिल रहा है थोड़ा। तो किसान बंधु, बायोटेक किसान हब हमारा जो 6 एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर चल रहा है, तो वहाँ पर किसान को भी सपोर्ट भी मिल रहा है, और हम लोग उम्मीद रखते हैं बायोटेक किसान के आधार पर जो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग डेवलप कर रहे हैं, किसान को उसमें मुनाफा तो जरूर मिल रहा है और भविष्य में भी मुनाफा उन लोगों को मिलते रहेंगे। तो इसी बात के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।
1: तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, अगर बायोटेक किसान हब का नाम आप सुनते हैं तो आप समझ जाइए कि क्या कुछ इसके तहत किया जाता है, किसानों के लिए कैसे ये मददगार साबित होता है। आज जितनी भी बातें यहाँ पर

आपको डॉक्टर साहब ने बताई हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आपके मन में बायोटेक किसान हब को लेकर संशय होगा तो ज़रूर खत्म हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप सभी से और भी बातें होंगी इसी फ्रिक्वेंसी पर 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026, बिहार कृषि विश्वविद्यालय।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और हर रोज की तरह आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती से जुड़ी बातें। और अभी फिलहाल यहां इस समय परवल जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। नए नए अगर सब्जियों की बात करें तो उसमें परवल भी शामिल हो जाता है गर्मी के मौसम में। अब यहां पर खेती की बात कर रहे हैं तो इस समय हमारे जो किसान भाई हैं परवल की खेती करके अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे खेती परवल की और क्या क्या सावधानियां बरतनी है हमारे किसान भाइयों को इसकी खेती के दौरान, और भी बहुत सारी बातें परवल की खेती से जुड़ी, इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर ममता कुमारी मैडम। मैं आप सभी को बता दूं ये वैज्ञानिक हैं KVK सबौर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: थैंक यू अनु।
2: मैडम सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोताओं और किसान भाइयों को परवल की खासियत के बारे में बता दीजिए कि इसमें क्या क्या गुण हैं।
3: परवल एक कद्वरीय सब्जी का महत्वपूर्ण सदस्य है और परवल के बारे में परवल की बहुत सारी चीज़ें अपने घरों में बनती हैं।
2: जी,
3: जैसे अचार है, सब्जी है, चटनी है, इसका लोग कम तेल मसाला में भी अलग अलग उत्पाद बना करके खाना पसंद करते हैं। खास बात यह है भागलपुर के क्षेत्र के लिए कि भागलपुर में लगभग ये जितना भी दियरा का क्षेत्र है उसका मुख्य फसल परवल है और यहाँ हजारों एकड़ में परवल की खेती होती है। किसान के लिए आने वाले समय में कद्दूवर्गीय सब्जी का एक महत्वपूर्ण उत्पाद की तरह परवल आता है और यह नाथनगर, सुल्तानगंज, नाथनगर, सबौर, कहलगांव, पीरपैंती जैसे ब्लॉकों प्रखंडों में परवल की खेती बहुत बड़े भूभाग में की जाती है और इसमें किसान जो लगाते हैं इसको जब अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में पानी निकल जाता है बाढ़ का, उसके बाद लोग परवल लगाना प्रारंभ करते हैं और परवल लगाते हैं। परवल के साथ साथ वो करेले की बीज को भी डाल देते हैं। करेले की बीज को डाल देते हैं तो परवल समय के आने के साथ साथ परवल अपना बढ़वार में आता है, लेकिन उससे पहले हमारे किसान हैं जो करेले को एक इंटरक्रॉप की तरह लेकर के उत्पाद ले लेते हैं और करेला का फसल को बेच लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो नीचे में परवल लगाते हैं और ऊपर की तरफ मिर्च लगाते हैं, जैसे वो मिर्च का भी उत्पादन अभी परवल के साथ साथ ले रहे हैं।
2: जी मैडम, अभी क्षेत्र के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार की क्षेत्र होनी चाहिए जहां परवल की खेती हमारे किसान भाई कर पाएं, या फिर जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु कैसा होना चाहिए इसकी खेती के लिए?
3: परवल मुख्यतः सालों भर भी आप रख सकते हैं अगर है, लेकिन चूंकि यह दीरा क्षेत्र में लगता है तो दीरा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित होता
2: जी,
3: है
2: जी, जी,
3: और जुलाई अगस्त में जब बाढ़ आता है तो किसानों का स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है फलन पे रहता है, फलन के एकदम उत्कर्ष चरम पे रहता है, उस समय हमारे किसान भाइयों का फसल बह जाता है। तो अब आने वाले दिनों में देखा गया है कि बहुत सारा ऐसा गांव है, आप जैसे खैरपुर है, लत्तीपुर है, इन सब गांव में परवल जो है ऊपरी भूमि में भी किसान अब लगाना प्रारंभ कर दिए हैं, जिससे उनको स्वयं का लत मिलना प्रारंभ हो गया है।
2: जी, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए मैडम इसकी?
3: इसके लिए मुख्यतः मिट्टी एक है कि दीरा में बलुआही मिट्टी होती है और चूंकि परवल जब जमीन पर चलता है तो जहां जहां गांठ होता है

0: हाँ वहां से परवल का जड़ें आ जाती हैं और वो ज्यादा तेजी से फैलाव दीरा वाले क्षेत्र में ही होता है, लेकिन ऐसी ये एक भ्रम के तौर पर ही है, क्योंकि जब ये ऊपरी भूमि में जाने लगे और हमारे किसान इसको अलान पर देने लगे तो इस तरह की समस्याओं का कोई या इस तरह के किसी भी प्रकार का इनपुट वहाँ नहीं रहता है, फिर भी परवल की खेती बहुत अच्छे तरीके से हो रही है
1: जी। तो यहाँ पर अभी मैडम ने बताया कि परवल आप किस क्षेत्र में उगा सकते हैं, और एक भ्रांति के बारे में भी मैडम ने बताया कि लोग सोचते हैं कि ये बालू वाली जगह पर ही इसका जो है उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन अभी मैडम ने बताया कि किसान भाई अब जो है ऊपर ज़मीन पर भी इसकी खेती कर रहे हैं। तो अब जो खेती हो रही है मैडम परवल की, उसमें बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत होती है, किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं और सुधार कहाँ पर करनी है। तो कुछ ऐसी बातों के बारे में बताइए जब हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं तो सावधानियां उनको बरतनी चाहिए।
0: जी, परवल में सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को सावधानी यह लेनी चाहिए कि किस परवल में नर और मादा अलग अलग पौधों में होता है
1: जी।
0: तो वो नर और मादा का सही अनुपात को मेंटेन करें, सही अनुपात में लगाएं, और अनुशंसित जो है नर मादा का वो 5 नर मादा पे 1 नर लगाना चाहिए, मतलब कि 10:2 के इस अनुपात में किसानों को लगाना चाहिए। लेकिन किसान भाई से जब बहुत सारे किसानों से जब बात मेरी हुई तो किसानों ने अपना जो बताया कि जब हम 5 और 1 पर देते हैं तो नर है जो बहुत तेजी से फैलता है और मादा को ये कर देता है, ढकने का प्रयास करने लगता है। उस केस में किसानों ने अपना 1:9 का रेशियो अनुपात में लगाया, 1 नर और 9 मादा, तो उनको उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। पहला सावधानी ये है। दूसरा सावधानी क्या होता है कि नर और मादा का अनुपात सही मायने में नहीं रखा जाता है तो परागण की क्रिया सही नहीं होती है, और जब परागण की क्रिया सही नहीं होती है तो फल है जो सही अनुपात में लगता नहीं है, जो उनको एक उत्पादन प्राप्त होना चाहिए, हमारे किसान भाइयों को उत्पादन नहीं प्राप्त होता है। दूसरा क्या होता है कि फल में परागण हो भी जाता है और सही परागण तरीके से नहीं हो पाता है तो छोटे छोटे फल सड़ करके गिरना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे किसान को ही कहीं ना कहीं हानि होती है
1: जी।
0: किसान इस तरह का अनुपात को पहला मेंटेन करें। दूसरा चीज है कि परवल के बारे में कि परवल में सफेद फूल होता है। सफेद फूल होता है तो होता क्या है कि परवल में फल मक्खी की भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं
1: जी।
0: तो किसान को लाइट ट्रैप पर जाना चाहिए, किसान को परवल में लाइट ट्रैप जरूर लगाएं जिससे फल मक्खी से उनको निदान प्राप्त हो जाता है
1: जी।
0: तीसरी समस्या आती है कि चूंकि यह दीरा में ज्यादा लगाया जाता है और दीरा में गंगा जी की मिट्टी में निमाटोड का बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहा है, जड़ों में गांठ हो जाती है परवल में, और जड़ में गांठ होने जाने के कारण जो पोषक तत्व हैं सारा ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है, और जब पौधा फलन में आता है तो पौधे का जो मांग होता है वो बढ़ जाता है, और उस स्थिति में क्या होता है कि पूरा का पूरा लत सूख जाता है फलन पर आने वाली अवस्था में। तो किसान भाइयों को चाहिए कि उसमें नीमयुक्त खली का उपयोग करें, नीमयुक्त कीटनाशक का प्रयोग करें, और साथ साथ गेंदा को अंतर्वर्ती फसल के तौर पर परवल में लगाएं, सरसों को अंतर्वर्ती फसल के तौर पर परवल में लगाएं, जो कि प्राकृतिक रूप से निमाटोड का नियंत्रण हो जाता है
1: जी। मैडम अभी बाजार में जब हम परवल खरीदने जाते हैं तो 2 किस्म के परवल हमें देखने को मिलते हैं, एक डार्क ग्रीन और एक हल्का ग्रीन, और एक में वाइट धारीदार भी रहते हैं, तो इसमें क्या अंतर है, क्या बीज से ये अंतर उत्पन्न होती है या फिर क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: परवल की कई प्रजातियां हमारे यहाँ लोकल में लगती हैं, जैसे स्वर्ण रेखा लगती है, स्वर्ण रेखा
1: तो कौन सी किस्म हमारे क्षेत्र के लिए बहुत मतलब किसान भाइयों को बीज जो है वो चयन करना,
0: हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक जो कि बिना धारी वाला होता है, थोड़ा चमकीला होता है, हल्के रंग का होता है,
1: इसको बहुत ज्यादा
0: करता है स्वर्ण रेखा, काफी दिनों से हमारे यहाँ लग रहा है। बहुत सारी लोकल प्रजातियां हैं जैसे निमिया है, डंडाली है, ये सब भी किसान लगा रहे हैं, और मुख्यतः किसान परवल का जो लत है बाढ़ में बह जाने के कारण बंगाल से ला रहे हैं, गया से ला रहे हैं, समस्तीपुर से ला रहे हैं, तो किसान अपने द्वारा बहुत सारे ऊपरी भूमि में भी रखे हुए हैं, तो किसान लोकल भी इसकी आपूर्ति करना प्रारंभ करती है
1: जी। तो किसान भाइयों, अभी आप जान रहे

थे परवल की खेती आपको कैसी करनी चाहिए और क्या कुछ सावधानियां हैं जो मैडम ने बताई, वो बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इससे आपको हानि बिल्कुल भी नहीं होगी और मुनाफा, आपके उत्पादन में अधिक मुनाफा मिलेगा आपको। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे। फ्रिक्वेंसी यही है, याद रखिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ FM ग्रीन। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
5: नमस्कार श्रोताओं, सभी के लिए आप सभी के बीच लेकर आ गए हैं खास विषय। गर्मी का मौसम आ चुका है और ऐसे में पशुओं की खास देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है, उनके आहार की, उन्हें समय समय पर आप किस तरह के आहार दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और आज हम एक खास विषय लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पशुओं को उपचारित भूसा खिलाने के महत्व के बारे में। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, जो कि पशु वैज्ञानिक हैं KVK बांका से, और आज वो बहुत सारी जानकारी आपको देंगे उपचारित भूसा के बारे में कि कैसे आप खिलाएं, क्या महत्व है इसका, अगर आप पशुओं को खिलाते हैं तो क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद मैडम।
5: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि ये उपचारित भूसा क्या होता है।
6: एक्चुअली हमारे पशुपालक जो भूसा को खिलाते हैं ना, भूसा को खिलाते हैं तो उसमें पौष्टिकता कम होती है, सुपाच भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो उसको हम लोग उपचारित करते हैं, बहुत सारे केमिकल रसायन से उपचारित करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है जो यूरिया से उपचारित करने की, तो यूरिया से उपचारित जो करते हैं उसी भूसा को जब पशु खिलाते हैं उसको उपचारित भूसा कहते हैं।
5: जी, उपचारित भूसा आपने जाना कि क्या होता है, और इसके खिलाने के क्या कुछ

0: फायदे मिल सकते हैं?
1: एक्चुअली जब हम किसी चीज से उपचारित करते हैं, एग्जाम्पल ले ले, हम लोग यूरिया उपचारित की बात कर रहे हैं, यदि यूरिया से उपचारित करते हैं तो इसमें क्या होता है, वो जो भूसा है वो ज्यादा सुपाच हो जाती है। जैसे कि मक्के की डंठल हो गई या चावल का छिलका हो गया, धान का छिलका, यदि इसको उपचारित कर देते हैं तो ये मुलायम हो जाती है, मतलब अधिक पलेटेबल, अधिक स्वाद लेकर पशु खाती है। इसके साथ साथ इसमें पौष्टिकता भी बढ़ जाती है, तो ये सब काफी फायदे हो जाते हैं, मतलब उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इसलिए
0: पौष्टिकता से बढ़ जाती है और सुपाच्य हो जाता है, आसानी से पचने वाले पशुओं के लिए। जी, तो डॉक्टर साहब, अब तो अगर इसे खिला रहे हैं अपने पशुओं को हम, हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई, तो क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए उपचारित भूसा को खिलाने समय?
1: एक्चुअली है क्या कि यदि उपचारित भूसा, यदि यूरिया से उपचारित करके खिला रहे हैं, इसके जो नियम है इसके अंतर्गत है कि उपचारित किए हैं तो 21 दिन के बाद ही इसको खिलाना है ना। अच्छा। तुरंत खिलाएंगे तो यूरिया के कारण ही हानि भी कर सकती है, तो 21 दिन के बाद खिलानी है। और इसमें क्या होता है, जानवर जो खाती है उसमें उसका स्वाद बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, उसकी गंध जो निकलती है, तो इसके कारण अमोनिया एक गंध निकलती है जिसके कारण शुरुआत में खाना कम पसंद करती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भूसा, उपचारित भूसा है, उसको आधे घंटे के लिए कम से कम बाहर में बिछा कर छोड़ देना, किसी पेपर पे या प्लास्टिक बिछा कर छोड़ देना,
0: धूप में,
1: शेड में है। अच्छा। शेड में है या धूप ही थोड़ा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कहीं पर ही बिछा देना ताकि केवल उसका गैस निकल जाए। वो गैस निकल जाने के बाद आप उसको, हाँ, उसकी गंध निकल जाए, उसके बाद आप अपने पशु को खिला सकते हैं। और उपचारित करने समय खासकर ध्यान देने की जरूरत है कि जो घोल बना के रखे हैं उसको जानवर डायरेक्ट पी नहीं जाए, इसकी सावधानी रखने की जरूरत है और बच्चों से दूर रखने की जरूरत है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि मतलब डायरेक्ट ना पी जाए, तो फिर कैसे पिलाना होगा उन्हें?
1: नहीं, उसको पिलाना नहीं बल्कि उस घोल से उसको उपचारित करना है।
0: अच्छा,
1: और इसको उपचारित करने के जो तरीके हैं वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपके पास भूसा है तो 100 किलो भूसा लेंगे, 100 किलो भूसा के लिए मात्रा जो बता रहे हैं, 100 किलो भूसा किसी चीज का, या तो पुआल की कुट्टी हो, या गेहूं का भूसा हो, या मकई का डंठल हो, या मकई की बलरी हो, सभी चीज का आप यूरिया उपचारित कर सकते हैं। इसको करने के लिए 100 किलो भूसे के लिए आपको 4 किलो यूरिया लगेगी, है ना। 4 किलो यूरिया का 40 लीटर पानी में घोल बनानी है, 40 लीटर पानी लेंगे, उसमें 4 किलो यूरिया डाल देंगे, उसका बढ़िया से डंडे से घुमाकर घोल लेंगे, एक घोल तैयार होगी। उसके बाद क्या करना है, उस 100 किलो भूसे को एक प्लेन सरफेस पे बिछा देना, बिछा देना तो उसकी जो भूसे हैं उसकी मोटाई, जो थिकनेस होती है, वो लगभग 6 इंच की होनी चाहिए, है ना। इतनी मोटा बिछा दिए, उसके बाद उसके बराबर मात्रा में हाथ से भी या कोई छलनी लेकर उस पर छिड़क देना है, बराबर मात्रा में छिड़क दिए तो 100 किलो भूसा के लिए हो गया। फिर से दूसरा 100 किलो भूसा लेना, उसी पर दूसरे परत के रूप में बिछा देनी है, और अलग से फिर से 4 किलो यूरिया और 40 लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़कना है। इसी तरह तह पे तह बनाते जाएंगे, उसके बाद दो आदमी उस पर चल के उसको बैठाएंगे, दबाएंगे, मतलब कि अच्छी तरह से पैक हो जाए। इस तरह से मान लिया कि 1 टन भूसे को उपचारित करना था तो 10 लेयर 10 परत बनेगी, 10वां परत समाप्त हो जाती है। उसके बाद एक प्लास्टिक ले लें, उससे ऊपर से ढक दें। यदि प्लास्टिक की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो नॉर्मल पुआल जो होते हैं, सूखा पुआल, वो भी डाल दे सकते हैं, उसके ऊपर जूट का बोरा या प्लास्टिक का बोरा रख दें। इस प्रकार से उसको 21 दिन के लिए छोड़ देना। 21 दिन के बाद क्या होगा कि ये जो भूसा है वो देखिएगा थोड़ा कलर डाउन हो जाएगी, लेकिन रंग उसकी डाउन हो जाएगी, भूरा टाइप पर थोड़ी हो जाएगी, लेकिन बहुत मुलायम हो जाएगी और सुपाच हो जाती है। अब इसको खिलाने के लिए वही करना है कि आधे घंटे के लिए बाहर छोड़ देना है और धीरे धीरे करके पशु को आदत लगानी इसको खिलाने के लिए। इसके कारण होती क्या है, एक्चुअली भूसा जो होती है उसमें लिग्निन रहता है, सेलुलो लिग्निन बॉन्ड, लिग्नो सेलुलोज बॉन्ड रहती है, उसके कारण सुपाच नहीं रहती है। अब ये यूरिया जो डाले इससे अमोनिया गैस बनती है, वो अमोनिया गैस उसको तोड़ देती है, जिसके कारण ये मुलायम हो जाती है और ये नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है, मतलब कि जिस भूसे में प्रोटीन की मात्रा मात्र 2 से 2.5% तक होती है, वो बढ़कर 6 से 7% हो जाती है, मतलब कि प्रोटीन की मात्रा 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है, यानी आपके पशु को प्रोटीन सस्ते में उपलब्ध हो जाएगी और सुपाच हो जाएगी। खास करके मक्के का डंठल या चावल का छिलका, जो धान का छिलका है, वो यदि पशु नहीं ऐसे खा रहे हैं उसको यूरिया उपचारित करके खिलाइए, बहुत अच्छी तरह से खाएगी और उसको पौष्टिकता भी अधिक मिलेगी।
0: जी, और अगर मान लीजिए कि हम गाय और भैंस को खिलाते हैं और मेन मोटिव है हमारा कि हम दूध का उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या इससे ये जो भूसा जो है उपचारित करके खिलाया जाता है तो

0: वृद्धि होती है दूध में?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है, खासकर पशुपालकों के लिए, कि यदि आप यूरिया उपचारित करके भूसा खिलाते हैं तो आपको खल्ली मतलब प्रोटीन का सोर्स होता है वो कम देनी पड़ेगी और दूध भी इससे बढ़ेगी। हमारे यहाँ किसान जो पूरी तरह संतुलित रूप में खिला रहे हैं उनको इतना फायदा हो रहा है कि यदि वो 5 किलो दाना खिला रहे हैं पशु को और यूरिया उपचारित भूसा यदि खिलाना शुरू करते हैं, पहले वो प्लेन भूसा खिला रहे थे तो 5 किलो

0: हाँ, मतलब कि 2400 रुपया की बचत कर ले रहे हैं, यानी 10 गाय उनके पास है, 240 रुपये की प्रत्येक दिन की बचत हो जा रही है, यानी कि महीने में एक लेबर का खर्च बचा ले रहे हैं। और नॉर्मल किसान जिनकी गाय 4 से 5 लीटर दूध दे रही है, वो यदि यूरिया उपचारित भूसा खिलाते हैं तो उनको खल्ली भी देने की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत फायदेमंद चीज़ होती है जिसमें खर्च भी कम है, केवल थोड़ी सी मेहनत है।
1: जी, मतलब मेहनत है और जितना ज़्यादा आपका खर्च लगता था अन्य जो भूसे हैं या फिर चारा वगैरह लाने में, उसमें भी ये अगर उपचारित भूसा खिलाते हैं तो उसमें भी कमी आएगी, है ना?
0: हाँ, इसमें भी कमी आती है और खास करके इसके संग्रह करने में बहुत किसान भाइयों की हेल्प मिलेगी। इसलिए हेल्प मिलती है कि इसको जब दबा कर हम रखते हैं ना, तो इसके कारण क्या होते हैं, जिस जगह पे आप 1 टन भूसा रख पा रहे थे वहां पर 2 से 2.5 टन भूसा आप रख पाएंगे।
1: ये हल्का होता
0: है, चूंकि ये बहुत ज्यादा पैक हो जाती है, हल्का होने के कारण कम अटती थी, लेकिन अब इसको पानी की मात्रा मिल गई और 2 आदमी मिलकर चढ़ के दबा रहे हैं, जिसके कारण क्या होती है, कम जगह में ज्यादा स्टोर कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ इसमें अमोनिया की जो गंध होती है, जिसके कारण इसमें चूहे नहीं लगते हैं। अच्छा। और कोई भी फंगस नहीं लेंगे, कीड़े नहीं लेंगे। पशुपालक भाई को जब ये उपचार करने के तरीके बताए जाते हैं तो उनको 2 तरह की परेशानी नजर आती है। एक तो होती है कि 4 किलो यूरिया मिला रहे हैं, इसके कारण मेरे जानवर को कुछ हो तो नहीं जाएगी। दूसरी परेशानी रहती है 40 लीटर पानी मिला रहे हैं तो सड़ तो नहीं जाएगी मेरी भूसे। तो एक किसान पशुपालक भाई ये आपको बता दें कि जो 21 दिन के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं तो यूरिया नहीं रह जाती है। आप लोग सभी जानते हैं जब पानी में यूरिया को मिलाई जाती है तो अमोनिया गैस बन जाती है, वही अमोनिया गैस उस भूसे में रहती है, इसलिए उससे डरने की बात नहीं है। और दूसरी बात, पानी जो मिला रहे हैं इसमें अमोनिया गैस के कारण इसमें फंगस तक नहीं लगेंगे। आप इसको 2 साल 4 साल तक भी संग्रह कर सकते हैं, इसमें चूहे भी नहीं लगेंगे, जो कि आपकी समस्या होती है चूहे लगने की। केवल परेशानी एक ही चीज़ आपकी आएगी कि जो भूसे में आप अनाज गेहूं ये सब अंदर में रखते हैं वो नहीं रख पाएंगे यदि यूरिया उपचारित भूसा करते हैं तो। बाकी स्टोर करने, संग्रह करने के लिए बहुत अच्छा तरीका भी है।
1: तो सर, ये कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं?
0: इसको पैक करके रख सकते हैं 2 साल 4 साल तक आराम से रख सकते हैं, मतलब कह सकते हैं 5 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, यदि आप ऊपर से पैक करके रख सकते हैं कि अमोनिया गैस बाहर नहीं निकल जाए। यदि पूरे खुले में कर रहे हैं, प्लास्टिक से नहीं ढक पा रहे हैं, तो 1 साल तक आराम से आप रख सकते हैं। यदि प्लास्टिक से बढ़िया पैक कर दिया तो 5 साल तक कोई समस्या नहीं आएगी।
1: जी, तो किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों, आज उपचारित भूसा के बारे में आपने जाना। डॉक्टर साहब, ज़्यादा से ज़्यादा कोई संदेश आप हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों को देना चाहेंगे?
0: पशुपालक भाई को हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग की जो पशुपालन में सबसे अधिक खर्च होती है वो खिलाने पे खर्च होती है, तो हम लोग ये कोशिश करें कैसे कम खर्च में अधिक पौष्टिकता अपने पशु को उपलब्ध करा पाएं। इसके लिए नई नई तकनीक आती है, जैसे भूसे को यूरिया उपचारित करके खिलाना, मक्के को डंठल को खिलाना, ये सब तरीके अपनाएं और नई तकनीकें जो पशुपालन में है उसका उपयोग करके हम लोग आधुनिक रूप से पशुपालन करें, तभी हम लोग फायदा ले सकते हैं।
1: और अगर आप बांका के आसपास हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र बांका भी जा सकते हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र सर से आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पशु को लेकर कुछ भी समस्याएं हो रही हैं। तो आज के लिए रेडियो वार्ता में तो इतना ही। अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे आप सभी के बीच। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओ, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेशधाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि ये नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजन

0: एक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों के दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओ, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया, माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों में। हजारों हजारों साल से मां ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: इनका तू है?
2: क्या करूंगी? गमक हुआ इधर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है?
1: ओह,
2: तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बस्सी, तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ, चल घर चल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।
2: नहीं,

0: उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।
2: बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, बेटी तू बसंती, उदास मत हो। उदास ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। अद्भुत यात्रा साबित इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सकोगे।

0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सा

0: डालते वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
1: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी, अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है दीदी, चल।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों?

0: क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
0: हाँ?
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
0: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
0: हाँ?
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है?
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांज के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
0: और क्या?
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
0: घटेगा।
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
0: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
3: चलो चलो
0: जल्दी चलो, सबको बताते हैं।

इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाले सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाईमिथो 8 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही

करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट और पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह, वैज्ञानिक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। आज जो जानकारी लेकर आए हैं वो है बहुउपयोगी मसाला हल्दी की खेती के बारे में। आज इसके बारे में जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद मैम।
0: आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हल्दी का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है और इसके फायदे क्या क्या है।
2: जैसा कि हमारे किसान भाइयों को पता है कि हमारे दैनिक जीवन में हल्दी का बहुत ज़्यादा उपयोग है। जैसे मसालों में हल्दी भारत की धरोहर है। प्राचीन काल से ही भारतवासी हल्दी का इस्तेमाल दाल, सब्जी, चटनी, अचार तथा अन्य भोज सामग्रियों को लुभावना तथा सुनहरा रंग प्रदान करने के साथ ही साथ विशेष प्रकार के सुगंध भरने के लिए करते हैं। भारतीय पकवान तो बिना हल्दी के बन नहीं सकती, और यदि बनता भी है तो उसका रंग फीका दिखता है तथा स्वाद में भी फीका पड़ जाता है। राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिकों के अनुसार हल्दी में कैंसर रोधी गुण विद्यमान है। शायद हल्दी के इन्हीं गुणों के कारण भारतीय लोग आदिकाल से हल्दी का इस्तेमाल भोजन में करते आ रहे हैं। प्राचीन काल से ही हल्दी प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु रही है। शुभ एवं मांगलिक अवसरों पर हल्दी का इस्तेमाल प्रधानता के साथ भारत में किया जाता है। शादी विवाह के अवसर पर हल्दी का उपयोग विभिन्न मांगलिक कार्यों में किया जाता है। घरेलू चिकित्सा पद्धति में हल्दी अनेकों मर्ज की एक अचूक औषधि है। हल्दी का विश्व में कुल उत्पादन का लगभग 86% भारत का हिस्सेदारी है। आंध्र प्रदेश हल्दी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। जहाँ तक मैं ये बता दूँ कि बिहार के भी कुछ जिलों में हल्दी की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं।
0: जी, ऐसे सुना गया है कि हल्दी की खेती में कुछ समस्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं, ज़रा उसके बारे में बताएं।
2: हल्दी की खेती में किसान भाई उसको ये ना सोचे कि क्या नुकसान होता है। उसका मतलब ये है कि नुकसान के बारे में हम आपको बता दें कि इसका मतलब ये होता है कि हल्दी की फसल को तैयार होने में 8 से 9 महीने का समय लगता है। इस प्रकार यह दो फसल अवधि ले लेती है। जो हमारे लघु सीमांत किसान हैं, जिनके पास खेत कम है, उनके लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दो फसल ले लेता है एक हल्दी के क्रॉप। जो हमारे किसान भाई उतने टाइम में 2 या 3 फसल ले लेते हैं, इसमें आप एक ही फसल ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हल्दी का बीज दर 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर है, जिसे खरीदने पर काफ़ी खर्च पड़ता है। यदि किसी किसान के पास इसका बीज नहीं है तो उसे बीज का अधिक खर्च करना पड़ता है। तीसरा, हल्दी उखाड़ने के बाद बाजार भेजने से पहले उसका प्रसंस्करण करना पड़ता है, जिससे अधिक श्रम एवं खर्च पड़ता है। चौथा, रोग रोधी अधिक उपज एवं उच्च गुणवत्ता वाले किस्मों के बीज किसानों को नहीं मिल पाते हैं। इसके वजह से हमारे किसान भाइयों इसमें प्रॉब्लम होती है और उसके उपज में उनको नुकसान होता है।
0: जी, तो अब आप किसान भाइयों को हल्दी के उन्नत किस्मों के बारे में बताएं ताकि वो इसकी खेती अधिक से अधिक लाभ उठा सकें इसकी खेती में।
2: हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट में, हमारे खुद के स्टेट में राजेंद्र सोनिया एक ऐसी वैरायटी है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा ढोली से इसको निकाला गया है। इसकी खेती के लिए हल्दी की उपज क्षमता 8 टन प्रति हेक्टेयर है। यह 210 दिनों में तैयार हो जाती है। इसमें करक्यूमिन, जो उसका पीलापन होता है, रंग रसायन जो उसमें पाया जाता है, उसकी मात्रा 8.5% होती है।

0: प्रकार बहुत सारी वैरायटी हैं, सोना, शोभा, कांति, NDH-18, NDH-19, जो कि ND यूनिवर्सिटी अयोध्या से निकाली गई है, प्रतिभा, स्वर्णा, इन सभी वैरायटियों को हमारे किसान भाइयों लगा करके अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं।
1: हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है और इसकी खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है और खेत की तैयारी कैसे करेंगे?
0: हल्दी की फसल खेत के लिए गर्म एवं नम जलवायु सर्वोत्तम होती है। औसत वार्षिक वर्षा 900 से 1000 मिलीमीटर उपयुक्त होती है। बुआई तथा जमाव के समय कम वर्षा तथा पौधों के वृद्धि एवं विकास के समय अधिक वर्षा चाहिए। फसल परिपक्वता अवधि में शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। और जहाँ तक हम भूमि की बात करें, हल्दी के लिए जीवांशयुक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें जल निकास का उचित प्रबंध हो तथा मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी की हम बात करें, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के उपरांत 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करके पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। अंतिम जुताई के समय 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खेत में बराबर मात्रा में डालकर मिट्टी में भली भांति मिला दें।
1: तो आपने अभी हल्दी के किस्मों के बारे में बताया, साथ ही साथ जलवायु के बारे में भी जानकारी दी। अब आप हल्दी के बीज उपचार, बुआई का समय, बीज दर और बुआई की दूरी और गहराई के बारे में बताएं।
0: जहाँ तक हम बीज उपचार की बात करें किसान भाइयों से, तो बीज उपचार हम हल्दी के केस में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हल्दी की बुआई के पूर्व प्रकंदों की फफूदीनाशक इंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम अथवा कार्बेंडाजीन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर बना लें। घोल के में कंदों को 60 मिनट लगभग 1 घंटा तक डुबो कर रखने के बाद छाया में सुखा कर 24 घंटे बाद ही बुआई करनी चाहिए। बुआई का समय, हल्दी की बुआई के समय पर इसकी उपज पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को 15 मई से 15 जून तक इसकी बुआई अवश्य कर देनी चाहिए। और बीज उपचार की हम जहाँ तक बात करें, बीज की मात्रा प्रकंदों के आधार पर निर्भर करता है। यह मुख्य रूप से स्वस्थ व रोग मातृ प्रकंद एवं प्राथमिक प्रकंदों को ही बीज के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ऐसे प्रकंद जिसका वजन 20 से 25 ग्राम हो तथा प्रत्येक प्रकंद में 3 से 4 आँखें, जिसको हम बांड भी बोलते हैं, के बीज के लिए अच्छा माना जाता है। बुआई की दूरी तथा गहराई, अच्छी उपज के लिए बीज बुआई हेतु कतार से कतार दूरी 30 सेंटीमीटर तथा प्रकंद से प्रकंद की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं। प्रकंदों की बुआई 5 सेंटीमीटर गहराई में की करनी चाहिए।
1: अब इसके लिए खाद एवं उर्वरक प्रयोग की मात्रा, सिंचाई एवं जल निकास और निकाई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताएं।
0: खाद एवं उर्वरक, हल्दी की फसल अन्य फसलों की अपेक्षा भूमि से अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। खेत की अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें। रासायनिक उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन 150 किग्रा, फास्फोरस 60 किग्रा तथा पोटास 120 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की आधी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा खेत में अंतिम जुताई के समय दें। तथा किसान भाई एक चीज़ और ध्यान दें कि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के 35 से 40 दिन बाद तथा नाइट्रोजन की शेष 1/3 मात्रा, पोटास शेष आधी मात्रा बुआई के 75 से 80 दिन के बाद दें। सिंचाई एवं जल निकास की हम बात करें तो हल्दी की फसल को पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। मिट्टी की सिंचाई, जलवायु, भूमि की संरचना, वर्षा तथा पलवार, जिसको हम मल्चिंग भी कहते हैं, के अनुसार 10 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जाती है। प्रकंदों में के जमाव व वृद्धि विकास के लिए समय समय पर सिंचाई करना बहुत ही जरूरी है। और हम निकाई गुड़ाई और खरपतवार के बारे में हम बता दें आपको कि हल्दी के खेत में पत्तियों की पलवार, जैसे मल्चिंग, जिसे हम मल्चिंग कहते हैं, लगाने से काफ़ी हद तक खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है।

0: हल्दी की फसल में प्रायः 3 बार गुड़ाई करने से खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ प्रकंदों में वृद्धि एवं विकास अच्छे तरीके से होती है, जिससे हमारे किसान भाइयों प्रथम गुड़ाई बुआई के 30 दिन बाद, तृतीय बुआई के 60 दिन बाद तथा तृतीय 90 दिनों के बाद करें।
1: अंत में आप इसमें मुख्य रूप से लगने वाले कीट एवं बीमारियों

पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। पौधों के प्रारंभिक अवस्था में कजरा पिल्लू जमीन की सतह से पौधे को काट देता है। इससे बचाव हेतु दानेदार फोराडान 3G कीटनाशी दवा का 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयारी के समय ही मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। दूसरा है तना छेदक। यह कीट छेद करके भीतर घुस जाता है तथा पत्ते को खोखला बना देता है, जिससे पौधा मर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए इमेमेक्टाक्लोर बेंजोएट कीटनाशी दवा का 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तीसरा है थ्रिप्स। इसका उपयोग, यह कीट पौधे के हरी पत्तियों को चूसता है तथा पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोफीड कीटनाशी दवा का 1 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। हल्दी के कुछ प्रमुख रोग एवं नियंत्रण है। प्रकंद विगलन रोग, फसल के प्रारंभिक बढ़वार के अवस्था में पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं तथा जमीन के ऊपर का तना गल जाता है। भूमि के भीतर का प्रकंद भी सड़कर गोबर की खाद की तरह हो जाता है। यह बीमारी जल भराव वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। रोगग्रस्त बीज प्रकंद बोने पर ही यह रोग लग जाता है। इसके नियंत्रण हेतु खेत में पानी नहीं रुकने दें तथा कापर ऑक्सीक्लोराइड फफूंदी नाशक दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों के जड़ों के पास भिगोएं तथा पौधों पर भी इसी घोल का छिड़काव करें। स्वस्थ प्रकंद की बुआई करें और इससे आप नियंत्रण कर सकते हैं। और तीसरा ये है पूर्ण धब्बा रोग या पर्ण चत्ती रोग। इसके नियंत्रण के लिए भी मैंकोजेब फफूंदी नाशक दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर इसका छिड़काव करें और इसको इससे नियंत्रण पाएं। इसका प्रसंस्करण जो है, हमारे जो किसान भाइयों को मैं बता दूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हल्दी की खेती करने के बाद आप उसे करेंगे क्या, उसका क्या कर सकते हैं आगे, उसमें है प्रकंदों को पहले उबालें। इसमें करते क्या है, सर्वप्रथम लंबी तथा गोली प्रकंदों को अलग अलग काट लिया जाता है। इसके उपरांत लंबी प्रकंदों को अलग तथा गोले प्रकंदों को अलग अलग उबाला जाता है। प्रकंदों को एल्युमिनियम या मिट्टी के बर्तन में उबालना चाहिए। प्रकंदों को बर्तन में सुखाने के बाद ऊपर से पानी भर दिया जाता है ताकि प्रकंद पानी में डूब जाएं तथा बर्तन में मुंह पर धान या कापुआल या हल्दी के सूखी पत्तियों की परत रखकर ढक्कन से ढक दें। इसके बाद उसे धीमी आंच में उबलने दें। लंबे गाँट 1 से 2 घंटे में तथा गोले गाँट 2 से 2.5 घंटे में पूर्ण रूप से पक जाते हैं। जब बर्तन के मुंह से पीला पीला हल्दी के रंग का झाग निकलने लगे तथा हल्दी का गंध आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हल्दी के प्रकंद पूरी तरह से पक चुके हैं। दूसरा है उबले प्रकंदों को सुखाना। उबले प्रकंदों को सुखाने के लिए प्रकंदों को त्रिपाल या पक्की साफ सुथरा जगह पर धूप में पतली परत में फैला दिया जाता है। इस प्रकंदों को शाम के समय जमा कर त्रिपाल से ढक देते हैं ताकि रात में उस पर ओस न गिरे। हल्दी की उबली प्रकंद लगभग 10 से 15 दिनों में सूखकर तैयार हो जाती है। अच्छी प्रकंद से सूखी प्रकंद बिल्कुल सख्त तथा तोड़ने पर चट की आवाज़ करनी चाहिए। सूखने के बाद प्रकंदों में नमी 8% से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि उसे लंबी अवधि तक भंडारित किया जा सके। तीसरा है सूखे प्रकंदों का पॉलिशिंग करना, जो उसके चमक को लाता है, जो आप मार्केटिंग में उसको भेजते हैं, जिसका आपको लगता है कि अच्छे हमको वो उपज किए हैं तो अच्छा उसका वो आपको पैदावार मिला है तो उसका अच्छा बेनिफिट मिले, उसके लिए क्या करते हैं कि बाज़ार में हल्दी की अच्छी किस्म लेने के लिए हल्दी को पॉलिशिंग किया जाता है ताकि हल्दी आकर्षक एवं चमकदार दिखे। सूखे प्रकंद को जूट के बोरे या बांस की टोकरी से रख कर रगड़ा जाता है ताकि छिलका, मिट्टी का कण तथा छोटी जड़ें बाहर निकल जाएं। अब इसे हल्दी के पाउडर का गाढ़ा घोल बनाकर उसे रंग देते हैं तथा सूखा देते हैं। बड़े पैमाने पर पॉलिशिंग या का कार्य यांत्रिक विधि से किया जाता है। पॉलिशिंग के बाद प्रकंदों को किसी वायुरोधी

0: बड़े डब्बे में भंडारण कर सकते हैं या बाजार में बेच सकते हैं और हमारे किसान भाइयों इससे अधिक से अधिक आय कर सकते हैं।
1: जी तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे हल्दी की खेती के बारे में, और आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि

तैयार हैं आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
1: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
4: नमस्कार किसान भाइयों, आइए एक बार फिर से आप सभी से हम मुलाकात करने आ चुके हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, जहाँ आप जानते हैं बहुत ही खास बातें, उपयोगी बातें, और आज फिर से बहुत ही खास आपके फायदे की बातें हम लेकर आए हैं। जी हाँ, जहाँ तक खेती की बात होती है तो खेती में हम बहुत सारे चीज़ आपको बताते हैं, उनसे जुड़ी बातें बताते हैं, जिसे आप अपना कर एक सफल किसान बन सकते हैं, चाहे हमारे किसान बहनें हो या भाई हो। फिलहाल यहाँ पर आज का विषय आप सोच रहे होंगे कि क्या होने वाला है, तो आपको बिल्कुल बिना इंतज़ार करवाए मैं बताती हूँ। आज का विषय है आर्सेनिक दूषित मिट्टी में सुरक्षित खेती, और इस विषय पर खास चर्चा के साथ हमारे बीच हैं, जी हाँ बता दें हम, डॉक्टर विष्णुदेव प्रसाद जी, और मैं आपको बता दूं ये हैं सहायक प्राध्यापक बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि केमिकल्स जो हैं वो मानव को तो परेशान कर ही रहे हैं, और साथ ही अगर खेती की बात करें तो यहाँ भी ये अपने जो कहर हैं वो बरपा रहे हैं। फिलहाल आज का हमारा विषय है आर्सेनिक से रिलेटेड जुड़ा हुआ, तो आज सबसे पहले जानेंगे हम कि आर्सेनिक प्रदूषण क्या है और इसका मानक क्या है।
5: जैसा आपने बताया कि आर्सेनिक का एक भयावह स्थिति में पहुंच गई है, तो आर्सेनिक एक प्रकृति में पाए जाने वाला तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। पानी में आर्सेनिक की मात्रा, जो परमिसेबल लिमिट भी बोलते हैं उसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 PPB, मतलब 10 PPB होनी चाहिए, पर बहुत सारे हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इसकी मात्रा 10 से बहुत ज़्यादा है, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है।
4: जी, तो ये आपने जाना कि ये कैसे आपको प्रभावित कर सकता है, और इसके बाद डॉक्टर साहब अगर बात करें मानव की और फसलों की, तो इसका क्या क्या कुप्रभाव इस पर पड़ सकता है।
5: जैसा कि आप सभी जानते हैं आर्सेनिक एक बहुत ही खतरनाक तत्व है, जिससे त्वचा में संक्रमण, फेफड़ों का कैंसर तथा अन्य कई बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। हाल के दिनों में आर्सेनिक प्रदूषित जल का प्रयोग कृषि कार्यों में काफ़ी बढ़ गया है, जिससे मिट्टी में इसका संचय हो रहा है। फसल आर्सेनिक को खतरनाक स्तर तक अवशोषित कर रहा है, और इन फसलों में आर्सेनिक के कुप्रभाव देखने को मिल रहे हैं, और इसके उपयोग से मनुष्य तथा जो हमारे जानवर हैं वो भी प्रभावित हो गए हैं, और उनके जैसे हम लोग फसल खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं, जानवर के मांस खाते हैं या दूध पीते हैं, उससे भी आर्सेनिक हमारे खाद्य श्रृंखला में शामिल हो गई है।
4: यानी कि यूँ कहें कि अगर हम कोई शाक सब्जी खाते हैं, अगर खेती हो रही है, तो उसमें भी आर्सेनिक के कुछ जो मात्रा है वो चले जाते हैं,
5: बहुत ज्यादा आ सकती है। तो और जो भी अगर आर्सेनिक कंटामिनेटेड एरिया में जो भी चीज ग्रो हो गई है, और उस फसल को अगर हम खाते हैं या दूध के थ्रू हमारे शरीर में आता है, तो उससे भी आर्सेनिक का कुप्रभाव हो सकता है।
4: तो इस

0: प्रभाव से मतलब जो मानव है उनमें किस तरह की लक्षण या स्थिति दिखाई देती है सर?
1: मानवों में आप देखें हथेली में आर्सिनोट्रोसिस एक बीमारी होती है जो त्वचा में काले काले धब्बे नजर आते हैं।
0: अच्छा।
1: और उससे फेफड़ों में कैंसर भी बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया है, तो इससे बहुत ही खतरनाक बीमारियां हो सकती है।
0: तो क्या जानवरों को भी ये प्रभावित करता है?
1: हाँ, जानवरों में भी ये प्रभावित करता है, पर उनके लक्षण के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं
0: अभी पता चली है।
1: पर आदमी में, मनुष्यों में ऐसा बहुत ही ज्यादा कुप्रभाव देखने को मिला है।
0: अच्छा, तो सर जब बिहार राज्य की हम बात करते हैं तो आर्सेनिक प्रदूषण की कितनी भयावह स्थिति हमारे बिहार में है?
1: अगर हम ऐसे देखें तो दुनिया में इससे बहुत सारे देश हैं उसमें आर्सेनिक का इफेक्ट है। भारत देश में अगर हम भारत की बात करते हैं तो 7 राज्य ऐसे हैं जिसमें आर्सेनिक का कुप्रभाव देखा गया है। उनमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर हैं। बिहार, अगर हम बिहार की बात करें तो इसमें 18 जिले जो है आर्सेनिक से ग्रसित हैं। उनमें उन जिलों में भोजपुर, सागर, बेगूसराय, भागलपुर, पटना और बक्सर सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वैज्ञानिकों के सर्वे के अनुसार भोजपुर जिले में के कुदरिया गांव में पाया गया है कि सिंचाई जल में 80 ppb तक आर्सेनिक कंटामिनेशन है, जबकि सॉइल में 2.5 मतलब 2.5 ppm तक आर्सेनिक मात्रा पाई गई है, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति में है और इसे बचने के उपाय बहुत ही अत्यंत आवश्यक है।
0: तो सर अगर हमारे जो किसान भाई हैं, किसान बंधु हैं, अगर उन्हें पता लगाना हो कि जो उनके खेत में ये समस्या है या नहीं, आर्सेनिक की समस्या है या नहीं, तो वो कैसे पता लगा सकते हैं?
1: जैसा सभी किसान भाइयों को पता है कि आर्सेनिक का कोई गंध नहीं होता, स्वाद नहीं होता, महत्व नहीं होता, तो इसे पता लगाना थोड़ी डिफिकल्ट है। पर आप लोग देखते होंगे कि समय समय पर जल बोर्ड के अधिकारी आते हैं और आर्सेनिक दूषित क्षेत्र में वो सर्वे करते हैं और जो भी ट्यूबवेल होता है या कुआं होता है उसको लाल रंग से या रेड कलर से उसको अंकित करते हैं।
0: अच्छा।
1: अगर आपको जब पता चल गया कि ये रेड कलर से अंकित है तो उसका पानी का उपयोग ना करें। और अगर कृषक बंधु भाई बहन अगर चाहे तो अपने मिट्टी और सिंचाई जल को किसी सर्टिफाइड लेबोरेटरी में ले जाके वो चेक भी करवा सकते हैं।
0: जी, ये इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं किसान बंधु कि आर्सेनिक समस्या आपके खेत में है या नहीं, ये आपको प्रभावित कर रही है नहीं। और इसके बाद अगर प्रबंधन की बात करें डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमें पता लग जाता है कि हमारे खेत में आर्सेनिक की समस्या भी है तो इसका प्रबंधन यानी कि इसका निदान कैसे कैसे कर सकते हैं?
1: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देने की बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि जिस भूजल में या जिस ट्यूबवेल में आर्सेनिक कंटामिनेशन पता चल गया है उसका सिंचाई में बहुत कम से कम पानी यूज करें और ऐसे फसल को उगाएं जहाँ पे भूजल और जो जमीन से निकलने वाले जल का है उसका उपयोग कम से कम हो, क्योंकि भूजल में आर्सेनिक की कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। और किसान भाई ऐसे फसल चक्र का उपयोग कर सकते हैं जिसमें भूजल कम से कम यूज हो, जिसमें सिंचाई कम लगे, वैसे फसल चक्र का यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे आपने देखा होगा जो एग्रोकेमिकल्स जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स हम लोग स्प्रे करते हैं उसमें भी आर्सेनिक कंटामिनेशन हो सकते हैं, तो प्रयोग में लाने के पहले आप उनके लेबल को पढ़ें। अगर उसमें आर्सेनिक हो तो वैसे केमिकल्स, वैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड का उपयोग ना करें तो आप इसको प्रबंधन में ला सकते हैं।
0: तो इस तरीके से आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आपने जाना कि आर्सेनिक दूषित मिट्टी में आप सुरक्षित खेती कैसे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पहलुओं पर हमने चर्चा किया, जैसे कि इसका क्या जो है प्रभाव पड़ सकता है मानव पर, साथ ही फसलों पर। इसके बाद आपने जाना कि इसकी समस्या का निदान आप कैसे कर सकते हैं। और तो इस तरीके से अगर आप भी यानी इस समस्या से जूझ रहे हैं, आपके खेतों में भी ये समस्या है, तो आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आ सकते हैं और यहाँ पर हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही। सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम।
2: उन्नत कृषि उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि,

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाले सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे

तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण सीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुझे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। और आज फिर आप सभी के पास, आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूं मैं उन्नत कृषि कार्यक्रम। दोस्तों, अगर बात करें हम खेती की, तो उसमें हर फसलों की बात करते हैं, हम साग सब्जियों की बात करते हैं, लेकिन उसमें एक अलग चीज़ उसमें उससे जुड़ता है, यूँ कहें कि खेती और किसानों से जुड़ता है, वो है पंचगव्य। अगर इसकी बात करूँ मैं, तो खेती और हमारे जो किसान बंधु हैं वो तो पंचगव्य के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन इसके अलावा बहुत कम लोगों को इनके बारे में जानकारी होता है कि ये पंचगव्य क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, इसे कैसे बनाया जा सकता है, इसे किस तरीके से रखा जा सकता है, ये खेती में किस तरीके से फ़ायदेमंद है। तो आज यही विषय लेकर हम आए हैं, यानी कि पंचगव्य की पूरी जानकारी देने हम आपको आए हैं। तो आज का हमारा विषय है पंचगव्य बनाने का विधि एवं उपयोग, और इस विषय पर विशेष चर्चा के साथ आए हैं हमारे बीच डॉक्टर शंभु प्रसाद जी। और मैं आपको बता दूं कि ये हैं सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद मैडम।
2: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पंचगव्य है क्या?
3: मैडम, ये पंचगव्य खास करके मैं किसानों को विशेष रूप से ये बताना चाहूँगा, पंचगव्य जैसा कि नाम से ही ये स्पष्ट हो जा रहा है, पंच मीन्स पांच और गब मीन्स गाय।
2: जी।
3: तो गाय से प्राप्त पांच उत्पादों यथा गाय का गोबर, गाय का दूध, घी, दही और मूत्र को मिलाकर तैयार किया जाने वाला एक तरल जैविक खाद है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से जैविक खेती में की जाती है।
2: अच्छा।
3: और इसके प्रयोग से बहुत सारे फायदे हैं, और किसान अगर चाहेंगे कि अपनी खेती को समृद्ध बनाए, तो निश्चित रूप से उन्हें पंचगव्य को अपनी खेती में शामिल करने की जरूरत है।
2: जी, तो यहाँ पर आपने जाना कि पंचगव्य क्या है और इसके प्रयोग से, यानी कि खेती को और समृद्ध अगर बनाना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो इसकी बहुत ज़रूरत है, वो ऐसे बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी सामग्री की ओर जाते हैं, अगर इसे बनाना है तो सबसे पहले हम सामग्री को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या क्या सामग्री इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं?
3: जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि पंचगव्य बनाने के लिए गाय से प्राप्त पाँच उत्पादों की आवश्यकता होती है। उसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर है, गाय का दूध है, गाय का घी है, गाय का दही है और गौमूत्र है।
2: अच्छा।
3: इसके अलावे अगर हम पंचगव्य को और समृद्ध करना चाहते हैं, तो इन सारे पांच से उत्पादों के अतिरिक्त हमें कच्चे नारियल का पानी भी मिलाने की जरूरत पड़ती है, और उसमें चूंकि ये जीवाणु की सहायता से तैयार किया जाने वाला उत्पाद है पंचगव्य, तो इसके लिए हमें जीवाणुओं के भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसके लिए लगभग 250 से आधा किलोग्राम शक्कर की आवश्यकता होती है।
2: अच्छा।
3: जिसको आम भाषा में लोग गुड़ भी बोलते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है।
2: जी।
3: और फर्मेंटेशन की क्रिया को और बढ़ावा देने के लिए उसमें ईस्ट कल्चर की भी जरूरत पड़ती है।
2: अच्छा।

0: तो ईस्ट कल्चर को भी मिलाना हम लोग उचित समझते हैं और सजेशन भी देते हैं किसानों को कि ईस्ट कल्चर को भी उसमें मिलाया जाए, उससे फर्मेंटेशन और डिकम्पोजिशन की क्रिया थोड़ी फास्ट हो जाती है और पंचगव्य सही मायने में अच्छे तरह से तैयार हो पाते हैं।
1: ठीक, तो डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि कच्चे नारियल के पानी का इस्तेमाल पंचगव्य बनाने में किया जाता है इसके सामग्री के रूप में, तो हम जानना चाहेंगे कि क्यों किया जाता है कच्चे नारियल के पानी का इस्तेमाल?
0: ये जो कच्चे नारियल का पानी जिसको देहात में लोग डाब भी बोलते हैं,
1: जी जी,
0: और ख़ास करके जिन लोगों को पीलिया या जॉन्डिस की शिकायत होती है तो उसमें इस नारियल के पानी का प्रयोग भी लोग करते हैं। और इसमें एक खासियत है कि इसमें काइनेटिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिसकी काफ़ी उपयोगिता है क्लोरोफिल सिंथेसिस में।
1: जी।
0: तो अगर नारियल के पानी का प्रयोग हम पंचगव्य बनाने में करेंगे
1: जी जी।
0: तो इस काइनेटिन पदार्थ के कारण जिस पौधे पर पंचगव्य का स्प्रे होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह से होगी और फोटोसिंथेट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में बनेंगे। इसके साथ ही साथ पौधों का विकास भी सही होगा और दाने भी पुष्ट होंगे और उपज की अच्छी प्राप्ति होगी।
1: तो ये तो बात हो गई सामग्रियों की, और अब विधि जानना चाहेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है।
0: जी हाँ, इसको बनाने का तो बहुत ही सरल तरीका है, हालांकि इसको बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, विधियाँ हैं, लेकिन मैं काफ़ी सुगम विधि को किसानों के बीच लाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा उन्हें। और ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहले वो जो आवश्यक सामग्री है पंचगव्य बनाने के लिए, किसानों से अनुरोध होगा कि पहले उसको इकट्ठा कर लिया करें, और उसमें खास करके 5 किलोग्राम ताज़ा गोबर है, गाय का गोबर, 2 किलोग्राम गाय का दूध, 2 किलोग्राम दही, 1 किलोग्राम घी और 3 लीटर गौमूत्र। इसके अलावे उन्हें 3 लीटर कच्चे नारियल का पानी भी चाहिए, 250 से 500 ग्राम शक्कर चाहिए और 1 दर्जन पके हुए केले का पल्प या गुदा चाहिए।
1: जी,
0: मैं क्रम से इसको बताना चाहूँगा ताकि किसानों को, हमारे किसान बंधुओं को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो।
1: जी,
0: तो सबसे पहले क्या करें कि एक प्लास्टिक के टब में 5 किलोग्राम गाय का ताज़ा गोबर लें और उसमें 1 किलोग्राम गाय का घी को दोनों हाथों से अच्छी तरह से, जिस तरह से आटा गूंथते हैं उस तरह से मिला दें, और जब वो अच्छे तरह से मिल जाए तो उसको छाया में रख दें और उसको किसी सूती वाले कपड़े से या जूट की बोरी से ढक दें। दूसरी तरफ 20 से 25 लीटर क्षमता वाली एक प्लास्टिक का गैलन लें और उस गैलन में 3 लीटर गौमूत्र, 2 लीटर गाय का ताज़ा दूध, 2 लीटर 2 किलोग्राम दही, उसको मिलाएं और उसी में 3 लीटर कच्चे नारियल का पानी भी डाल दें और साथ में 250 से 500 ग्राम शक्कर को भी मिलाएं।
1: जी।
0: और ये इन सारे चीज़ों को मिलाने के बाद जो 1 दर्जन केला है उसके पल्प को अच्छी तरह से मसल कर इस मिश्रण में मिला दें और उस मिश्रण को छड़ी से या डंडा से इस तरह से मिलाएं कि सारा मिश्रण अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए।
1: जी।
0: अब इस गैलन को भी छाया में रखना है अलग 4 दिनों तक, दोनों ये पहले जो हमने पात्र में गोबर और घी का मिश्रण मिलाया है उसका वो टब जो है उसको भी अलग रखेंगे और उसी जगह इसको भी रख देंगे और इसके मुंह को भी सूती के कपड़े से या जूट वाले कपड़े से ढक के रखेंगे।
1: जी।
0: 4 दिनों तक दोनों जो मिश्रण है दोनों को अलग अलग रखा जाएगा और प्रत्येक दिन दोनों मिश्रण को दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार अच्छी तरह से मिलाना है। गोबर और गोबर और घी का जो मिश्रण हमने प्लास्टिक के टब में रखा है उसको भी मसल के मिलाना है और इधर जो तरल पदार्थ का मिश्रण है उसको भी छड़ी या डंडे से दिन में 3 बार घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में मिलाते हुए मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाकर मिला देना है।
1: जी।
0: और फिर 5वें दिन ये दोनों जो अलग अलग मिश्रण है दोनों को एक साथ कर देना है। गोबर और घी का जो मिश्रण है उसको चौड़े मुंह वाले गैलन जो प्लास्टिक के गैलन है उसमें डाल देना है और

0: फिर छड़ी या डंडे से उसको अच्छी तरह से मिला देना है। अब ये जो मिश्रण है इसको लगभग 15 दिनों तक छोड़ देना है छाया में ही, और फिर इसको प्रत्येक दिन 3 में 3 बार फिर छड़ी से मिलाना है घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में
1: जी।
0: तो इस प्रकार से 4 और 15 दिन 19 दिन के बाद ये हमारा जो है जो मिश्रण है वो तैयार हो जाएगा अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर पतले सूती के कपड़े से इसको हमें छान लेना है, और छानने के बाद जो तरल पदार्थ हमें मिलेगा वो पदार्थ हमारा पंचगव्य के रूप में माना जाएगा, और ये तरल पदार्थ हमारे खेती के लिए काफ़ी उपयोगी है। किसान इस तरल पदार्थ को, इस छने हुए तरल पदार्थ को पंचगव्य के रूप में अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों आपने जाना कि कैसे इसे बनाया जाता है। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि हम इसे कितने दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं।
0: एक्चुअली ये सारे जीवाणु के द्वारा ही कार्यान्वित होते हैं और इसमें जीवाणुओं की संख्या पर्याप्त होती है
1: जी।
0: तो बेहतर इस्तेमाल के लिए इसको इस तरल पदार्थ को जो तैयार पंचगव्य है उसको लगभग 2 महीने तक स्टोर किया जा सकता है।
1: 2 महीने तक
0: जी। तो उसमें उसकी क्रियाशीलता में कोई ज़्यादा कमी नहीं आती है, फिर ज़्यादा दिनों तक अगर रखेंगे तो उसकी क्रियाशीलता में कमी आती जाती है, इसीलिए बेहतर ये होगा कि उसको 2 महीने के अंदर ही उसका इस्तेमाल अपने खेतों में कर लें।
1: ठीक। तो सर अब इसमें जो है खेतों की बात करते हैं, तो इनका जो प्रयोग है वो खेतों में कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई?
0: किसान बंधु इसको विभिन्न रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। इसको बीज के साथ उपचारित भी कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: इसको सिंचाई जल के साथ खेतों में डाल भी सकते हैं, और फसल खरी फसल में इसका छिड़काव विधि के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी।
0: और खास करके मैं तो कहूँगा कि इसकी शुरुआत किसान बंधु अपने बीजों को उपचारित करने में, चाहे वो राइजोम हो या कटिंग हो या सीड्स हो, उसको लगभग 20 मिनट तक पंचगव्य के 3% घोल में डुबा करके रखें, और उसके बाद उसको छाया में थोड़ी देर के लिए सुखा दें, फिर उसका इस्तेमाल खेतों में बोने के रूप में या लगाने के रूप में या कटिंग को प्लांट करने के रूप में करें। तो इस तरह से सीड ट्रीटमेंट बीज उपचार के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किसान बंधु चाहते हैं कि मैं इसको मिट्टी में इस्तेमाल करूं, तो उसके लिए उन्हें सलाह दी जाती है कि पंचगव्य का 20 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई जल के साथ अपने खेतों में व्यवहार कर सकते हैं किसी भी फसल में, चाहे वो गेहूं हो, मक्का हो या दलहनी फसल हो, किसी भी फसल में इसका प्रयोग सिंचाई जिसमें सिंचाई जल का इस्तेमाल करते हैं उसमें करें, जिसमें सिंचाई जल का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसमें वो कंपोस्ट के साथ या बर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर खेत में छींट सकते हैं अंतिम जुताई के समय में। लेकिन खेत में थोड़ी नमी रहनी चाहिए उस समय, ताकि जो जीवाणु हैं उसको जीवित रहने का भी अवसर मिले, मौका मिले, और उतना जो आवश्यक तापमान है उस तापमान पर वो जीवित रह सके। तीसरी बात है कि छिड़काव के रूप में, छिड़काव के रूप में भी किसान बंधु इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और छिड़काव के रूप में इसके 3% घोल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब 1 लीटर पानी में 30 मिलीलीटर पंचगव्य को मिलाकर किसी भी फसल में इसका छिड़काव, किसी भी फसल में पंचगव्य का छिड़काव कर सकते हैं, और ये छिड़काव मुख्य रूप से 2 बार करनी चाहिए। पहला छिड़काव करना चाहिए जब कली वाली अवस्था आती है या कली लगना शुरू होता है पौधे में, उस समय करना चाहिए, और दूसरा छिड़काव करना चाहिए जब उसमें फल आ जाते हैं या पौधे में फल जब पकड़ लेता है तो उस समय उसका छिड़काव करना चाहिए। अगर एक ही छिड़काव करना है उनको तो फल लगने के बाद इसका छिड़काव करें, और इससे उनको काफ़ी फायदा मिलेगा, और हम लोगों ने अपने यहाँ प्रयोग करके भी देखा है, देख भी रहे हैं। तो इसके छिड़काव से एक फायदा ये समझ में आता है कि इसमें कुछ एक विशेष प्रकार का गंध होता है।
1: अच्छा।
0: जिसके वजह से पौधे में कीड़े और रोग का प्रकोप कम हो जाता है।
1: अच्छा।
0: जिस फसल में इसका छिड़काव

0: करते हैं उसके आसपास कीड़े नजर नहीं आते हैं। तो ये काफ़ी उपयोगी है और ना सिर्फ ये रिपेलेंट का काम करता है बल्कि पौधों में ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है, उसके विकास में सहायक होता है और इसमें बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे फंगस, बहुत सारे एक्टिनोमाइसिटीज लाखों की संख्या में पाए जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। मिट्टी में जो पोषक तत्व तो ऐसे रूप में विद्यमान हैं, वर्तमान है, ये मौजूद हैं जो पौधों को मिल नहीं पा रहे हैं, उनको भी घुलाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं और पौधों के जड़ के आसपास एक ऐसा आवरण बनाते हैं, एक ऐसा परिधि बनाते हैं जिसमें हानिकारक रोग का अटैक नहीं हो पाता है, जिसके वजह से पौधे स्वस्थ रह पाते हैं। अगर हम फोलियर स्प्रे कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी पौधों के पत्तियों पर भी एक आवरण बनाता है जिसके वजह से बाहरी कीटों का या रोगों का प्रकोप नहीं के बराबर हो पाता है।
1: तो आपने जाना किसान बंधुओं की क्या क्या फ़ायदे हैं पंचगव्य के, और आपने जाना कि कैसे इसे बना सकते हैं हम, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं खेतों में, इसकी विधि को जाना आपने और साथ ही बहुत सारी चीज़ें से जुड़ी जो हैं डॉक्टर साहब ने बताया। तो फिलहाल तो चाहेंगे कि आप भी अगर नहीं जानते हैं इसे बनाना तो यहाँ पर जो भी आप सभी को बताया गया तो अगर आप उसे अपनाते हैं, उसे फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप इसे सीख जाएंगे बनाना और आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए ये उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
5: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढककर खांसो।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा।

और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि

की किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी, धान और राजेंद्र, श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता, और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों, इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर ले। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करे और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें, साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें, और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाली सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं।

जाए और सही उपचार ले। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान

8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाली सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे?

है, है ना। लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सun रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन पे सामाजिक पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है और जब महिलाएं कामकाजी हो या फिर घरेलू हों, उन पर एक अलग तरह का दबाव आज भी महसूस वो करती होंगी। कई बार महिलाओं पर ये दबाव होता है कि महिलाओं को सहनशील दिखना है, कई बार परफेक्ट दिखने का दबाव, कई बार करियर में अच्छा करने का दबाव, कई बार करियर के साथ घर को संभालने का दबाव, अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही जिंदगी में ऐसे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, पुरुषों को भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पर कई बार महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं, क्योंकि अगर वो किसी को बताती भी हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, करियर और घर साथ में नहीं संभल रहा या फिर बच्चों से ऊब गई है, तो फटाक से उससे ये सवाल कर लिया जाता है कि कोई महिला होकर बच्चे से कैसे ऊब सकती है। करियर के साथ तो घर संभालना ही पड़ेगा, घर संभालने का काम तो महिलाओं का ही है ना। मतलब इतनी सारी बातें कह दी जाती है कि एक वक्त आते आते महिला ये समझना शुरू कर देती है कि उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा ख़राब लग रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। करियर, रिश्ता, घर, सोसाइटी, इन सब की उम्मीदों के बीच महिलाएं अपनी इमोशंस को एडजस्टमेंट समझकर दबा लेती है और यही वजह होती है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े शुरुआती लक्षण वो टाइम पर नहीं पहचान पाती और प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत गहरी होती जाती है। अगर आप में भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बाद में जाकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपको लगातार थकान लग रहा है, मोटिवेशन की कमी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद आप थकी थकी सी लगती हैं,

छोटे छोटे काम भी आपको भारी लगने लगे हैं, जिन काम को आप बहुत पहले आराम से निपटा लिया करती थी, जो चीजें आपको पहले बहुत खुशी देती थी, अब वो करने की एनर्जी ही नहीं बची है, वो करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपको पहले शॉपिंग करना पसंद था, फिल्में देखना पसंद था, खाना बनाना पसंद था, पर अब वो चीजें करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपके अंदर उन चीजों को करने के लिए एनर्जी नहीं बची है, उनमें अब दिलचस्पी ही नहीं रही है। तो ये सिर्फ शारीरिक थकान की वजह से नहीं हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि आप मेंटली परेशान हो, आप मेंटली थक गई हो। ये डिप्रेशन या एंजाइटी की शुरुआती निशानी भी हो सकती है, जिसे अक्सर महिलाएं कोई रूटीन स्ट्रेस कहकर टाल देती हैं कि चलो इतने काम के बाद ये तो थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेस है ही, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लगातार हो रही है तो फिर आप हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर परेशान हों। अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बात बात पर रो देती हैं, या बिना किसी वजह के आप उदासी महसूस कर रही हैं, या फिर आपको अचानक गुस्सा आ रहा है, तो आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी इन अचानक बदले हुए मूड को समझेंगे, लेकिन आपको आपके पास होना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जब हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और साथ में लगातार स्ट्रेस भी होता है, तो ये दोनों मिलकर बहुत बुरी तरीके से मेंटल बैलेंस को बिगाड़ सकती है। और जब ये बदलाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें इग्नोर करना नुकसानदेह हो सकता है। मान लीजिए कि आप छोटी छोटी बात पर आजकल गुस्सा करने लगी हैं, और इस बात से आप खुद भी परेशान होंगे कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आप छोटी छोटी बात पर इमोशनल होकर रोने लग गई हैं, या फिर बिना मतलब के बहुत छोटी सी बात है, या फिर कोई बात है ही नहीं, फिर भी आपको बहुत उदासी हो रही है, तो सिर्फ ये इमोशनल वीकनेस नहीं हो सकती है, ये हो सकता है कि आप मेंटली भी थोड़ी परेशान हो, या फिर ज़्यादा परेशान हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि नींद और भूख के पैटर्न में भी बदलाव आता है। आप पहले आराम से आपका टाइम फिक्स था सोने का, आपको नींद भी अच्छी आ जाती थी, लेकिन अब आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही है, या फिर आपको बार बार जगना पड़ रहा है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा भी आप सो रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि दिमाग आपका ओवरलोड हो चुका है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भर गई है और आपका दिमाग थक चुका है। इसी तरीके से अगर आप कम खा रही हैं, या फिर अचानक आपके खाने के पैटर्न में बदलाव आया है, आप बहुत ज़्यादा खाने लग गई हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नींद, खाना, अगर इन दोनों ही पैटर्न में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, या तो दोनों ही अगर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से गिरा है, या फिर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से बहुत बढ़ गया है, तो ये खतरनाक हो सकता है। और कई बार महिलाएं तो अपनी स्थिति के लिए या दूसरों की स्थिति के लिए भी खुद को ब्लेम देना शुरू कर देती हैं, और ऐसे में उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। जब महिलाएं ना हर छोटी छोटी बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगती है, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत उनके घर वाले करते हैं कि उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना, और एक वक्त पे महिलाएं भी ये मान लेती हैं कि अगर उनके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, और वो अपने हर फैसले पर शक करना शुरू कर देती है कि कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, मेरे उस गलत फैसले की वजह से आज ये तो मुझे नहीं झेलना पड़ रहा, या फिर मेरे गलत फैसले की वजह से मेरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी कितनी ही सारी बातें होती हैं जब महिलाएं खुद पे ब्लेम डालने लगती है, और ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आप लो सेल्फ स्टीम से गुजर रही हो, आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम का ये संकेत हो सकता है। और अक्सर ना महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो परफेक्ट बने, और ये उम्मीद जो की जाती है महिलाओं से, ये महिलाओं को और भी ज़्यादा परेशान करती है। कई बार तो महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं, और कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो पहले बहुत फ्रेंडली थी, या फिर बहुत फ्रेंडली नहीं पर ठीक ठाक थी सामाजिक तौर पे, लेकिन वो अचानक धीरे धीरे लोगों से कटने लगी है, बातचीत करने से बचने लगी है, और अपने मन की बात उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है, तो इसे क्वाइट नेचर समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब थोड़ा शांति पसंद कर रही है। अगर वो लगातार ऐसा कर रही है तो हो सकता है कि वो अपने अंदर चल रहे मेंटल थकान को और अकेलेपन का संकेत दे रही है। हो सकता है कि वो अपने अंदर ही इतनी सारी बातों से परेशान हो गई है कि वो बात बाहर निकाल ही नहीं पा रही, या फिर उन्हें लगने लग गया है कि किसी से बात करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन फायदा हो सकता है, और अगर आपने इन सारे संकेतों को इग्नोर किया तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएं।
कई बार तो आप ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं, चीजें रखकर भूल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को भूलते हैं, किसी चीज पर आप फोकस करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, जबकि आप हमेशा से ऐसी नहीं थी। अचानक या फिर धीरे धीरे आप में ये

बदलाव अगर दिखने लगे हैं तो ज़रूरी है कि आप टाइम पर मदद लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ना अचानक नहीं होती। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे होती हैं। और ये सारे संकेत उनके शुरुआती संकेत हैं, और अगर आप इन संकेतों को पहचान कर टाइम पर सपोर्ट लेते हैं, फिर चाहे वो दोस्त से बात करना हो, काउंसलिंग करना हो, या फिर ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेना भी हो, तो आप इन सारे संकेतों को बड़ी परेशानी में बदलने से रोक सकते हैं। तो इन संकेतों को अगर आप पहचानती हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी समझ आ रही है, खुद के अंदर कोई भी समस्या महसूस हो रही है, तो सबसे पहले खुद को समय देना शुरू करें। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ना काम के प्रेशर से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए, और खुद को समय देने से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तेज़ी से सुधरने लगता है। खुद को समय देना यानी कि आपको जो पसंद है ना वो कीजिए, नहीं अगर कोई काम समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी पसंद के काम भी हमें करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठ जाइए, खुली हवा में, नेचर के साथ, फिर देखिए धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव खुद ही नजर आने लगेंगे। इसके साथ ही एक सही रूटीन फॉलो नहीं करने की वजह से भी महिलाओं में या फिर किसी में भी ऐसी परेशानी देखी जा सकती है। तो जरूरी है कि आप एक सही रूटीन फॉलो करें। आप कोशिश करें कि हर काम का एक समय फिक्स कर दें, उसी समय पर करें, और जब आप अपने डेली लाइफ में भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगती हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लगता है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है, और उससे कम परेशानी होती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें। जैसे ही आप एक सही रूटीन फॉलो करने लगेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी एक्टिविटी जैसे कि योगा शामिल करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज को शामिल करें, और साथ ही सुबह या शाम के समय ज़रूर थोड़ा सा समय निकालें जिसमें आप कोशिश करें कि आप ना पैदल चलें। इससे बहुत फ़ायदा होता है, और सुबह और शाम के समय जब आप थोड़ा पैदल चलते हैं तो इस दौरान आप खुद के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं, और इस वक्त ये ना करें कि आप फ़ोन चला रही हैं या फिर कुछ और, नहीं, बस खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद से बातें करनी है। पर्याप्त नींद तो बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, तो कोशिश करें कि आप सही समय पर सोने जाएं, और नहीं भी नींद आ रही है तो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है, बस सोने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों में नींद आने लगेगी, और दोस्तों से और परिवार से खुलकर बात करें। कोई तो होगा आपके परिवार में जो आपको समझता होगा, आपके दोस्त होंगे, आपकी बहन, माँ, या फिर कोई भी, आपका पति, उनसे बात करें, खुलकर बात करें, और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी बिल्कुल नहीं घबराएं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और कई बार नींद आने में अगर परेशानी होती है तो अगर आपको दूध सूट करता है तो रात में गुनगुना दूध पीकर सोएं, और अगर उसमें हो सके तो कच्ची हल्दी मिला दें, आप थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला दें। इससे क्या होता है कि नींद अच्छी आने में बड़ी मदद मिलती है। बस करना क्या है, शाम में या रात में आपको दूध में ये दोनों चीज़ें डालकर उबाल लेना है, और आप हल्की इलायची भी मिला सकते हैं। 3 से 5 मिनट आप उबालेंगे तो जो दूध है वो तैयार हो जाएगा, और इसे गुनगुना या बिल्कुल ठंडा आप पी सकते हैं। तो ये भी आपको नींद आने में काफ़ी मदद करता है, तो ये चीज़ें भी आप अपना सकते हैं। और अगर इन चीज़ों से भी आपको आराम नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना, आप नींद, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप में जो लक्षण थे वो अब भी जस के तस बने हुए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए। क्योंकि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा बने रहते हैं तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपके अंदर आत्महत्या या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के कोई भी विचार आए तो डॉक्टर से तो मिलिए ही। और अगर आपके लक्षण इतने ज़्यादा बढ़ गए कि आप रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी आपको परेशानी हो रही है, तो भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। पैनिक अटैक भी कई बार आ जाता है और बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आपको मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो ध्यान रखें कि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा बना रहे, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुँचाने के विचार आएँ, रोज़मर्रा के काम प्रभावित होने लगे, या फिर पैनिक अटैक या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगे,
तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट से मिलना ज़रूरी होता है या फिर आप काउंसलर से भी मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, खुद के दिमाग को शांत रखें और बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद से प्यार करें, स्वस्थ रहें और तभी आप अपने अपनों को भी प्यार दे पाएंगे, उन्हें स्वस्थ रख पाएंगे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और जाने से पहले ख़ास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप बने रहें हमारे साथ।

तैयार हैं आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
5: नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि आपकी फसल और आपकी फसलों की पैदावार, ये सभी बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं। तो जी हाँ, बीज उत्पादन में हमें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान रखना होता है। आज इसी विषय को लेकर हम आए हैं। हमारा विषय है धान के बीज उत्पादन हेतु तकनीकी सुझाव, और इस विषय को आप सभी के बीच लेकर आए हैं डॉक्टर सत्येंद्र। मैं आप सभी को बता दूं, सर वैज्ञानिक हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बीज को लेकर किसानों के पास क्या क्या कानूनी वैधताएँ हैं, इनके बारे में बताएँ।
6: किसान भाइयों को नमस्कार। जहाँ तक बीज को लेकर वैधता का सवाल है, तो भारत में एक इसके लिए कानून पास किया गया था सन 2001 में, जिसका नाम है पौधा किस्म संरक्षण एवं कर्षक अधिकार अधिनियम। इसको PPB एंड FR एक्ट 2001 के नाम से जाना जाता है। इसमें बीज से संबंधित या फिर किसानों के लिए क्या क्या छूट दिया गया है बीज से संबंधित, वो सारी बातें इस एक्ट में हैं, इस अधिनियम में निहित हैं। तो इसके अनुसार किसान भाई अपने बीज को अपना बीज खुद पैदा कर सकते हैं, या फिर किसी से भी लेके हम लोग किसान भाई बीज लगा सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाई बिल्कुल फ्री हैं। और ये इस तरह का जो अधिनियम है, ये भारत में ही ये इस तरह का बनाया गया है कि किसानों को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि किसान भाई अपने बीज को या तो किसी को अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं, किसी का बीज आपको अच्छा लग रहा है तो वो आप उसको ले सकते हैं। तो इसके लिए अलग से अधिनियम में, इस एक्ट में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें किसान भाई अपने बीज को स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं।
5: जी डॉक्टर साहब, उन्नतशील बीज ये क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है?
6: उन्नतशील बीज जो बीज की गुणवत्ता है उसको अगर हम देखेंगे, तो बीज की गुणवत्ता कई पहलुओं पर निर्भर करती है। तो उसमें अगर हम मोटे तौर पे देखें तो दो तरह की गुणवत्ता उसमें होती हैं, एक भौतिक गुणवत्ता होती है और एक उसकी आनुवांशिक गुणवत्ता होती है। तो आनुवांशिक गुणवत्ता की जहाँ तक बात करें, तो जैसे अलग अलग किस्म का बीज होता है, तो अलग अलग किस्म के बीज में कोई दूसरी प्रजाति का या दूसरे प्रभेद का तो मिक्सचर नहीं है, तो वो उसकी आनुवांशिक शुद्धता पे निर्भर करता है। दूसरा उसकी भौतिक शुद्धता होती है, तो भौतिक शुद्धता में कोई दूसरा इनर्ट मैटर या फिर कोई खराब तरह का बीज तो नहीं मिक्सर है। तो ये उसको भी एक तरह से उसका भी मापदंड बनाया गया है, तो ये सारा उसकी भौतिक शुद्धता पे निर्भर करता है।
5: जी, और धान की किस्मों की बात करते हैं, तो बीज उत्पादन के लिए किसान भाई किन किन धान की उन्नतशील किस्मों को अपना सकते हैं?
6: धान

0: उन्नतशील किस्में तो काफ़ी हैं जो किसान भाइयों के बीच में प्रचलित हैं। और अभी अगर हम इस समय की बात करें तो ये धान का समय है, धान की फसल खेत में खड़ी है। तो किसान भाई जैसे निचले क्षेत्रों में हम लोग रिकमेंड करते हैं, थोड़ा जहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है उस एरिया में राजेंद्र मैसूरी या फिर स्वर्णा सबवन, ये लंबे अवधि के हैं। सबोर संपन्न धान है, ये लंबी अवधि के प्रभेद हैं, इनको हम लोग संस्तुत करते हैं। इसी तरह से जो ऊपरी भूमि है जहाँ पे कम पानी लगता है या कम पानी की अवस्था में अगर हम देखें तो वहाँ पे कम दिन की जो प्रजाति हैं जैसे सबोर हर्षित है, सबोर दीप है, सहभागी धान है, ये सब प्रजाति हम लोग संस्तुत करते हैं।
1: जी, अगर धान में बीज उत्पादन से संबंधित किसी तकनीकी बिंदुओं को अगर ध्यान में रखा जाता हो तो कृपया बताएं सर।
0: हाँ, इसमें देखिए किसान भाइयों, बीज उत्पादन से संबंधित कई सारे तकनीकी बिंदु होते हैं। उसमें एक तो है कि अगर आप जिस खेत में बीज उत्पादन कर रहे हैं वो, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, यानी आप अगर रजिस्टर्ड सर्टिफाइड बीज पैदा कर रहे हैं, तो उस केस में आपको उनके जो मापदंड है सारे उसको फॉलो करना होता है, उसको मानना होता है। और अगर आप अपना खुद का भी बीज पैदा कर रहे हैं तो हमारा सुझाव यही रहता है कि किसान भाई उसमें भी सारे मापदंड जो हैं, जो उन्नतशील बीज पैदा करने के मापदंड है, वो सारे उसमें अपनाने चाहिए किसान भाइयों को। तो उसमें कुछ पहलू हैं जिनको किसान भाइयों को ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला एक है कि एक एक खेत में से दूसरे खेत के एक बीज के खेत से दूसरे बीज के खेत की दूरी कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि धान के लिए अगर आप बीज पैदा कर रहे हैं, आप जिस खेत में बीज पैदा कर रहे हैं, जिसको आप बीज का खेत मान रहे हैं, उस खेत से दूसरे खेत की दूरी यानी धान की दूसरी किस्म की दूरी कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए, 3 मीटर हो या इससे ज्यादा हो। तो दूसरे इसको तो बोलते हैं पृथक्करण दूरी, तो ये 3 मीटर कम से कम होनी चाहिए। दूसरे अगर मान लीजिए किसान भाई एक कोई उनका कोई प्लॉट है जिसमें वो धान का बीज के लिए धान लगा रहे हैं, उसको कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, और वो 3 मीटर का पृथक्करण जो दूरी वो नहीं दे पाए हैं, तो किसान भाई क्या कर सकते हैं कि कटाई के टाइम 3 मीटर का जो बॉर्डर एरिया है वो हटा सकते हैं, यानी चारों तरफ उस प्लॉट के चारों तरफ 3 मीटर तक का धान को आप बीज में इस्तेमाल ना करें, ये किसान भाई कर सकते हैं। तो वो भी एक एक तरह से पृथक्करण की दूरी जो थी वो उसका फुलफिल कर देगा उसका। फिर आपको 3 मीटर अगर नहीं भी छोड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 मीटर तक का धान को इस्तेमाल मत करिए बीज में। दूसरी एक तो ये चीज़ हो गया, दूसरी बात है रोगिंग की। रोगिंग मतलब कि धान के खेत में, उस खेत में जिसका बीज आप इस्तेमाल करेंगे अगले साल, उसमें आपको रोगिंग करना है। रोगिंग होता है अवांछित जो पौधे हैं उनको निकालने का काम। तो ये काम जो है वो कई स्टेज पे होता है, कई अलग अलग जो उसकी अवधि होती है धान की फसल की उसमें होता है। तो जैसे किसान भाई एक बार जब टिलरिंग होती है, जब कल्ले निकलते हैं, तो उस समय पे भी अगर कोई आपको अलग तरह का धान दिख रहा है जो आपको लग रहा है कि इसका नहीं है, उस प्रजाति का नहीं है या बाकी पौधों से अलग दिख रहा है, तो उसको निकाल दें। फिर इसी तरह से फूल आने के समय भी एक एक रोगिंग की जाती है, ताकि फूल के समय पे भी अगर कोई ज़्यादा ऊंचाई का पौधा है जो आपको लग रहा है कि ये मिक्सचर हो सकता है, या दाने के आधार पे आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उस तरह के पौधे भी हमें हटा देने होते हैं। और उसके बाद एक बार फिर जब पक जाती है फसल, मेच्योर हो जाती है, तो कटाई से पहले भी ये रोगिंग का काम करते हैं। तो

0: उसके बाद कटाई में भी हमें बहुत सावधानी इसमें बीज के खेत में रखनी पड़ती है। तो ये सब कुछ तकनीकी पहलू हैं जिनका ध्यान किसान भाइयों को रखना होता है।
1: जी, अभी डॉक्टर साहब आपने इन तकनीकी बिंदुओं में पृथक्करण की बात की थी, ये पृथक्करण दूरी क्या है और किसान भाई इसमें कैसे ध्यान रख सकते हैं इसे लेकर?
0: हाँ, पृथक्करण दूरी जैसे मैंने बताया कि इसको एक खेत से उसी फसल का, जैसे धान का अगर आप बीज पैदा कर रहे हो तो धान के एक खेत से दूसरे धान के खेत की दूरी कितनी हो, ये होता है पृथक्करण दूरी, जिससे आपस में मिक्सचर ना हो। क्योंकि जो फूल आने के समय में क्या होता है कि जो पोलन होता है, जो उसका परागकण होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, उसका या तो जो कीट होते हैं उनके द्वारा भी चले जाते हैं या हवा से भी चले जाते हैं, जिससे अगर दो वैरायटी, दो अलग अलग किस्म अगल बगल आपने लगाई है तो उनमें कुछ ना कुछ मिक्सचर होने का डर रहता है। तो उसको कम से कम करने के लिए ये अध्ययन करके ये पता किया गया है कि अगर हम 3 मीटर की दूरी रखते हैं दो किस्मों के बीच में जिनका हम बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो वो उससे हमारा कम से कम मिक्सचर होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये पृथक्करण दूरी ये हर फसल के लिए अलग अलग होती है। ये धान के लिए जो साधारण धान की फसल का उत्पादन है, साधारण किस्मों का जो उत्पादन है, उसके लिए दूरी कम होती है। और अगर हाइब्रिड का धान उत्पादन करेंगे, बीज उत्पादन करेंगे, तो उसमें वो दूरी बढ़ जाती है। तो क्यों, चूँकि हाइब्रिड का तो किसान भाई बीज उत्पादन नहीं करते हैं, तो जितनी भी है किस्में, जो साधारण किस्में हैं उनका बीज उत्पादन किया जाता है, तो उसमें 3 मीटर की जो पृथक्करण दूरी है वो उसको एक मानक माना गया है।
1: जी, आगे बढ़ते हुए रोगिंग के बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, इसे कैसे किसान करें?
0: हाँ, रोगिंग जैसे मैंने बताया, रोगिंग बोलते हैं जो अवांछित पौधे हैं उनको निकालने का। तो इसमें अवांछित पौधे आएंगे कहाँ से, सबसे पहली तो बात यह है, और अवांछित पौधे होते क्या हैं। तो अवांछित पौधे वो सारे हैं जो आपको नहीं चाहिए या आप वहाँ उसको नहीं चाहते हैं खेत में कि ना हो। तो ये वो सारे पौधे जो अलग किस्म के हैं, भले ही वो धान के हैं लेकिन दूसरी किस्म के हैं, जिनका आप बीज उत्पादन नहीं कर रहे हैं और वो मिक्सचर हो गए हैं, मिक्स हो के उसमें आ गए हैं, वो पौधे होंगे। या कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं जो पिछले साल जो आपने धान की फसल ली थी उस खेत में, उसके कुछ पौधे भी अपने आप अगले साल धान के सीजन में अपने आप उग जाते हैं। तो ऐसे पौधे को भी हम अवांछित पौधे में गिनते हैं, उनको भी हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे किसी भी तरह का घास, खरपतवार, कोई दूसरा मिलता जुलता पौधा, किसी भी तरह का जो पौधा है धान के अलावा, वो भी सारा हमें निकालना होता है, वो भी अवांछित पौधे की श्रेणी में आता है। और जो ज़्यादा रोग या कीट लगे हुए पौधे हैं, भले ही वो उसी किस्म के हैं लेकिन उनमें ज़्यादा कीट या व्याधि आ गया है, तो उस तरह के पौधे भी हमारे लिए अवांछित की श्रेणी में आते हैं। तो उनको भी हमें निकाल के हटाना होता है, जिससे हमें शुद्ध बीज उत्पादन हम कर सकें।
1: जी, धान में फूल आने के समय भी कुछ जो बातें हैं उनका ध्यान रखना होता है, वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में बताएं?
0: हाँ, जैसे बीज उत्पादन के जो प्रक्षेत्र है धान का बीज उत्पादन का, उसमें जैसे मैंने बताया कि उसमें रोगिंग करनी होती है, तो वो अवांछित पौधों का हमें फूल आने के समय पे भी निकालना होता है। तो फूल आने के समय पे क्या है, जैसे हम उससे पहले हम देखेंगे कि जो जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है जिन पौधों की, उनको हम निकाल देते हैं, या जो दूसरे हमें लग रहा है कि ये अलग तरह के हैं उसको निकाल देते हैं। तो फूल आने के समय पे सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने की है वो होती है, एक तो ऊंचाई की, ऊंचाई या तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। ज़्यादा हाइट ऊंचाई है पौधे की तो भी निकाल दें, कम हाइट है, बोना है पौधा जो उसमें नहीं होना चाहिए वो भी निकाल दें। दूसरे, फूल आने के समय पे दाने का आकार किसान भाइयों भाई गौर से देखें कि ये अगर उस किस्म का दाना नहीं लग रहा है, या हो सकता है किसी किसी में ऑन्स होते हैं जो

0: जिसको मुच्छल बोलते हैं, तो अगर वो उसमें तूड़ आया हुआ है, उसमें ऑन आया हुआ है, मूछ है, तो उसको और आप जिसका बीज पैदा कर रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पौधों को भी आप फूल आने के समय में पहचान सकते हैं और उनको निकाल सकते हैं
1: जी। और सबसे ज़रूरी बात जो कटाई के समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: कटाई के समय में भी जैसे मैंने बताया कि बीज के खेत में किसान भाई ध्यान रखें कि एक तो जो अगर उन्होंने पृथक्करण दूरी नहीं रखी है तो 3 मीटर का जो धान है वो खेत के चारों तरफ का धान वो बीज में इस्तेमाल ना करें, उसको बीज के लिए ना रखें। और इसके बाद बचे हुए खेत में उनको कटाई के समय में भी पकने के समय में भी फिर से रोगिंग करना होता है, तो वहाँ पे फिर से देखें कि कोई ऐसा पौधा तो नहीं रह गया है जो उनको लग रहा है कि वो मिक्सचर है, क्योंकि उस टाइम तक वो कई बार उसमें उसको देख चुके रहते हैं, उनको पता चल चुका रहता है कि ये ओरिजिनल जो इसका पौधा है वो किस तरह का होना चाहिए, उसका दाना किस तरह का होना चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो एक एक पौधे को चेक करके, अगर हो सके तो हमें सारे पौधे चेक करके एक एक पौधे को निकाल दें ताकि हम शुद्ध से शुद्ध बीज पैदा कर सकें
1: जी। अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इससे रिलेटेड हैं बीज उत्पादन तकनीक से, जो आप किसान भाइयों को बताना चाहेंगे सर?
0: अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में यही है कि उसके बाद एक तो जो कटाई का काम है वो हम मशीन से ना करें, बीज के खेत का कभी भी मशीन से कटाई नहीं करें धान की, उसको हाथ से कटाई करें, हंसिया से जो हम काटते हैं परंपरागत तरीके से वो उसी तरीके से कटाई करें और उसको 2-3 दिन खेत में छोड़ दें ताकि वो पूरी जो नमी है करीब 18% नमी होनी चाहिए कटाई के समय में, और जब आप उसको फिर 2-3 दिन वहाँ छोड़ेंगे फिर थ्रेश करेंगे उसको अच्छे से सुखा लें, जो उसकी मड़ाई करते समय ये ध्यान रखें किसान भाई के जो थ्रेशिंग फ्लोर जहाँ पे आप या वो जगह जहाँ पे आप थ्रेशिंग कर रहे हैं, मड़ाई कर रहे हैं, दाना निकाल रहे हैं, वहाँ पे कोई किसी भी तरह की कोई दूसरी प्रजाति या दूसरा किस्म का ढेर ना रखा हो, वो काट के वहाँ रखा ना गया हो, उसको साफ रखें उस जगह को, जिससे कि किसी भी तरह से मिक्स दूसरी किस्म उसमें ना हो पाए, और उसको मड़ाई के बाद उसकी दोनी करने के बाद में उसको अच्छी तरह से सुखा लें जिससे नमी जो है वो घट के 12-13% पे आ जाए। जब 12-13% पे नमी आ जाती है दाने की तो फिर हम उसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा
1: जी। तो किसान भाइयों अभी आप सुन रहे थे धान के बीज उत्पादन तकनीक को, जिसमें कि विभिन्न पहलुओं पर बातें की गई हैं। आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा। अगले दिन आपसे फिर एक अलग विषय के साथ आपकी खेती से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं हम उनका हल देंगे। तो सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।

तैयार हैं आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार

झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और

साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाली सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा की पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में। आप सभी को पता है कि कल लास्ट एग्जाम है थर्ड ईयर के सिक्स्थ सेमेस्टर का, और कल है आपके कोर्स APG 321 का एग्जाम, यानी कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट टू रवि क्रॉप्स। और आपके कोर्स टीचर डॉक्टर श्रेया सेन हमारे स्टूडियो में आज के रेडियो रिवीजन के लिए। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आइए मैम, रेडियो रिवीजन शुरू करें।
2: डियर स्टूडेंट्स, APG 321 में बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्रॉप्स जो रिलेटेड है रबी क्रॉप्स से, रबी सीजन से। इसमें जो मुख्यतः क्रॉप है वो है वीट, बार्ले, ओट्स, फिल्पी, लेंटिल, लेथायरस, रेपसीड, मस्टर्ड, लिनसीड। फॉरेज क्रॉप में नेपियर, बाजरा, सरगम, मीज और कैश क्रॉप में शुगर केन एंड पोटैटो है। क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिक चीज जो हम लोगों को ध्यान रखनी होती है वो रखनी होती है क्रॉप का साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली, क्रोमोजोम नंबर, उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ, उसके प्रोजेनेटर्स कौन कौन से हैं, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है और ब्रीडिंग मेथड्स कौन कौन से ऑप्ट करते हैं। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि किस क्रॉप को हम लोग को कैसे डील करना है। जैसे सबसे पहले यदि हम वीट की बात करें तो वीट का साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम एस्टिवम है, जिसका क्रोमोसोम नंबर 42 होता है। इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो एशिया माइनर है। ये एक तरह का सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और इसमें क्लिस्टोगैमी पाई जाती है। यदि हम इसकी इवोल्यूशन की बात करें तो वीट जो है वो एलो पॉलीप्लॉइड नेचर का होता है एंड हेक्साप्लॉइड नेचर का होता है ये, जिसमें कि ए, बी और डी जीनोम पाया जाता है। ए जीनोम की सोर्स की बात करें तो वो ट्राइटिकम मोनोकोकम है, बी का जो सोर्स है वो एजिलॉप्स स्पीसीज है, और जब ए और बी जीनोम का क्रॉस हो गया था तो उससे बना था ट्राइटिकम टर्जिडम, जिसका कि जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो AABB है, और डी जीनोम का जो सोर्स है वो ट्राइटिकम टाउची है। जो आज का कल्टीवेटेड वीट है उसके जीनोम में ए, बी और डी जीनोम पाया जाता है। यदि हम इसमें ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बेसिक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है वो है ब्रीडिंग फॉर हायर यील्ड। तो जब भी आप हायर यील्ड की बात करते हैं तो आपको आपको मेंशन करना होगा कि हायर यील्ड के लिए कौन कौन से ट्रेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पाइकलेट लेंथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स, नंबर ऑफ सीड पर स्पाइकलेट, इंक्रीज इन सीड साइज, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यील्ड के लिए, यील्ड के इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर ब्रीडिंग फॉर अर्लीनेस, ब्रीडिंग फॉर डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस। तो डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस की जब भी आप बात करें तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैसे मेजर डिजीजेस हैं जिसके कारण की वीट में लॉसेस होते हैं, जैसे कि रस्ट हो गया, स्पॉच ब्लॉच हो गया। यदि आप इंसेक्ट की बात करें तो उसमें जो मेजर इंसेक्ट है वो है फॉल आर्मी वॉर्म, एफिड्स, सकिंग पेस्ट, जो भी है। वीट में मेजर अभी जो इशू चल रहा है दैट इज ब्रीडिंग फॉर एबायोटिक स्ट्रेसेस। इसमें जो मेजर एबायोटिक स्ट्रेस है दैट इज हीट एंड ड्रॉट। ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी, क्वालिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यदि हम क्वालिटी की बात करें तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो वीट का होता है वो डिपेंड करता है ग्रेन वेट, ग्रेन के हार्डीनेस, ग्रेन के साइज, शेप एंड कलर पे। स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, टेस्ट वेट को हम लोग हेक्टोलीटर मास से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वीट के दो कलर्स होते हैं बेसिकली, रेड वीट एंड व्हाइट वीट। तो रेड वीट इज कंसिडर्ड मोर सुपीरियर देन व्हाइट वीट। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो वीट में जो मेजर प्रोटीन पाया जाता है दैट इज ग्लूटेन। ग्लूटेन के कारण ही बेकिंग हम अच्छे से कर सकते हैं।

और ग्लूटेन का जो मेजरमेंट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंटेशन वैल्यू। ब्रीडिंग मेथड्स की बात करें तो वीट में जो मेजर ब्रीडिंग मेथड्स है दैट इज प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, बैक क्रॉस मेथड, म्यूटेशन ब्रीडिंग, मल्टी लाइन ब्रीडिंग एंड इवन हाइब्रिड ब्रीडिंग। तो यदि मल्टी लाइन्स जब भी आप एक्सप्लेन करो तो यू हैव टू मेंशन द क्लीन एंड डर्टी क्लीन क्रॉप अप्रोच एंड डर्टी क्रॉप अप्रोच एंड द मेथड्स। जैसे कल्याण सोना की काफ़ी सारी मल्टी लाइन डेवलप की गई है तो यू हैव टू कोट एग्जांपल इन ईच ब्रीडिंग मेथड कि कौन कौन सी वैरायटीज किस ब्रीडिंग मेथड से डेवलप की गई है। म्यूटेशन ब्रीडिंग में जो सरबती सोनोरा है एंड पूसा लर्मा यू हैव टू मेंशन द सोर्स ऑफ म्यूटाजन एंड एग्जांपल्स ऑफ कोर्स। यदि हम हाइब्रिड वीट की बात करें तो हाइब्रिड वीट कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। इसके जो मेजर रीजन है वो ये है कि आपको डाइवर्स एनवायरमेंट के अक्रॉस हेट्रोसिस नहीं मिलता है और इसमें फर्टिलिटी रिस्टोरेशन का भी इशू है। मोर ओवर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाता है। नेक्स्ट क्रॉप हमारा है बार्ली। बार्ली का साइंटिफिक नेम हॉर्डियम वल्गारे है और इसका क्रोमोसोम नंबर 14 है। इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन वेस्टर्न एशिया या इथोपिया है। प्रोजेनेटर की बात करें तो ये हॉर्डियम स्पॉन्टेनियम है। बार्ली बेसिकली दो तरह का होता है, टू रोट बार्ली एंड सिक्स रोट बार्ली। यदि टू रोट बार्ली का हम एग्जाम्पल दें तो दैट इज हॉर्डियम स्पॉन्टेनियम एंड हॉर्डियम डिस्टिचम। सिक्स रोट बार्ली का एग्जाम्पल दें तो दैट इज हॉर्डियम वल्गारे। तो बार्ली में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है बल्बोसम मेथड को एक्सप्लेन करना। बल्बोसम मेथड जो है वो क्रोमोसोम एलिमिनेशन टेक्निक है जिससे कि आप किसी भी स्पीसीज को यदि हॉर्डियम बल्बोसम से क्रॉस करेंगे तो इन F1 जनरेशन जैसे ही उसका एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है उसके कुछ दिन के बाद जो हॉर्डियम बल्बोसम का है वो क्रोमोसोम वो एलिमिनेट हो जाता है और आपको रैपिडली जो होता है वो एक हैप्लॉइड प्लांट मिल जाता है और जैसे ही आप क्रोमोसोम डेवलप करोगे तो 100% होमोजाइगस प्लांट मिल जाता है। ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड नेचर का होता है और इसका जो मेजर ब्रीडिंग मेथड्स है दैट इज प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्रॉप है हमारा ओट्स। ओट्स का साइंटिफिक नेम एवाइना सटाइवा है जिसका क्रोमोसोम नंबर 42 होता है। ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये भी एलो पॉलीप्लॉइड नेचर का होता है, दैट इज नेचुरली हेक्साप्लॉइड स्पीसीज। नेक्स्ट क्रॉप है अपना चना। चना का साइंटिफिक नेम साइकर एरियंटेनम है, फैमिली फेबेसी है, क्रोमोजोम नंबर 16 है। इसका प्रोजेनेटर जो है साइकर रेटिकुलेटम है। ये सेल्फ पॉलिनेटेड नेचर का होता है। यदि हम डिजीज की बात करें तो इसमें जो मेजर डिजीज लगती है वो फ्यूजेरियम विल्ट लगती है। इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन चिकपी एंड काबुली पी। तो इसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, फ्लावर कलर में डिफरेंसेस है, सीड साइज में डिफरेंसेस है, तो वो आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। जो बेसिक ब्रीडिंग मेथड इस्तेमाल होता है इसमें पेडिग्री और बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड का इस्तेमाल होता है। अब हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में आपको पढ़ना है लेंटिल, लेथाइरस पी। लेंटिल में जो है वो आपका दो तरह का लेंटिल होता है, दैट इज माइक्रोस्पर्मा एंड मैक्रोस्पर्मा, जो कि सीड के बेसिस पे है। जो छोटी सीड वाली मसूर होती है वो माइक्रोस्पर्मा होती है और बड़ी सीड वाली को मैक्रोस्पर्मा बोला जाता है। मसूर में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं जिसको कि कहते हैं ट्रिप्सिन। इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो साउथ वेस्ट एशिया है। इसका साइंटिफिक नेम लेंस कुलिनारिस है और क्रोमोसोम नंबर 14 है। दाल बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें 24-28% प्रोटीन होता है अलॉन्ग विथ आयरन। मटर का साइंटिफिक नेम जो है पीसम सेटाइवम है, क्रोमोसोम नंबर 14 है और लेथाइडस का भी साइंटिफिक नेम लेथाइडस सेटाइवस विथ क्रोमोसोम नंबर 14। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है पी में मेजर इशू डिजीज का कौन सा होता है, दैट इज पाउडरी मिल्ड्यू, और लेथाइरस में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कौन सा प्रेजेंट होता है, दैट इज BOAA जो कि न्यूरोटॉक्सिन है। जब भी हम लेथाइरस ब्रीडिंग की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि ब्रीडिंग फॉर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड। अब जो मेजर ऑयल सीड क्रॉप है दैट इज रेपसीड एंड मस्टर्ड। रेपसीड एंड मस्टर्ड जो है यदि हम इसकी साइंटिफिक नेम की बात करें तो दैट इज ब्रासिका स्पीसीज। इसमें तीन अलग अलग तरह के स्पीसीज होते हैं, ब्रासिका निग्रा, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस या जिसको ब्रासिका रैपा भी बोलते हैं, ब्रासिका ओलेरेसिया। ब्रासिका के इवोल्यूशन को नागा हेरू ने दिया था और इस इवोल्यूशन का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि हम ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस की बात करें तो इसके जीनोम का कंपोजिशन AA होता है और क्रोमोसोम नंबर इसका 20 होता है। ब्रासिका निग्रा का जीनोम BB होता है, क्रोमोसोम नंबर 16 होता है और ब्रासिका ओलेरेसिया का जीनोम C होता है और क्रोमोसोम नंबर 18 होता है। ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस और ब्रासिका निग्रा के क्रॉस से बनता है ब्रासिका जेंसिया जिसको कि हम लोग इंडियन राई भी बोलते हैं और इसका जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन AABB होता है विथ

क्रोमोसोम नंबर 36। ब्रासिका निग्रा और ब्रासिका ओलेरेशिया के क्रॉस से बनता है ब्रासिका कैरिनेटा, जिसका जीनोमिक कंपोजिशन BBCC होता है और क्रोमोसोम नंबर 34 होता है। ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस और ब्रासिका ओलेरेशिया के क्रॉस से बनता है ब्रासिका नापस, जिसका कि जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन AACC होता है और क्रोमोसोम नंबर 38 होता है। अब यदि हम इसकी नेचर ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं, कुछ सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। तो यदि ब्रासिका में जो तोरिया, तारामीरा और ब्राउन सरसो है वो क्रॉस पॉलिनेटेड नेचर का होता है और ये सेल्फ इनकम्पैटिबल होता है, जबकि यदि येलो सरसो की हम बात करें, इंडियन सरसो की बात करें, तो ये सेल्फ कम्पैटिबल होता है और सेल्फ पॉलिनेटेड नेचर का होता है। ये ध्यान रखना, जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो स्पोरोफाइटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है मस्टर्ड में, और इसका जीन एक्शन जो होता है वो डोमिनेंट होता है। मस्टर्ड में एक चीज और भी ध्यान रखना है कि इसमें जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, दैट इज इरोसिक एसिड एंड ग्लूकोसिनोलेट। तो इस एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को रिड्यूस करके बनाया गया कनोला। कनोला मस्टर्ड की वो वैरायटी है जिसमें कि इरोसिक एसिड और ग्लाइसिनोलेट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, जीरो टाइप एंड 00 टाइप। तो जो जीरो टाइप होता है उसमें क्या होता है, या तो इरोसिक एसिड कम होगा या ग्लाइकोसिनोलेट कम होगा। इसके एग्जाम्पल्स यदि आप देखो तो एग्जाम्पल्स हैं पूसा करिश्मा, पूसा मस्टर्ड 21, PM24 एंड PM22। वही यदि 00 मस्टर्ड की बात करें तो इसमें दोनों इरोसिक एसिड भी कम होता है, जो कि less than 2% होता है, और ग्लूकोसिनोलेट की बात करें तो वो भी कम होता है, दैट इज less than 30 micromole per gram। इसका एग्जाम्पल है पूसा 00 मस्टर्ड 31। मस्टर्ड में एक और फेनोमिना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज बर्निज बर्स्टा सिस्टम ऑफ मील स्टर्लिटी जो पाई जाती है। तो बर्निस जो है वो जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्टर्लिटी के लिए, जो कि आइसोलेट किया गया है फ्रॉम बैक्टीरिया बेसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस। ये जो होता है ये आपका बेसिकली टेपिटम के सेल्स में एक्सप्रेस होता है, जो कि स्टर्लिटी काउज करती है। और बर्स्टार जीन जो है वो भी बेसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस से आइसोलेट किया गया है, और इसका मेजर जो काम होता है वो होता है फर्टिलिटी को रिस्टोर करना। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है दैट इज शुगरकेन। शुगरकेन में नोबलाइजेशन ऑफ शुगरकेन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। शुगरकेन के टाइप्स पूछे जाते हैं, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में बेसिकली जो ग्रो होता है दैट इज सकैरम बारबेरी, सकैरम साइनेसिस, और जो बेसिकली जो न्यू जो शुगरकेन की ओरिजिन है वो न्यू जीनिया में हुई है। जो नोबलाइज शुगरकेन बोलते हैं दैट इज सकैरम ऑफिसिनारम को बोलते हैं, जिसका क्रोमोजोम नंबर 80 होता है। प्रोजिनेटर की बात करें तो इसके प्रोजिनेटर सकैरम रोबस्टम है। शुगर केन के फ्लावरिंग के लिए बहुत ही वार्म नाइट चाहिए, ह्यूमिड कंडीशन चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए, जो कि सिर्फ TNAU कोयम्बटोर में अवेलेबल है। इसलिए मेजर जो ब्रीडिंग का काम होता है वो TNAU कोयम्बटोर में होता है। यदि किसी को भी कोई भी क्रॉसेस अटेम्प्ट करना है तो दैट शुड बी डन एट शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटोर। पोटैटो की बात करें तो पोटैटो का क्रोमोजोम नंबर 48 होता है और साइंटिफिक नेम इसका सोलानम ट्यूबरोसम होता है। इट मे बी आइदर डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और पेंटाप्लॉइड। इसकी भी जो फ्लावरिंग होती है वो फ्लावरिंग आपकी बेसिकली कुफरी में होती है। तो जो भी ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी जिसको भी ब्रीडिंग का वर्क करना होता है, दैट शुड बी डन एट कुफरी, हिमाचल प्रदेश। इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो साउथ अमेरिका है, या पेरू भी बोलते हैं। प्रोजिनेटर जो है वो सोलानम स्टिनोमम है। इसका इवोल्यूशन की बात करें तो सोलानम स्टिनोमम का डबलिंग के कारण जो है नेचुरली कल्टीवेटेड टेट्राप्लॉइड दैट इज सोलानम ट्यूबरोसम का डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद जो अपने को पढ़ना है वो फॉरेज में पढ़ना है। फॉरेज में जो बेसिकली ध्यान देने वाली चीजें हैं वो है आपका नेपियर बाजरा, उसके बाद फिर फॉरेस्ट सॉर्गम्स। और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली ये पूछा जाता है कि सॉर्गम में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसको SCN बोलते हैं या दूरीन भी बोलते हैं उसको। और कुछ विशिष्ट बातें जो ध्यान देनी है वो ये है कि ब्रीडिंग मेथड्स, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में कौन सा ब्रीडिंग मेथड होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में कौन सा ब्रीडिंग मेथड होता है। तो यदि हम ध्यान दें तो सेल्फ पॉलिनेटेड में बेसिकली जो आपका होता है वो प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री, बल्क मेथड, बैक क्रॉस मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड होते हैं। जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है वो बैक क्रॉस मेथड और पेडिग्री मेथड होता है। जब भी आप इन मेथड्स को एक्सप्लेन करें तो कोशिश करें विद डायग्राम आप उसको एक्सप्लेन करें।
और हर मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर मैं

0: रजिस्ट्रेशन करें। आपके कोर्सेज में ब्रीडिंग फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस भी है, तो इसमें जब भी आप लिखे, जैसे ब्रीडिंग फॉर बायोटिक रेजिस्टेंस में बेसिकली ब्रीडिंग फॉर डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस आता है, और एबायोटिक में आपका ड्रॉट, हीट स्ट्रेस, फ्लड, वाटर लॉगिंग, चिलिंग स्ट्रेस, फ्रिज स्ट्रेस, ये सभी आते हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका स्क्रीनिंग टेक्निक और ब्रीडिंग मेथड्स, आप क्या क्या ऑप्ट करते हो। एक और इम्पॉर्टेंट है बरसीम। बरसीम में ये चीज़ पूछा जाता है कि ट्रिपिंग किस में पाया जाता है, तो ट्रिपिंग जो है वो बरसीम में पाया जाता है ताकि पॉलिनेशन इंश्योर हो। जब भी आप क्रॉस पॉलिनेशन का मेथड बताएं तो उसमें ध्यान रखें, जो बेसिक मेथड आता है वो पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट का आता है, जिसमें आपका रिकरेंट सिलेक्शन है। रिकरेंट सिलेक्शन के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर GCA, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर SCA एंड रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। हर मेथड्स का अपना एडवांटेज है। नेक्स्ट आपको देखना है आइडियोटाइप। कुछ कुछ क्रॉप्स जैसे वीट, मेज, कॉटन, इन सब का आइडियोटाइप भी पूछा जाता है, तो ये आइडियोटाइप का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन रिलेटेड आता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन से भी, तो जब भी आप हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन लिखे तो ये ध्यान दें कि उसमें जो ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन का इस्तेमाल हो रहा है उसको कैसे मेंटेन करना है, हाइब्रिड कैसे बनाना है, ये सब चीज़ डायग्रामेटिकली मेंशन करें। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। इन सबको ध्यान रखिए और प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच मैम। उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा। तो आप कल बिना हेजिटेशन के एग्जाम दीजिए और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और

प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
1: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो

सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें, साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें, और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाले सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण सीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा की पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में। आप सभी को पता है कि कल लास्ट एग्जाम है थर्ड ईयर के सिक्स्थ सेमेस्टर का और कल है आपके कोर्स APG 321 का एग्जाम यानी कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट टू रबी क्रॉप्स। और आपके कोर्स टीचर डॉक्टर श्रेया सेन हमारे स्टूडियो में आज के रेडियो रिवीजन के लिए। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आइए मैम रेडियो रिवीजन शुरू करें।
2: डियर स्टूडेंट्स, APG 321 में बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्रॉप्स जो रिलेटेड हैं रबी क्रॉप से, रबी सीजन से। इसमें जो मुख्यतः क्रॉप है वो है वीट, बार्ले, ओट्स, फिल्पी, लेंटिल, लेथायरस, रेपसीड, मस्टर्ड, लिनसीड। फॉरेज क्रॉप में नेपियर, बाजरा, सरगम, मीज और कैश क्रॉप में शुगर केन एंड पोटैटो है। इन क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिक चीज जो हम लोगों को ध्यान रखनी होती है वो रखनी होती है क्रॉप का साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ, उसके प्रोजिनेटर्स कौन कौन से हैं, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है और ब्रीडिंग मेथड्स कौन कौन से ऑप्ट करते हैं। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि किस क्रॉप को हम लोग को कैसे डील करना है। जैसे सबसे पहले यदि हम वीट की बात करें तो वीट का साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम एस्टिवम है, जिसका क्रोमोसोम नंबर 42 होता है। इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो एशिया माइनर है। ये एक तरह का सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और इसमें क्लिस्टोगैमी पाई जाती है। यदि हम इसकी इवोल्यूशन की बात करें तो वीट जो है वो एलो पॉलीप्लॉइड नेचर का होता है एंड हेक्साप्लॉइड नेचर का होता है ये, जिसमें कि ए, बी और डी जीनोम पाया जाता है। ए जीनोम की सोर्स की बात करें तो वो ट्राइटिकम मोनोकोकम है, बी का जो सोर्स है वो एजिलॉप्स स्पीसीज है और जब ए और बी जीनोम का क्रॉस हो गया था तो उससे बना था ट्राइटिकम टर्जिडम, जिसका कि जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो AABB है। और डी जीनोम का जो सोर्स है वो ट्राइटिकम टाउची है। जो आज का कल्टीवेटेड वीट है उसके जीनोम में ए, बी और डी जीनोम पाया जाता है। यदि हम इसमें ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बेसिक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है वो है ब्रीडिंग फॉर हायर यील्ड। तो जब भी आप हायर यील्ड की बात करते हैं तो आपको मेंशन करना होगा कि हायर यील्ड के लिए कौन कौन से ट्रेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पाइकलेट लेंथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स, नंबर ऑफ सीड पर स्पाइकलेट, इंक्रीज इन सीड साइज, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यील्ड के इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर ब्रीडिंग फॉर अर्लीनेस, ब्रीडिंग फॉर डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस। तो डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस की जब भी आप बात करें तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैसी मेजर डिजीजेस हैं जिसके कारण की वीट में लॉसेस होते हैं, जैसे कि रस्ट हो गया, स्पॉच ब्लॉच हो गया। यदि आप इंसेक्ट की बात करें तो उसमें जो मेजर इंसेक्ट है वो है फॉल आर्मी वॉर्म, एफिड्स, सकिंग पेस्ट, जो भी है। वीट में मेजर अभी जो इशू चल रहा है दैट इज ब्रीडिंग फॉर एबायोटिक स्ट्रेसेस। इसमें जो मेजर एबायोटिक स्ट्रेस है दैट इज हीट एंड ड्रॉट। ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी, क्वालिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यदि हम क्वालिटी की बात करें तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो वीट का होता है वो डिपेंड करता है ग्रेन वेट, ग्रेन के हार्डनेस, ग्रेन के साइज, शेप एंड कलर पे। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, टेस्ट वेट को हम लोग हेक्टोलीटर मास से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वीट के दो कलर्स होते हैं बेसिकली, रेड वीट एंड व्हाइट वीट। तो रेड वीट इज कंसिडर्ड मोर सुपीरियर

देन व्हाइट वीट। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो वीट में जो मेजर प्रोटीन पाया जाता है डैट इज ग्लूटेन। ग्लूटेन के कारण ही बेकिंग हम अच्छे से कर सकते हैं और ग्लूटेन का जो मेजरमेंट होता है डैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंटेशन वैल्यू। ब्रीडिंग मेथड्स की बात करें तो वीट में जो मेजर ब्रीडिंग मेथड्स है दैट इज प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, बैकक्रॉस मेथड, म्यूटेशन ब्रीडिंग, मल्टी लाइन ब्रीडिंग एंड इवन हाइब्रिड ब्रीडिंग। तो यदि मल्टी लाइन्स जब भी आप एक्सप्लेन करो तो यू हैव टू मेंशन द क्लीन एंड डर्टी क्लीन क्रॉप अप्रोच एंड डर्टी क्रॉप अप्रोच एंड द मेथड्स। जैसे कल्याण सोना की काफ़ी सारी मल्टी लाइन डेवलप की गई है तो यू हैव टू कोट एग्जाम्पल इन ईच ब्रीडिंग मेथड कि कौन कौन सी वराइटीज किस ब्रीडिंग मेथड से डेवलप की गई है। म्यूटेशन ब्रीडिंग में जो सरबती सोनोरा है एंड पूसा लर्मा यू हैव टू मेंशन द सोर्स ऑफ म्यूटाजेन एंड एग्जाम्पल्स ऑफकोर्स। यदि हम हाइब्रिड वीट की बात करें तो हाइब्रिड वीट कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। इसके जो मेजर रीजन है वो ये है कि आपको डाइवर्स इन्वायरमेंट के अक्रॉस हेट्रोसिस नहीं मिलता है और इसमें फर्टिलिटी रिस्टोरेशन का भी इशू है। मोर ओवर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाता है। नेक्स्ट क्रॉप हमारा है बार्ली। बार्ली का साइंटिफिक नेम हॉर्डियम वल्गारे है और इसका क्रोमोसोम नंबर 14 है। इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन वेस्टर्न एशिया या इथोपिया है। प्रोजिनेटर की बात करें तो ये हॉर्डियम स्पॉन्टेनियम है। बार्ली बेसिकली दो तरह का होता है, टू रोट बार्ली एंड सिक्स रोट बार्ली। यदि टू रोट बार्ली का हम एग्जाम्पल दें तो दैट इज हॉर्डियम स्पॉन्टेनियम एंड हॉर्डियम डिस्टिचम। सिक्स रोट बार्ली का एग्जाम्पल दें तो दैट इज हॉर्डियम वल्गारे। तो बार्ली में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है बल्बोसम मेथड को एक्सप्लेन करना। बल्बोसम मेथड जो है वो क्रोमोसोम एलिमिनेशन टेक्निक है जिससे कि आप किसी भी स्पीसीज को यदि हॉर्डियम बल्बोसम से क्रॉस करेंगे तो इन F1 जनरेशन जैसे ही उसका एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है उसके कुछ दिन के बाद जो हॉर्डियम बल्बोसम का है वो क्रोमोसोम वो एलिमिनेट हो जाता है और आपको रैपिडली जो होता है वो एक हैप्लॉइड प्लांट मिल जाता है और जैसे ही आप क्रोमोसोम डेवलप करोगे तो 100% होमोजाइगस प्लांट मिल जाता है। ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड नेचर का होता है और इसका जो मेजर ब्रीडिंग मेथड्स है दैट इज प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्रॉप है हमारा ओट्स। ओट्स का साइंटिफिक नेम एवाइना सटाइवा है जिसका क्रोमोसोम नंबर 42 होता है। ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये भी एलोपॉलीप्लॉइड नेचर का होता है दैट इज नेचुरली हेक्साप्लॉइड स्पीसीज। नेक्स्ट क्रॉप है अपना चना। चना का साइंटिफिक नेम साइकर एरियंटेनम है, फैमिली फेबेसी है, क्रोमोजोम नंबर 16 है। इसका प्रोजेनेटर जो है साइकर रेटिकुलेटम है। ये सेल्फ पॉलिनेटेड नेचर का होता है। यदि हम डिजीज की बात करें तो इसमें जो मेजर डिजीज लगती है वो फ्यूजेरियम विल्ट लगती है। इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन चिकपी एंड काबुली पी। तो इसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, फ्लावर कलर में डिफरेंसेस है, सीड साइज में डिफरेंसेस है, तो वो आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। जो बेसिक ब्रीडिंग मेथड इस्तेमाल होता है इसमें पेडिग्री और बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड का इस्तेमाल होता है। अब हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में आपको पढ़ना है लेंटिल, लेथाइरस पी। लेंटिल में जो है वो आपका दो तरह का लेंटिल होता है दैट इज माइक्रोस्पर्मा एंड मैक्रोस्पर्मा जो कि सीड के बेसिस पे है। जो छोटी सीड वाली मसूर होती है वो माइक्रोस्पर्मा होती है और बड़ी सीड वाली को मैक्रोस्पर्मा बोला जाता है। मसूर में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं जिसको कि कहते हैं ट्रिप्सिन। इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो साउथ वेस्ट एशिया है। इसका साइंटिफिक नेम लेंस कुलिनारिस है और क्रोमोसोम नंबर 14 है। दाल बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें 24-28% प्रोटीन होता है अलॉन्ग विथ आयरन। मटर का साइंटिफिक नेम जो है पीसम सेटाइवम है, क्रोमोसोम नंबर 14 है और लेथाइडस का भी साइंटिफिक नेम लेथाइडस सेटाइवस विथ क्रोमोसोम नंबर 14। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है पी में मेजर इशू डिजीज का कौन सा होता है दैट इज पाउडरी मिल्ड्यू और लेथाइडस में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कौन सा प्रेजेंट होता है दैट इज BOAA जो कि न्यूरोटॉक्सिन है। जब भी हम लेथाइडस ब्रीडिंग की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि ब्रीडिंग फॉर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड। अब जो मेजर ऑयल सीड क्रॉप है दैट इज रेपसीड एंड मस्टर्ड। रेपसीड एंड मस्टर्ड जो है यदि हम इसकी साइंटिफिक नेम की बात करें तो दैट इज ब्रासिका स्पीसीज। इसमें तीन अलग अलग तरह के स्पीसीज होते हैं, ब्रासिका निग्रा, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस या जिसको ब्रासिका रैपा भी बोलते हैं, ब्रासिका ओलेरेसिया। ब्रासिका के इवोल्यूशन को नागाहेरू ने दिया था और इस इवोल्यूशन का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि हम ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस की बात करें तो इसके जीनोम का कंपोजिशन AA होता है और क्रोमोसोम नंबर इसका 20 होता है। ब्रासिका निग्रा का जीनोम
BB होता है, क्रोमोसोम नंबर 16 होता है, और ब्रासिका ओलेरेसिया का जीनोम C होता है और क्रोमोसोम नंबर 18 होता है। ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस

और ब्रासिका निग्रा के क्रॉस से बनता है ब्रासिका जेंसिया, जिसको कि हम लोग इंडियन राई भी बोलते हैं, और इसका जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन AABB होता है विद क्रोमोसोम नंबर 36। ब्रासिका निग्रा और ब्रासिका ओलेरेशिया के क्रॉस से बनता है ब्रासिका कैरिनेटा, जिसका जीनोमिक कंपोजिशन BBCC होता है और क्रोमोसोम नंबर 34 होता है। ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस और ब्रासिका ओलेरेशिया के क्रॉस से बनता है ब्रासिका नापस, जिसका कि जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन AACC होता है और क्रोमोसोम नंबर 38 होता है। अब यदि हम इसकी नेचर ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं, कुछ सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। तो यदि ब्रासिका में जो तोरिया, तारामीरा और ब्राउन सरसो है वो क्रॉस पॉलिनेटेड नेचर का होता है और ये सेल्फ इनकम्पैटिबल होता है, जबकि यदि येलो सरसों की हम बात करें, इंडियन सरसों की बात करें, तो ये सेल्फ कंपैटिबल होता है और सेल्फ पॉलिनेटेड नेचर का होता है। ये ध्यान रखना, जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो स्पोरोफाइटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है मस्टर्ड में, और इसका जीन एक्शन जो होता है वो डोमिनेंट होता है। मस्टर्ड में एक चीज और भी ध्यान रखना है कि इसमें जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, दैट इज इरोसिक एसिड एंड ग्लूकोसिनोलेट। तो इस एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को रिड्यूस करके बनाया गया कनोला। कनोला मस्टर्ड की वो वैरायटी है जिसमें कि इरोसिक एसिड और ग्लाइसिनोलेट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, जीरो टाइप एंड जीरो जीरो टाइप। तो जो जीरो टाइप होता है उसमें क्या होता है, या तो इरोसिक एसिड कम होगा या ग्लाइकोसिनोलेट कम होगा। इसके एग्जाम्पल्स यदि आप देखो तो एग्जाम्पल्स हैं पूसा करिश्मा, पूसा मस्टर्ड 21, PM24 एंड PM22। वही यदि 00 मस्टर्ड की बात करें तो इसमें दोनों इरोसिक एसिड भी कम होता है, जो कि less than 2% होता है, और ग्लूकोसिनोलेट की बात करें तो वो भी कम होता है, दैट इज less than 30 micromole per gram। इसका एग्जाम्पल है पूसा 00 मस्टर्ड 31। मस्टर्ड में एक और फेनोमिना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज बर्निज बर्स्टा सिस्टम ऑफ मेल स्टरिलिटी जो पाई जाती है। तो बर्निज जो है वो जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्टरिलिटी के लिए, जो कि आइसोलेट किया गया है फ्रॉम बैक्टीरिया बेसिलस एमाइलोलिक्यूफेसियंस। ये जो होता है ये आपका बेसिकली टेपिटम के सेल्स में एक्सप्रेस होता है, जो कि स्टरिलिटी काउज करती है। और बर्स्टार जीन जो है वो भी बेसिलस एमाइलोलिक्यूफेसियंस से आइसोलेट किया गया है, और इसका मेजर जो काम होता है वो होता है फर्टिलिटी को रिस्टोर करना। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है, दैट इज शुगरकेन। शुगरकेन में नोबलाइजेशन ऑफ शुगरकेन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। शुगरकेन के टाइप्स पूछे जाते हैं, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में बेसिकली जो ग्रो होता है दैट इज सकैरम बारबेरी, सकैरम साइनेसिस, और जो बेसिकली जो जो शुगरकेन की ओरिजिन है वो न्यू जीनिया में हुई है। जो नोबलाइज शुगरकेन बोलते हैं दैट इज सकैरम ऑफिसिनारम को बोलते हैं, जिसका क्रोमोजोम नंबर 80 होता है। प्रोजिनेटर की बात करें तो इसके प्रोजिनेटर सकैरम रोबस्टम है। शुगर केन के फ्लावरिंग के लिए बहुत ही वार्म नाइट चाहिए, ह्यूमिड कंडीशन चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए, जो कि सिर्फ TNAU कोयम्बटूर में अवेलेबल है। इसलिए मेजर जो ब्रीडिंग का काम होता है वो TNAU कोयम्बटूर में होता है। यदि किसी को भी कोई भी क्रॉसेस अटेम्प्ट करना है तो दैट शुड बी डन एट शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। पोटैटो की बात करें तो पोटैटो का क्रोमोजोम नंबर 48 होता है और साइंटिफिक नेम इसका सोलानम ट्यूबरोसम होता है। इट मे बी आइदर डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और पेंटाप्लॉइड। इसकी भी जो फ्लावरिंग होती है वो फ्लावरिंग आपकी बेसिकली कुफरी में होती है। तो जो भी ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको भी ब्रीडिंग का वर्क करना होता है, दैट शुड बी डन एट कुफरी हिमाचल प्रदेश। इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो साउथ अमेरिका है या पेरू भी बोलते हैं। प्रोजिनेटर जो है वो सोलानम स्टिनोमम है। इसका इवोल्यूशन की बात करें तो सोलानम स्टिनोमम का डबलिंग के कारण जो है नेचुरली कल्टिवेटेड टेट्राप्लॉइड दैट इज सोलानम ट्यूबरोसम का डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद जो अपने को पढ़ना है वो फॉरेज में पढ़ना है। फॉरेज में जो बेसिकली ध्यान देने वाली चीजें हैं वो है आपका नेपियर बाजरा, उसके बाद फिर फॉरेस्ट सॉर्गम्स। और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली ये पूछा जाता है कि सॉर्गम में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसको SCN बोलते हैं या दूरीन भी बोलते हैं उसको। और कुछ विशिष्ट बातें जो ध्यान देनी है वो ये है कि ब्रीडिंग मेथड्स, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में कौन सा ब्रीडिंग मेथड होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में कौन सा ब्रीडिंग मेथड होता है। तो यदि हम ध्यान दें तो सेल्फ पॉलिनेटेड में बेसिकली जो आपका होता है वो प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री, बल्क मेथड, बैक क्रॉस मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड होते हैं। और जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है वो बैक क्रॉस मेथड।

0: और पेडिग्री मेथड होता है। जब भी आप इन मेथड्स को एक्सप्लेन करें तो कोशिश करें विद डायग्राम आप उसको एक्सप्लेन करें और हर मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर मेंशन करें। आपके कोर्सेज में ब्रीडिंग फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस भी है, तो इसमें जब भी आप लिखें, जैसे ब्रीडिंग फॉर बायोटिक रेजिस्टेंस में बेसिकली ब्रीडिंग फॉर डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस आता है, और एबायोटिक में आपका ड्रॉट, हीट स्ट्रेस, फ्लड, वाटर लॉगिंग, चिलिंग स्ट्रेस, फ्रिज स्ट्रेस, ये सभी आते हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका स्क्रीनिंग टेक्निक और ब्रीडिंग मेथड्स आप क्या क्या ऑप्ट करते हो। एक और इम्पॉर्टेंट है बरसीम। बरसीम में ये चीज़ पूछा जाता है कि ट्रिपिंग किस में पाया जाता है, तो ट्रिपिंग जो है वो बरसीम में पाया जाता है ताकि पॉलिनेशन इंश्योर हो। जब भी आप क्रॉस पॉलिनेशन का मेथड बताएं तो उसमें ध्यान रखें, जो बेसिक मेथड आता है वो पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट का आता है, जिसमें आपका रिकरेंट सिलेक्शन है। रिकरेंट सिलेक्शन के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन फॉर GCA, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर SCA एंड रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। हर मेथड्स का अपना एडवांटेज है। नेक्स्ट आपको देखना है आइडियोटाइप। कुछ कुछ क्रॉप्स जैसे वीट, मेज, कॉटन, इन सब का आइडियोटाइप भी पूछा जाता है, तो ये आइडियोटाइप का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन रिलेटेड आता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन से भी, तो जब भी आप हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन लिखे तो ये ध्यान दें कि उसमें जो ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन का इस्तेमाल हो रहा है उसको कैसे मेंटेन करना है, हाइब्रिड कैसे बनाना है, ये सब चीज़ डायग्रामेटिकली मेंशन करें। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इन सबको ध्यान रखिए और प्रिपेयर कीजिए एग्जाम के लिए। थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच मैम। उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफी यूजफुल होगा। तो आप कल बिना हेजिटेशन के एग्जाम दीजिए और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हमारा यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और जी हां, हम लेकर आते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी उपयोगी बातें। तो आज भी एक ऐसे ही विषय को हम अपने उन्नत कृषि कार्यक्रम में लेकर आए हैं, और हमारा विषय है मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का पहचान एवं इनका नियंत्रण। और इस विषय के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह, और सर वैज्ञानिक हैं इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो फॉल आर्मी वर्म है, ये मक्के में किस सीजन में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अमूमन आप किसान भाइयों, जो हम लोग बिहार में देखते हैं कि दो सीजन में मक्के लोग लगाते हैं, एक अभी जो लगाए होंगे खरीफ सीजन में जो इनका अभी चल रहा है, और दूसरा जो है कि रबी सीजन में लगाते हैं। तो उनका जो है वितरण अलग अलग ज़िले में लोग अलग अलग, जिनको जैसा लगता है वैसे लगाते हैं। तो ये जो फॉल आर्मी वर्म है, ये आप किसान भाइयों में इसको पहचानने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो कीट है एक तना छेदक होता है, तो तना छेदक के जैसा ही ये मिलता जुलता है। लेकिन दोनों में तुलना करना बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए कि अगर तना छेदक आपका लगा हुआ है तो उसके लिए अलग उसका नियंत्रण होता है, और फॉल आर्मी वर्म अगर लगा हुआ है तो

उसके लिए आपको अलग से उसका नियंत्रण के उपाय करने होंगे, कीटनाशक देने होंगे। तो सबसे पहले दोनों को आपको समझना है कि कैसे इनका कैसे नियंत्रण होता है या कैसे इसको पहचानेंगे। तो जब तना छेदक मुख्यतः जब होता है तो आप देखेंगे कि या आपके मक्के के जो पौधे हैं जब घुटने या उसके नीचे भी जब रहता है तो आप देखेंगे कि जो मक्का के जो पत्तियां हैं उसमें लाइन से तीन आपको गोला गोला कटे हुए का निशान दिखेंगे। तो ये तना छेदक के चलते हो सकता है। और आप जब देखेंगे कि जो उनका जो बढ़वार होने वाला जो पोजीशन होता है या जिसको हम लोग मक्के का कंठ कह सकते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे क्या कि हो सकता है कि कुछ जो इसके जो शिशु होते हैं वो तनाछेदक के वो उसमें मिलेंगे आपको। तो ये है तनाछेदक का। और ये जो तनाछेदक है मतलब आपके फसल को थोड़ा धीमी रफ्तार से क्षतिग्रस्त करते हैं। लेकिन उसके उल्टा अगर फॉल आर्मी वर्म से अगर आपके पौधे अगर आक्रांत हो जाते हैं तो ये आपके पौधे को बड़ी तेज़ी से क्षतिग्रस्त करते हैं। और साथ ही में ये जब आपके मक्के का जो कंठ होता है ये भी उसी में छुपे हुए रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये अपना स्क्रीटा या कहे कि उत्सर्जन जो इनका छोटा छोटा जो जैसे कि केचुआ का जो जो बिष्ठा होता है मल होता है उसी टाइप से इसके छोटे छोटे आपके उसके कंठ में दिखाई देंगे कि पड़ा हुआ जो काले कलर का मुख्यतः होता है। साथ ही में ये फॉल आर्मी वर्म जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। अब मुख्यतः जैसे कि दो सीजन में हम अभी बात कर रहे थे कि हम लोग मक्का लगाते हैं, तो अमूमन देखा गया क्या कि ये जो खरीफ सीजन होता है खरीफ सीजन में इसका प्रकोप रबी के तुलना में जो ठंडे सीजन में हम लोग जो करते हैं उसके तुलना में इसमें इसकी समस्या ज़्यादा आती है। तो इसके आने के कारण बहुत सारे कारण हैं। उसमें मुख्य कारण ये है कि इस मौसम में वर्षा होती रहती है और जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, जो इस कीट के बढ़वार के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो यही कारण है कि इसमें ये ज़्यादा होता है। अब है क्या कि कुछ और कारणें हैं कि उसको कैसे आप पहचानिएगा कैसे, मतलब जो कीट है तो तना छेदक है या फॉल आर्मी वर्म का कीट है उसको आप कैसे पहचानिएगा। क्योंकि जब तक आप उसको सही से पहचानेंगे नहीं तब तक आप उसका समुचित उपचार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोनों का आक्रामकता भी हमने अभी तुरंत बताया है आपको कि अलग अलग है, एक थोड़ा धीमी रफ्तार से आपके पौधे को क्षतिग्रस्त करता है, दूसरा जल्दी जिसमें आर्मी लगा हुआ है। आर्मी का काम आप लोग सब लोग को पता है कि आर्मी अपने काम बहुत तेज़ी रफ्तार से करता है, इसीलिए इसमें आर्मी शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब इसको पहचाने कैसे, तो हम आपको फॉल आर्मी बॉम के बारे में बता रहे हैं। अभी तना छेदक को आप रहने दीजिए, उसको जो जितना हम बताएं लगभग उसे तना छेदक आप पहचान जाएंगे। अब फॉल आर्मी बॉम को कैसे पहचानेंगे, तो ये जो कीट होता है तना छेदक की तरह दिखता है लेकिन ये उससे मोटा और लंबा होता है, साथ में ही इनके जो शरीर होता है उस पे काले धारियां आगे से पीछे तक मतलब सर से उसके पूंछ तक काले धारियां रहती हैं। अब एक चीज दो चीज़ और है जो आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसका जो जिधर जो मुंह होता है या अगला हिस्सा में, तो इंग्लिश का जो वाई होता है वो इंग्लिश का उल्टा वाई इसके माथे पे निशान होता है। जैसे हर जैसे कि किसी किसी पशु है या जो भी है उस पर कुछ ना कुछ निशान होता है हम लोग पहचानते हैं, उसी तरह से इसमें जो उल्टा वाई का निशान होता है इसके आगे वाला पोर्शन जिधर सर बोलते हैं उस साइड में। और जब पीछे साइड में जब आप आएंगे तो पीछे साइड में इसके चार काले काले धब्बे होते हैं जो बड़ी आसानी से आप ऐसे ही आँख से आप देख सकते हैं। तो ये हुआ इसके पहचानने का। अब दूसरी बात क्या है, ये जो पहचानने का है तो इसमें लगभग नहीं 6 इन स्टार होते हैं। अभी आप बताएंगे कि इन स्टार क्या होता है, ये इंग्लिश शब्द है थोड़ा सा, तो इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे मनुष्य के जो बच्चे होते हैं तो सबसे पहले बहुत छोटा होता है, फिर उसके बाद वो पहले सोया रहता है, फिर उसके बाद बैठना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो खड़ा होना शुरू करता है, फिर खड़ा होने के बाद वो

खाते जब कुछ वो 3-4 इन स्टार वाले फेज में जब चले जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मोटा हो जाता है, और उस कंडीशन में वो जो सिंपल आपका जो कीटनाशी है उससे हो सकता है कि उसका नियंत्रण ना हो। तो सबसे पहले तो आपको पहचानने का हमने तरीका बता दिया, अब ये क्षतिग्रस्त कैसे करता है, ये किस किस भाग को, मक्का के किस किस भाग को क्षतिग्रस्त करता है, ये कब कब आता है, तो ये इसके आने का टाइमिंग जो है ये कभी भी आ सकता है, लेकिन मुख्यतः जो है जब हमारा मक्का जब मुख्यतः जब 4-5 पत्तियों का हो या कह लें कि एक महीने के जब आसपास होता है उसके आगे जब बढ़ना होता है तो उस समय में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब ये करेगा क्या कि आपकी जो पत्तियां हैं, जो बढ़ने वाली पत्तियां हैं उसी के ऊपर ये आक्रमण करता है, उसको ये पूरी तरह से खा जाता है, और खाने के साथ साथ बहुत बार ये होता है कि आपका जो पत्तियां हैं उसको ये जाली नुमा बना देंगे। जाली नुमा कहने का मतलब ये आर पार उसको कट नहीं करते, आर पार उसको खा करके ख़त्म नहीं करते, बल्कि नीचे से वो खुरच लेते हैं, उनका जो हरा जो पत्तियां का जो हरा भाग होता है उसको खुरच के उसको खा जाते हैं, और पत्ती जो है वो लगेगा कि पेपर की तरह, जैसे कि जो अखबार या जो कोई कागज़ होता है उसमें कैसे थोड़ा थोड़ा दिखते रहता है उस टाइप से आपके पत्तियां दिखेंगे, जो तना छेदक में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा अगर आपको सिम्टम दिख रहा है कि एक तो आपके पत्तियां को पूरा जो कंठ वाले हैं जो बढ़ने वाले उसको तो खा ही गया, और जो दूसरी जो पत्तियां बची हुई हैं उसको आर पर दिख रहा है बहुत सारे पत्तियों में, तो ये हो सकता है कि आपका ये फॉल आर्मी बम के चलते ऐसा हो रहा है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है कि ये जो कंठ में है ये कंठ में छुपा हुआ रहता है, तो जब कंठ की आप जब देखेंगे उसको जब खोलेंगे तो वहाँ पे ये इनके कीट आपको दिखाई देंगे आसानी से, साथ ही साथ वहाँ उसके बहुत सारे मल मूत्र भी उसमें रखे रहते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, उनका साइज भी जो पिलेट साइज बोलते हैं तो वो मतलब वो बड़ा बड़ा होता है। तो ये हो गया। अब अगर ये ज़्यादा आपको इसका प्रकोप हो गए तो ये 3 से 4 दिन में आपके जो मक्के की फसल है उसको पूरी तरह ये नष्ट कर देते हैं। अब ये जो आपका जो फॉल आर्मी बम है ये जब अगर मक्का अगर का पौधा अगर नहीं रहे, जब मक्का हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तब ये कहाँ जाता है, तो ये जो फॉल आर्मी बम है ये मुख्यतः जितने भी जो ग्रामनी फैमिली के जो हमारे फसल है तो उन पे भी, मैंने कहने का मतलब ये है कि ये आपका ज्वार बाजरा ये सब पे भी ये जा सकता है, शिफ्ट कर सकता है, अगर इनको इधर से अगर मक्का ख़त्म हो गया, मक्का कोई काट लिए तो आसपास में अगर ये लगी हुई हैं तो उस पे भी जा सकता है। अब तो इसीलिए ये नहीं कहते हैं कि मक्का अगर नहीं होगा तो ये नहीं रहेगा, इसके कई अल्टरनेट होस्ट है, इस अल्टरनेट होस्ट पे ये चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। इसके जो वयस्क हैं वो एक रात में बहुत लंबी लंबी दूरी तक ये चले जाते हैं, लगभग 80 से 100 किलोमीटर भी ये उड़ सकते हैं, ऐसी इनमें कैपेसिटी है इनके जो वयस्क हैं उनका। इनका जो जो क्षति करने वाला है ये इनके वयस्क क्षति करते हैं जो चलते हैं, जो चल के सिकुड़ते हुए चलते हैं उस ये क्षतिग्रस्त करते हैं। तो ये हमको लगता है कि ये चीज़ें हो गई, ये काफ़ी आपको समझने के लिए हो गया। दूसरी बात ये है कि आपको अगर किसान भाई अलग अलग टाइमिंग में अगर मक्का को लगाते हैं, कोई मक्का आज लगाए कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं, कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं, अगर और उस क्षेत्र में अगर इसका प्रकोप ज़्यादा है तो वैसे कंडीशन में किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि सारे किसान भाई मिल करके एक साथ अपने मक्का के फसल को लगाएं, ताकि ये होता क्या है कि अलग अलग अगर अवस्था में आपके पौधे रहते हैं तो उसको ये ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं, उसके ओर ये एक को क्षतिग्रस्त करते हुए फिर जो पौधा उस अवस्था में आता है तो उधर वो शिफ्ट करके उधर वो आ करके उसको ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अगर जिधर इनकी समस्या ज़्यादा होती है वहाँ पे किसान भाइयों को चाहिए कि सब किसान भाई मिल करके एक ही टाइम में अपना जो है इसके बीज को लगाइए, ताकि पौधा आप सब किसान भाइयों का पौधा

टाइप का रहे और इनका प्रकोप कम से कम हो। साथ ही में अगर जहाँ भी ये होगा तो अगर एक किसान भाई के फील्ड में अगर दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि दूसरे जगह भी ये मूव करे। और इसका जो है कि अगर 100 में से 5 पौधे में अगर आपको दिखता है कि ऐसा हो गया है, इसका फॉल आर्मी वर्म की समस्या है, तो आपको इसका कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर इसे कम है तो आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये मैं बोलूँगा कि जब भी अगर ऐसा आपको दिखे तो आपको अपने खेत को फ्रिक्वेंट, मतलब है कि हर दिन लगभग आपके फील्ड में, खेत में जाना चाहिए कि इनका क्या स्थिति है, कहीं कोई मतलब इसका कैसे फैलाव है, ज़्यादा तो फैल नहीं रहा है, तो वैसे आपको इसको रोकथाम करना है। अब क्या है कि इसको कैसे, इसका उपचार कैसे करें, तो उपचार तो हम कुछ आपको बताए हैं कि अलग अलग टाइम ना दे करके एक साथ रोपाई करें। दूसरी बात है कि हमको इसकी तैयारी शुरू से ही करनी पड़ेगी। हम अच्छे गुणवत्ता वाला बीज लें सबसे पहले, जो लोकल बीज का चयन ना करें, अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लें जिसमें किसी भी कीट का प्रकोप कम से कम होता है। खाद समुचित मात्रा में देना है। बहुत किसान भाइयों में ये रहता है कि हम यूरिया ज़्यादा दे देंगे तो हमारा जो है बंटवार ज़्यादा होगा, हमारी फसल ज़्यादा होगा। लेकिन जो अनुशंसित मात्रा है यूरिया देने से का, उससे अगर हम जब ज़्यादा देते हैं यूरिया तो क्या होता है कि ये फसल में तेज़ी से बंटवार होता है। उसके जो फिजिकल कंडीशन है, मतलब जो पौधे की पत्तियां या पौधे की लंबाई बढ़ने की जो होता है वो तेज़ी से होता है, और उसका जो टिशू है, सेल है, वो मुलायम हो जाता है। और ये ऐसा होने के चलते जो फॉल आर्मी वर्म या कोई भी कीट उसको आसानी से उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। साथ ही साथ अगर कभी तेज हवा आई तो उसमें आपका गिरने की भी समस्या रहती है। इसीलिए यूरिया की मात्रा उतना ही देना है जितना अनुशंसित है। साथ में फर्टिलाइज़र में जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश तीनों देने की होती है संतुलित मात्रा, उसमें पोटेशियम की कमी कभी नहीं करें। अगर आप पोटेशियम की कमी करते हैं, जिसको म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं, तो इसके चलते भी आप में कीटों की समस्या ज़्यादा होती है। पोटेशियम ऐसा उर्वरक है जो आपको कीटों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए पोटेशियम आपको देना ही है, म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। और जो हम लोग जो उसके बोलते हैं कि अलग अलग, ऐसा नहीं है कि यूरिया एक ही बार में दे देना है, उसको बांट बांट करके फसलों के अलग अलग फेज में देना है, तो वो आपको करना है। साथ में जब अगर हम केमिकल पे जब आ जाते हैं कि उसको रासायनिक विधि से कैसे करना है, ये सब तो आपको बचाव के लिए करना है। लाइन आपको मेंटेन करना है, पौधे से पौधे की दूरी आपको जो है वो मेंटेन करना है। और इन सारे चीज़ों को करते हुए भी अगर जब फॉल आर्मी वर्म का जब आपका प्रकोप होता है, तो एक सिंपल है, अगर पहला और दूसरा स्टेज में है तो इमामेक्टिन बेंजोएट, जो 5SG इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG जो झिल्ली की तरह होता है, झिल्लीनुमा होता है, इसको पहले आपको थोड़ा सा पानी में घुलाना है, और जब घुल जाए तब इसको फिर से आप अपने जो स्प्रेयर है उसमें इसको डाल करके करना है। अब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों, इसको 10 लीटर पानी में मात्र 4 ग्राम आपको ये झिल्ली वाला दवा लगता है। मतलब पहले उसको पानी में घुलाना है, मतलब आप हिसाब से कर लीजिए, अगर आपका पीठ वाला अगर 15 लीटर का है स्प्रेयर, तो उसके लिए आपको कि पहले एक छोटा सा ढक्कन या कोई भी पात्र में 6 ग्राम आपको कीटनाशी डालना है, ये इमामेक्टिन बेंजोएट डालना है, और उसके बाद डालने के बाद उसको जो है आपको फिर आपको स्प्रेयर में डाल करके उसको शाम के समय में छिड़काव करना है, जनरली 4 बजे के आसपास करना है, और उसको मेर पे भी करिए। ये है। दूसरी बात है कि जब अगर थर्ड और फोर्थ स्टेज में जब चला जाता है, तो दो कीटनाशी और है जो आपको थोड़ा ये कॉस्टली है लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए। एक है उसमें थायोमेथोक्जम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोलेथ्रिन 9.6%, इसकी जो है 0.25 ग्राम, मतलब कहने का मतलब है कि ये इसकी 1 ml दवाई जो है 4 लीटर पानी में आपको डालना है। मतलब कहे कि अगर 15 लीटर वाला स्प्रेयर है तो उसमें 4 ml दवाई थायोमेथोक्जम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोलेथ्रिन 9.5% का देना है।
और जब भी आप कीटनाशी जब देते हैं तो उसमें

0: जो है कोई जो उसको हम लोग बोलते हैं कि शैम्पू या वेटिंग कोई भी चीज़ उसको आपको देना है ताकि वो आपके सर्विस टेंशन को बढ़ाता है, आपके कीटनाशी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और दूसरा जो एक और इंसेक्टिसाइड है उसका नाम है स्पाइनोटोरम। स्पाइनोटोरम 11.7% इसकी 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ स्टिकर मिला करके इसको आपको छिड़काव करना है। इसके छिड़काव करने से आपका जो है ये फॉल आर्मी वर्म की जो समस्या है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, इन सारी चीज़ों को कर करके आप अपने जो मक्के की जो फसल है उसमें कीट का नियंत्रण कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं अभी आपने फॉल आर्मी वर्म के बारे में जाना और ये कीट की पहचान हम कैसे करेंगे इस कीट की और साथ ही इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी है और आशा करते हैं आज के इस वार्ता से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। नमस्कार।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा

यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं, इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं, इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं, आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है। और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता?

है। गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति

हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाली सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 cc की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जी हाँ, FM ग्रीन। और आज फिर से हम हमारा जो खास प्रोग्राम है उन्नत कृषि लेकर आ चुके हैं और आज हम एक खास विषय उर्वरक बचत हेतु धान की फसल में अजोला का प्रयोग, आज इसके बारे में आप सभी को बताएंगे। तो इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर AK झा, जो कि जी हाँ वैज्ञानिक हैं, मृदा वैज्ञानिक हैं, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अजोला क्या है।
2: अजोला एक फर्न है, जलीय फर्न है। वास्तव में इस फर्न की पत्तियों में एनाबिना अजोली नाम का एक नीलहरित शैवाल रहता है, यानी कह सकते हैं कि इस फर्न का और नीलहरित शैवाल का एक सिम्बियोटिक एसोसिएशनशिप है, तो यानी सहजीवी व्यवस्था है। और इस नीलहरित शैवाल के कारण ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करता है।
0: और अजोला को किस किस काम के लिए हम प्रयोग मिला सकते हैं?
2: बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछ दिया। वास्तव में अजोला एक ऐसा फर्न है जिसका प्रयोग आप खेती में उर्वरक बचत के लिए कर सकते हैं, खास करके धान की फसल में। दूसरी बात, यदि इसको आप प्याज में करके देखें तो यहाँ पर करके देखा गया है कि प्याज की फसल में, खास करके खरीफ प्याज में, सड़ने की ज्यादा समस्या होती है और यदि हम अजोला का प्रयोग करते हैं तो उसमें सड़न कम होता है, उत्पादन बढ़ता है और इसका जो रंग है वो ज्यादा बढ़िया होकर के आता है। तो यह हमने देखा है कि इसमें खरीफ फसल, खरीफ ऑनियन में, खरीफ प्याज में ये फायदा कर सकता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग लोग जो पशुपालन है उसमें भी करते हैं, पशुओं के आहार के लिए। और यह यहाँ पर शोध करके देखा गया कि यदि हम 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम यदि गाय को अजोला देते हैं तो उसमें 8 से लेकर 15.6% तक दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है। साथ ही साथ यह बताएं कि कई देशों में इसको लोग पशु आहार के अतिरिक्त, पशु आहार मतलब कि बकरी का के आहार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, मुर्गी के आहार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं इसको मनुष्य भी भोजन करते हैं। ये पेपर में है, ये हम लोगों ने नहीं करके देखा है, लेकिन यह जो पेपर में है, पेपर में यह है कि हाँ, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, 25 से 35% प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो यह मनुष्य आहार में भी देखा गया है। और साथ ही साथ एक शोध में तो यह भी देखा गया कि यदि हम कैंसर पेशेंट्स को या HIV पेशेंट्स को यदि हम देते हैं तो उसकी रिकवरी तेज होती है। लेकिन इस पर हम बहुत ज्यादा बल नहीं देंगे, हम तो कृषि के हैं तो कृषि में हमने

0: जनता है कि आप खेती में प्रयोग कर सकते हैं, पशुपालन में पशु आहार के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: अभी आपने बताया कि धान की फसल में उर्वरक बचत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो कितने उर्वरक की बचत होती है?
0: देखिए, यहाँ जो हम लोगों ने शोध करके देखा है, जिस पर टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय का है, कि यदि हम अजोला का ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो उससे जो भी उस धान की अनुशंसित नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश की मात्रा है वह आपको आधी की बचत हो जाएगी। यानी कहने का मतलब, यदि आपको 6000 रुपया उर्वरक के खरीद पे लगता है तो 50% नाइट्रोजन, 50% फॉस्फोरस और 50% पोटाश उसका कम कर दीजिए, जिस पर कि मोटा मोटी 2500-3000 रुपये की बचत आपकी प्रति हेक्टेयर हो सकती है यदि आप इसमें प्रयोग करते हैं तो।
1: धान की फसल में जो अजोला का प्रयोग किया जाता है, तो अजोला का उत्पादन हम कैसे करेंगे और धान की फसल में इसका उपयोग कैसे करेंगे?
0: ये बड़ा महत्वपूर्ण और समीचीन प्रश्न है। वास्तव में क्या है कि अजोला की आवश्यकता ज्यादा मात्रा में होती है। यदि आप ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो 10 टन पर हेक्टेयर की अनुशंसा है, तो 10 टन पर हेक्टेयर उत्पादन करने में तो टफ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो खेत में ही 2 मीटर गुने 10 मीटर की क्यारी बना लेते हैं, बरसात में तो ऐसे भी पानी रहता है, तो उसमें आप मेड़ बना दें और वहां पर उस क्यारी में आपको करना यह है कि इसमें पानी आपको रखना होगा, कम से कम 10 सेंटीमीटर पानी हर समय आपको रखना पड़ेगा। पानी रखने के बाद यहां पर आपको क्या है कि ये 1.5 किलो लगभग गोबर, यानी कहने का तो प्रत्येक क्यारी में आप 3 किलो कर लीजिए, क्योंकि देखिए 10 × 2 यानी कितना होगा, 20 स्क्वायर मीटर हो गया। तो उसमें 3 किलोग्राम गोबर को लेकर के आप 20-25 लीटर पानी में घोल करके, और जो चलनी आता है जो जिसे बालू आलू छानते हैं उसे छान करके उसको आप फैला दीजिए उसमें। ये करने के बाद उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट ये आपको 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको डालना चाहिए। ये डाल करके इसमें अजोला डाल देते हैं लगभग 200 ग्राम, आप फ्रेश अजोला जो बिल्कुल ताजा है उस अजोला को उसमें डाल देते हैं, और या आप देखेंगे कि यदि आप 2-3 हफ्ते तक ये पानी का स्तर आपने बरकरार रखा तो आपको ये पूरा का पूरा जो सरफेस है वो ढक जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसके लिए आपको करना क्या है, क्यारी बना लेना है 10 मीटर × 2 मीटर का, उसमें आपको 3 किलोग्राम गोबर को 20-25 लीटर पानी में घोल करके छान करके उसमें डाल देना है, उसके बाद 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल देना है, 200 ग्राम अजोला डाल देना है, 10 सेंटीमीटर पानी को आपको मेंटेन रखना है हर समय, और वह आप मेंटेन किए रहेंगे तो 2 से 3 हफ्ते में पूरा ये कवर हो जाएगा और पर्याप्त मात्रा में होगा। तो जितने एरिया में आपको धान की फसल करनी है उतने एरिया के हिसाब से आप क्यारी बना करके वहां पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे किसान हैं कि इतना अजोला पैदा नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए दूसरा भी तरीका है। वो दूसरा तरीका है डुअल क्रॉपिंग, कि डुअल क्रॉपिंग में आप क्या करते हैं कि जब 1 हफ्ते का आपका जब धान रोपने के बाद 1 हफ्ते का हो गया तो उसमें ही आप जस्ट उसका 10/10 भाग, यानी आप 10 टन डाल रहे थे तो 1 टन के हिसाब से आप वहां पर अजोला डाल देंगे, और डाल करके उसमें जो आपका फॉस्फोरस की मात्रा है वो लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसको बढ़ा देंगे, और ये बढ़ा करके पानी का स्तर 2 से 3 हफ्ते तक आप मेंटेन रखेंगे तो देखेंगे क्या कि ये अजोला उस सरफेस को ढक लिया है। उस समय क्या करेंगे आप कि 2-3 हफ्ते के बाद उस पानी को कम कर देंगे तो ये सब जमीन पकड़ लेगा और ये बहुत जल्दी सड़ करके उसको पोषक तत्व देने का काम करना शुरू कर देता है। तो इस ढंग से यदि आप करते हैं तो इसको कहते हैं डुअल क्रॉपिंग। और वो पहला वाला जो बताया था वो ग्रीन मैन्योरिंग था, कि आपने पैदा किया और वहीं पर जैसे आप ढेंचा पलटते हैं वैसे ही आप इस अजोला को पलटेंगे, और अजोला को पलट करके अब उसके बाद फिर आप रोपनी कर देंगे और ये सारी प्रक्रिया होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारा अजोला तेजी से बढ़े तो उसमें चाहे वो क्यारी आप बनाए हुए हो चाहे खेत में डाल रहे हो, तो वह जो मैंने 20 केजी पर हेक्टेयर आपको कहा था उसको आप 3 हिस्सों में बांट करके हफ्ता भर के इंटरवल पर उस SSP को दीजिएगा। अब आप ये प्रश्न पूछिएगा कि भाई ये SSP पर इतना जोर क्यों? तो वास्तव में क्या है कि अजोला फॉस्फोरस थोड़ा ज्यादा रिक्वायर करता है, तो फॉस्फोरस आप यदि उसमें डालते हैं तो अजोला की बढ़वार तेजी से होगी और आपको अजोला का ज्यादा बायोमास मिलेगा। वैसे अजोला तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2 से 5 दिन में, जब वातावरण उपयुक्त है तो 2 से 5 दिन में यदि आपने 1 किलो अजोला डाला तो वो 2 केजी हो जाएगा। लेकिन बिहार में इसका ज्यादा प्रयोग पशुपालन में हो रहा है।

0: ये तरीका है। आप पशुपालन में जो आप करते हैं उसके लिए तो छोटा सा गड्ढा बनाते हैं जहाँ पर आपका फार्म है, जहाँ पर जानवर है उसी के बगल में, और वहीं पर आप इसको पैदा करते हैं।
1: तो श्रोताओं, आज हम जान रहे थे उर्वरक बचत हेतु धान की फसल में अजोला का प्रयोग, और इसमें बहुत सारी बातों पर डॉक्टर साहब ने आप सभी का जो ध्यान है वो आकर्षित किया। धान की फसल में प्रयोग करने वाले अजोला का उत्पादन आप कैसे करेंगे और इसका उपयोग कैसे करेंगे, साथ ही उर्वरक बचत किस तरीके से आप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप सभी से एक नए विषय के साथ हम जुड़ेंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार। उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढककर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आरजे अनु और एक बार फिर हर रोज़ की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, मशरूम की अगर बात करें तो हम सभी वाकिफ हैं इसके पोषक गुणों से और पोषक तत्व जो इसमें मौजूद होते हैं, कैसे ये बीमारियों से हमें बचाता है। पोषक तत्व बहुत सारे इसमें हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं। तो खेती की अगर बात करें तो खेती की तरफ भी किसान भाई और ख़ासतौर पर ग्रामीण महिलाओं की मैं बात करूँ तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा जरिया हो चुका है आज आर्थिक तौर पर मुनाफा पाने का। अब बात कर ले भूमिहीन किसान भाइयों की तो वो भी इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे मशरूम के एक अलग प्रकार के बारे में, ऑयस्टर मशरूम के बारे में, और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संतोष कुमार। मैं आप सभी को बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका।
5: थैंक यू मैडम।
3: सबसे पहले तो ऑयस्टर मशरूम की प्रजातियों के बारे में बता दें डॉक्टर साहब, कौन कौन से अच्छे प्रजाति हैं?
5: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑयस्टर मशरूम को अगर हिंदी भाषा में बोलते हैं तो ढिंगरी मशरूम बोलते हैं, जो किसानों के बीच में बहुत पहले से ही प्रचलित है
3: जी।
5: इसमें अगर प्रजातियों की बात की जाए तो एक्चुअली जीनस के नाम इसमें प्लोरोटस आता है, तो उसमें प्लोरोटस सोजोर काजू, प्लोरोटस ऑस्ट्रिएटस, कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें दो मुख्य प्रजातियाँ जो हमने अभी बताया, ऑस्ट्रस प्लोरोटस ऑस्ट्रिएटस और प्लोरोटस सोजोर काजू। तो ये डेजेमर भी एक वैरायटी है, तो ये तीन प्रजातियाँ बेसिकली फेमस मानी जाती। एक है प्लोरोटस फ्लोरिडा जो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, और ये बेसिकली जो टेम्परेचर बहुत कम होता है ठंडक में, उसमें इसको उगाया जा सकता है। और अगर हम प्लोरोटस सोजोर काजू की बात की जाए, तब जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, मान लीजिए फरवरी में थोड़ा सा टेम्परेचर 25 के या 26 तक पहुंचता है, उसमें प्लोरोटस सोजोर काजू की खेती आराम से कर सकते हैं। तो ये दो तीन प्रजातियां हैं जो ऑयस्टर मशरूम या ढिंगरी मशरूम में प्रचलित हैं किसानों के बीच में
3: जी। तो ये तो हो गई प्रजातियों की बात, और खासियत के बारे में बताएं डॉक्टर साहब, की अन्य जो मशरूम के प्रकार है उनसे कैसे खास है?
5: खास बात इसमें होती है, इसकी खेती करना बहुत ही आसान है। इसकी खेती करने के लिए आपको बहुत कुछ सामान की जरूरत नहीं पड़ती है, बस अगर पोषाहार की बात की जाए तो इसमें गेहूं का भूसा या कुछ हमारे जो दलहन भूसा होते हैं, जैसे चने का भूसा, मसूर का भूसा, या आप तिल का भूसा भी ले सकते हैं, और इसको आप एक नाइट

0: पानी में भिगो देते हैं, दूसरे दिन आप इसमें इसको सुखा के बिजाई कर देते हैं। और तो इसलिए इसमें दूसरे मशरूम से इसलिए अलग है कि इसकी खेती करना बिल्कुल आसान है, और अगर तत्व की बात की जाए, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, तो ये दूसरे मशरूमों से कम नहीं है
1: जी। मतलब इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे। और इसके बाद बात करते हैं खेती की, तो किस समय इसकी खेती की जाती है मुख्य तौर पर?
0: जी मैडम, अगर खेती की बात की जाए तो वैसे तो ये ठंडक का मशरूम है, ठंडक में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है, बिना कोई बाहर से अवरोध दिए हुए।
1: मतलब टेम्परेचर इसमें कम चाहिए?
0: जी मैडम, टेम्परेचर कम चाहिए। टेम्परेचर अगर टेम्परेचर की बात करते हैं हम, तो ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी आराम से खेती की जा सकती है। जैसे हमने अभी एक स्पीसीज की बात की थी, प्लोरोटस सजोर काजू, इसकी खेती हम 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकते हैं। अगर मंथ की बात की जाए तो हम अक्टूबर से मार्च तक इसकी खेती आराम से कर सकते हैं
1: जी,
0: बिना कोई रुकावट किए हुए।
1: जी मैडम, मतलब ये ठंड के मौसम में इसकी खेती ज्यादा कर सकते हैं। और अब पोषाहार की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो कौन कौन से पोषाहार की जरूरत होती है इसकी खेती?
0: अगर पोषाहार की बात की जाए तो हम भूसा की जरूरत पड़ती है इसमें। भूसा बेसिकली हमारे बिहार में गेहूं की खेती खूब होती है, तो गेहूं को हम रोप प्रयोग कर सकते हैं अच्छे से, और गेहूं का भूसा ही सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा मक्के की खेती भी बहुत अच्छे से होती है, तो मक्के की कुट्टी को काट कर हम भूसे के रूप में बदल कर उस पर हम लोग खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई जिनके खेत में दलहन का भूसा, दलहन की खेती होती है, जैसे चना हुआ, मटर हुआ, मसूर हुआ, उसका भी भूसा हम इसकी खेती के लिए प्रयोग में ला सकते हैं
1: जी। और एक अगर खेती की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ ये प्रक्रिया होती है इसकी खेती के लिए, वो भी जानना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें हम?
0: जी मैडम, जैसे आपने अभी बताया था कि ये बिना खेत की खेती है, तो इसमें खेत की खेत की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक छोटी सी झोपड़ी आप बना लीजिए, झोपड़ी के अंदर आप या तो मेज या चचरी बना लीजिए बांस की, उस पे आप बैग मेज की खेती की जाती है क्लस्टर मशरूम की। तो इसके लिए आपको मान लीजिए भूसा की बात किया, तो गेहूं मान लीजिए आपने गेहूं का भूसा लिया, तो उसको आप एक रात भिगोएंगे पानी में
1: जी।
0: भिगोने के बाद उसको शाम को भिगो दिया आपने, और सुबह दूसरे दिन उसको भूसे को ड्रम या किसी से बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद उसको 4-5 घंटे इसको छाया में सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसमें बिल्कुल, जब हम सुखाने के बाद कितना के, हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि ये हमारा भूसा बीज में बीज मिलाने लायक हो गया, तो हम मुट्ठी में भूसे को पकड़ते हैं और प्रेस करते हैं मुट्ठी को, तो अगर पानी मुट्ठी से बाहर नहीं निकलता है, तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ये भूसा हमारा बिजाई के लायक हो गया, तब इसमें हम बिजाई करेंगे। बेसिकली 1 kg बीज से हम लोग 10 बैग भर सकते हैं। बैग का जो साइज होगा 35x35 cm, 35 cm चौड़ाई होगी और 45 cm लंबाई होगी। उस एक बैग में लगभग 3 kg भूसा आएगा, तो 3 kg भूसा में हम 100 ग्राम बिजाई मशरूम की बीज की करेंगे
1: जी।
0: और उसके बाद हम, जब बैग आपका बिजाई हो जाए अच्छी तरह, इस बैग को हम टाइटली बांध देंगे और बैग में 15-16 छिद्र कर देंगे चारों तरफ, और उसको फिर हम मशरूम हट में रख देंगे। और मशरूम हट में रखने के बाद आप 10 दिन बाद देखेंगे कि जो बैग है, बैग के अंदर सफ़ेद सफ़ेद मशरूम की माइसीलियम फैल जाएगी। जब सफ़ेद सफ़ेद मशरूम की माइसीलियम बैग के अंदर फैल जाए, तब आप उसमें सुबह शाम हल्का सा 1000 के रूप में पानी का स्प्रे बैग में करेंगे, और सफ़ेद माइसीलियम निकलने होने के लगभग 10 दिन बाद आपको मशरूम की पहली फलन प्राप्त होगी। इस तरीके से आप एक बार बैग से 3 मशरूम के फलन प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो ये तो पूरी प्रक्रिया हुई कि कैसे इसके ऑयस्टर मशरूम की हम खेती कर सकते हैं। प्रबंधन की बात करें, कुछ उसमें देखरेख की जरूरत होती है, सावधानी की जरूरत होती
0: है? अगर प्रबंधन की बात किया है, तो पहले तो जो हमारा झोपड़ी है उसको उसमें उसके अंदर साफ सफाई रखना चाहिए, और झोपड़ी के 1-2 meter तक चारों तरफ से 2-3 meter तक किसी प्रकार का कोई खरपतवार या जंगल नहीं होना चाहिए। एक चीज और ध्यान देना चाहिए, जब हम पोषाहार लेते हैं तो पोषाहार में किसी तरीके की बदबू या महक नहीं आनी चाहिए, कोई उसके अंदर दूसरा कवक या कीड़ा मकोड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है, तब आपको भूसा को, जब हम भूसा को पानी में भिगोएंगे एक रात के लिए, उस समय हम 2 chemical का प्रयोग भूसे में करेंगे पानी में। तो अगर मान लीजिए 1 quintal, अगर 50 kg भूसा को हमको भिगोना है, तो आप 80-90 liter ड्रम में पानी ले लीजिए, ड्रम में या किसी नाद में सीमेंट की, उसमें हम 1 quintal 100 liter पानी के लिए लगभग 80 gram बेबस्टीन केमिकल और 100 ml फार्मलिन सॉल्यूशन उसमें घोल देंगे, और उसके बाद उसमें भूसे को हम डिप कर देंगे, डुबो देंगे एक रात के लिए, जैसे हमने पहले बताया, और सुबह इसको हम लोग उसे निकाल देंगे, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा होगा तो वो भूसे से एक केमिकल दोनों

0: उसको मार देंगे। तो ये सावधानी पहले बरतनी है। इसके बाद सबसे मुख्य बात होती है कि जब हम बिजाई करते हैं उस समय हम ये देखते हैं कि भूसे में बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, 70-75% नमी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नमी होगी तो मशरूम जो बीज बोया है वो उसमें जो वाइट सफ़ेद माइसिलियम है वो नहीं आएगी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है और मशरूम उसी में ही मर जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। नंबर तीन, जब हम बिजाई जब हम बैग में मशरूम निकलने लगता है उस समय हम ये ध्यान दे, क्योंकि सुबह शाम को हजारे के रूप में हल्का सा पानी देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी कभी नहीं देना चाहिए जब उसमें फ्रूटिंग फल हो लगा हुआ। तो फल लगते समय हम उस पर बैग पे स्प्रे नहीं करेंगे, हमेशा फल तोड़ने के बाद ही स्प्रे करेंगे। नहीं तो जो फल पे अगर स्प्रे कर देंगे तो जो फल का कलर बदल जाएगा और आप जब बेचने जाएंगे मार्केट में तो वो उसको कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो देखने में नहीं अच्छा लगेगा। तीसरी बात ये कि ये बीच बीच हम हटके जब हम मतलब एक फलन आपने तोड़ एक एक बैग से पूरा तीनों फलन तोड़ने के बाद जब हम दोबारा बैग लगाएंगे तो अच्छे से बैग झोपड़ी की सफाई करने के बाद उसमें हम किसी दवा का स्प्रे कर देंगे, जैसे बेबेस्टिन का स्प्रे कर देंगे, जिससे कि उसमें जो भी अगर कोई रोग वगैरह हो वो निकल जाना चाहिए। और ये भी एक खास बात ध्यान देनी चाहिए कि झोपड़ी के अंदर लोगों का आना जाना कम होना चाहिए। जो जो मैन जो आदमी इसको उसकी देख रेख कर रहा है वही सुबह शाम अंदर जाए, और बेफालतू में झोपड़ी को खुला नहीं रखना चाहिए। ये सावधानियाँ,
1: तो ये कुछ सावधानियाँ हैं, प्रबंधन है जब आप ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं तो। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए काफ़ी है। आप अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा, क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी है, कौन से पोषाहार का इस्तेमाल करना है, आपको किस समय इसकी खेती की जाती है ये भी आपने जान लिया, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो आशा करते हैं आज आपको लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से, और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम

किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने

उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर। यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: कोलेरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है, इसलिए कई मायनों में धान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
4: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
5: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली 3-4 तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुआई बोलते हैं। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं। उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज करके हम बुआई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पर जल जमाव हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं।
4: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए।
5: पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुआई हो गई, तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि

0: हम या जब बुआई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो जमीन है, उस पे हम सीधे बुआई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुआई दो तरीके की होती है। एक तो हमारी सूखी बुआई होती है और एक गीली बुआई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं और गीली बुआई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी, वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा, जैसी पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लॉविंग करते हैं, और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं, अपने धान की बुआई करते हैं। और दूसरी जो होती है गीली बुआई, गीली DSR जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं बत्तर DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं। वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लॉविंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुआई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुआई करना कैसे है, हम सीधी बुआई करने के लिए जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं, मतलब जनरली 20 by 10 के स्पेसिंग पे हम बुआई करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारी रो के रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं, उस पे लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पे जो धान होता है उस पे सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं। और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की सीधी बुआई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसके वजह से, और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है। जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं, और DSR से काफ़ी ज़्यादा फायदे भी होते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में। दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं, तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं, तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान में दो पत्तियां, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं, तो उस समय उसको हम निकालते हैं, और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं, उसके जड़े काफ़ी अच्छे से पकड़ ले हमारे मिट्टी को। तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
1: पडलिंग यानी कि
0: हम कई बार, एक पडलर होता है, तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे, हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया अपने मिट्टी में, और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे, वो अच्छे अच्छे फाइन, मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी, मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेते हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को, हम अपने बिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में लाकर लगाते हैं, तो वो मेन लैंड में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं। तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लैंड के लिए, इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया हमने, पहले नर्सरी तैयार किया, जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने, और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया, तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला, और निकाल कर उसने अपने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो, अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी, जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पे। तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पे कुछ विशेष ध्यान

नहीं पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में, वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20 बाई 10 या 20 बाई 25, ये हमारा 20 बाई 10 या 20 बाई 15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है, यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें, और पानी हमेशा रहना चाहिए। सबसे खास बात, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये ध्यान देना, जो कि DSR में नहीं था, हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने प्लांटिंग के समय बताया, हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डिपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डिपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं, तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले, तो वो 20 से 25 दिन पुराना था। यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक पडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्लेई होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी। तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरीगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पर, हमने इरीगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डिपॉग नर्सरी से, वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25, मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25 से 25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं, अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स और सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20 से 25 दिन पुराना निकाला था, तो उसमें हमने एक जगह पे, जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे 1 से 2 सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं है उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं, तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से, मतलब अंदर घुसाते नहीं भी, जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईल्ड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारी श्री विधि की कुछ और विशेषता। ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो
जैसे आपने हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है स्टेजेस में उन पौधे में। तो लेकिन श्री विधि में क्या होता है?

0: है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है, नहीं। हम क्या करते हैं, अगर अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स, एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे, तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं। तो इसको हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं, जो कि हम श्री विधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर अपने जल की भी बर्बादी की, और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें श्री विधि में। तो ये होती है। और इसके अलावा एक चीज़ का मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्री विधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर इसमें उपज जो कहते हैं उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्री विधि से अगर हम बुआई करें तो, अगर ट्रांसप्लांटिंग या DSR की अपेक्षा करें, तुलना करें तो उससे ज़्यादा श्री विधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो। तो ये हमारी 3 तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर अगर किसानों के पास मैकेनिकल ड्रिलिंग, मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है, तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, वैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपने डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, ऐसा मशीन होता है जिसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं, तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने 3 बताए, आप उन 3 में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पे डिपेंडेंट है ये सब।
1: जी मैम, मैम इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियां होती है।
0: जी,
1: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
0: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों जब हमने विभिन्न तकनीकों की बुआई करने की जब बात की तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते। जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्री विधि में थी वो डिपॉग नर्सरी होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं। और DSR क्या होता है, DSR में तो हम डायरेक्टली बुआई कर रहे हैं तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुआई करना चाहते हैं। जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हमारे हम जो धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है, अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो अब नर्सरी बेसिकली 3 तरीके की होती है। एक होती है अपलैंड नर्सरी, एक लोलैंड नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी। तो अपलैंड नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे छोटे उस जो मिट्टी है जो हमारी ज़मीन है उनको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं। तो जैसे 1 से 1.5 मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले 1 दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं, प्री जर्मिनेटेड सीड। तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग मतलब जो जूट के बैग होते हैं उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर दो तीन दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा, और उसके बाद कुछ चार पाँच दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पर पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पर, पडलिंग करके उसमें

0: पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पर इकट्ठा नहीं होगा, तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने श्रीविधि के लिए बताया था डेपोक नर्सरी, तो ये डेपोक नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पे भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके, वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफ़ी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगी, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी, तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है। तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डेपोक नर्सरी। तो ये डेपोक नर्सरी हम श्रीविधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकनेस होती है, तो जब आप डेपोक नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्रीविधि में यूजुअली डेपोक नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 बेसिक नर्सरी हैं हमारे।
1: तो मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितनी तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद मुझे।
1: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है, जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: 19 कृषि।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए

और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
1: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों, इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाले सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है। लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है, या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है, शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही

से निकली, लेकिन वहां पर उन्हें असहज महसूस होता है क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है, सबसे जरूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप इसे संबंधित विभाग तक पहुंचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। और सिर्फ अपने आप को नहीं, बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी जरूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in, यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहां पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले तो जो भी वहाँ पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए ज़रूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों, आखिर शी बॉक्स ज़रूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी,
जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित

करेंगे, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा, और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है, कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों, लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचे, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए, और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है, बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों, कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है, तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी, तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं, तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज के लिए, तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उसे आपको असहज महसूस हो रहा है, तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है, तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और दोस्तों, जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है, तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दे, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहां भी महिलाएं काम कर रही है, वहां कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है, और कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है, और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है, तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ, इससे नहीं पसंद है, तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है, तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं, या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं, वहां पर पोश की, यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है? इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है, और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है। क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं, और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, ये भी पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और IC की भूमिका क्या है, यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है, ये भी आपको पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत जरूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे, तो आपके घर के जो लड़के हैं ना, वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं, तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है, तो आप उसे रोकिए,
पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज्यादा

0: सख्त महसूस करेंगी, उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है। उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों, तो जो जागरूक पुरुष हैं, जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों, शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की, अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
2: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो

0: बनाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्म

जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित

मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आरजे अनु। तो आज फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक खास विषय लेकर आए हैं और किसान भाइयों के लिए खास है क्योंकि हम आज बात करेंगे कृषि उद्यमिता की। जी हाँ, और बिहार क्षेत्र की बात करें तो बिहार में कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में बायोटेक किसान हब की भूमिका, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर सी के पांडा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक्सटेंशन डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। और आज बहुत सारी बातें हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। बायोटेक किसान हब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके तहत क्या कुछ कार्यक्रम चलाया जाता है और कैसे किसानों को हेल्प करता है ये परियोजना, इसके बारे में आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताएं कि बायोटेक किसान हब क्या है।
1: आज हम लोग बात करेंगे बायोटेक किसान हब कैसे बिहार में एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है 2018 से। देखिए, बायोटेक किसान हब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का अधीनस्थ एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम बायोटेक जो किसान हब है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको मिशन प्रोग्राम के आधार पर लिए है। ये किसान मतलब हुआ कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क है। ये सारा देश की 15 जो हमारा एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, ये 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में चल रहा है। इसी के आधार पर हमारा अपना जो बिहार स्टेट में भी चल रहा है और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनका जो डायरेक्टर है, डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन के नियंत्रण में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में इसका कार्यक्रम चल रहा है।
0: जी, अब इसके उद्देश्य की बात करते हैं, इसका क्या कुछ उद्देश्य है उसके बारे में बताएं डॉक्टर साहब।
1: हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे अपने मैडम। ये इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उद्देश्य है, बहुत महत्व है। ये एक्चुअली किसान के लिए है ये प्रोजेक्ट, ये जो प्रोग्राम जो भी बोलिए, बायोटेक किसान हब। अब देखिए, किसान जो लोकल लेवल में काम करते हैं उनका नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, तरह तरह का प्रॉब्लम खेती के आधार पर वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रॉब्लम जब है उसका सोल्यूशन भी डेवलप होता है, कृषि विश्वविद्यालय बोलिए, कृषि का जो गवेषणागार होता है, रिसर्च स्टेशन होता है, उसमें भी उसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल के आते हैं। लेकिन इस सोल्यूशन किसान तक पहुँचना चाहिए। उस किसान का जो भी

0: प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के आधार पर किसान के पास पहुंचाने का काम ही करता है बायोटेक किसान हब।
1: जी जी,
0: ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा काम क्या है ना, दूसरा काम सबसे बड़ा, दूसरा प्रोग्राम से इसका अंतर क्या है, देखिए दूसरा प्रोग्राम से के साथ इसका अंतर है, इसमें साइंटिस्ट ज़्यादा क्लोजली किसान के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा देखिए हमारा राज्य में जो स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर है, अब बोलते हैं छोटा जो किसान है, तो उस किसान का नंबर ज़्यादा है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के साथ इकट्ठा होकर हम लोग काम करते हैं, उनका भी कुछ भी प्रॉब्लम जो होता है उस प्रॉब्लम प्रोडक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। जब प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्शन के बाद उसको मार्केट तक कैसे पहुँच पाए, उसके लिए किसान के अंदर जो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करना, वही काम हम लोग करते हैं। एक कोई किसान अपने लेवल में करते हैं, उसको भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, और बहुत किसान, छोटा किसान बा स्मॉल एंड मार्जिनल जो किसान होता है, सब इकट्ठा जब आ जाते हैं, एक साथ जब आ जाते हैं, उनको भी एक साथ लेके भी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
1: तो ये उद्देश्य है बायोटेक किसान हब परियोजना के। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की हम बात करें डॉक्टर साहब, तो क्या यह परियोजना यहाँ चलाई जा रही है? अगर चलाई जा रही है तो वो कब से चलाई जा रही है, उसकी जानकारी दें।
0: हाँ मैडम, ये देखिए 2018 साल से अक्टूबर महीना से हम लोग इस प्रोग्राम को शुरू किए हैं। पहले शुरू हुआ था 3 डिस्ट्रिक्ट में हमारा बिहार का पटना है, लखीसराय है और गया। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम शुरू किए थे। पहला जो काम था, छोटा एक काम लेके हम लोग आगे बढ़े थे, वो है आपको पता होगा खेसारी बा ग्रासपी जो बोलते हैं, उसी को लिए हम लोग शुरू किए थे। जो एक्चुअली एक समय बिहार में खेसारी का आबादी बहुत होता था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम आया जिसको हम लोग बुआ बा ओडा बोलते हैं, जो लोकल टर्म में हम लोग बोलते हैं, कुछ केमिकल रह जाता है खेसारी के अंदर जो खाने से किसान आदमी के शरीर में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन बात क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हुआ, रतन एंड प्रतीक करके 2 वैरायटी भी है। तो उस प्रॉब्लम जो था, उस प्रॉब्लम को हम लोग, हम पहले बताया था ऑब्जेक्टिव में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बोले, उनका जो प्रॉब्लम को हम लोग एड्रेस करते थे। जो प्रॉब्लम था लोकल जो वैरायटी है उसमें ओडाप कंटेंट व बुआ कंटेंट ज़्यादा था, तो उस आधार पर जो रतन एंड प्रतीक जो वैरायटी जो था, उस वैरायटी में जो ओडाप बा बुआ कंटेंट बा जो केमिकल का कंटेंट है कम था, उसी वैरायटी को हम लोग किसान के अंदर प्रचार किया। जैसे हम स्टेटिस्टिकली बताएं तो 2018 साल में हम लोग जब शुरू किए थे तब हम लोग 33 एकड़ एरिया में शुरू किए थे, और उस समय हम लोग पहुँचे थे 66 फार्मर के पास पहुँचे थे। उसके बाद 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में हम लोग 210 एकड़ एरिया में जो खेसारी का बा ग्रासपी का हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन किए थे किसान का फील्ड में, डायरेक्टली किसान का फील्ड में, और उसमें 242 किसान भी बेनिफिटेड हुए थे। 2020-21 में हम लोग और भी एरिया बढ़ाया था, 225 एकड़ तक पहुंचा, उस समय हम लोग 260 किसान के पास पहुंचे। और हम लोग का काम करने का तरीका यही था, फार्मर एक इंटरेस्ट ग्रुप हम लोग बनाए थे किसान के सहायता में, समूह के आधार पर वो लोग सीड प्रोडक्शन करते था और हम लोग उसके लिए सीड सपोर्ट करते थे, रतन एंड प्रतीक का सीड देते थे, कुछ बायो फर्टिलाइजर देते थे, और वो लोग प्रोडक्शन करते थे, उसके बाद हम लोग सीड को प्रोसेसिंग करके फिर उन लोगों और फिर रिसाइकलिंग किया जाता है, मतलब नेक्स्ट ईयर फिर किसान को हम लोग देते थे। इसी आधार पर अभी भी उस जो प्रोजेक्ट जो है ना उसको हम लोग स्केल अप किया है। जैसे आपको पता होगा हमारा यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर एक प्रोग्राम भी चल रहा है, उसी के साथ ये प्रोजेक्ट को जुड़ के हम लोग और भी ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर खेसारी का आबादी होता है उस जगह पर भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मैडम।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं कि विश्वविद्यालय में कब से चल रहा है ये कार्यक्रम, और अभी क्या कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं इस परियोजना के तहत हमारे विश्वविद्यालय में?
0: हाँ मैडम, इसके आधार पर हम लोग को यहाँ पर और भी काम चल रहा है। एक्चुअली उस पहला जो प्रोजेक्ट हम लोग को मिला था 3 डिस्ट्रिक्ट में खेसारी के लिए, वो जो अच्छा काम हुआ था वो देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगले 2019 के दिसंबर महीना से हम लोग 6 एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट आकांक्षित डिस्ट्रिक्ट होता है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हम लोग को प्रोग्राम दिया था। जैसे 6 डिस्ट्रिक्ट था हमारा, अभी भी वहाँ पर काम भी चल रहा है, अरारिया है, औरंगाबाद है, बांका है, कटिहार है, खगड़िया और पूर्णिया है। और अब इस सब डिस्ट्रिक्ट में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये सब डिस्ट्रिक्ट में हम लोग, जैसे मान लिया अरारिया में हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए बिहार में हमारा मखाना एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और हमारा यूनिवर्सिटी के द्वारा एक इम्पोर्टेंट वैरायटी भी हम लोग डेवलप किए सबर मखाना 1। तो सबर मखाना 1 हम लोग किसान के पास लेके जा रहे हैं। अभी अरारिया में 25 हेक्टर एरिया में हम लोग डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, और अब एक आप लोगों को पता होगा बिहार में

0: केला का खेती भी बहुत होता है, तो केला में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो उस आधार पर देखते हुए हमारा यूनिवर्सिटी का भी टिश्यू कल्चर बनाना का लैब है, तो हम लोग टिश्यू कल्चर बनाना प्रोडक्शन करते हैं और केले का पौधा हम लोग किसान बंधु को देते थे। और अरारिया में 10 एकड़ हुआ था। और एक चीज देखिए, एक गोट है, जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं बकरी, बकरी एक ATM हम लोग बोलते हैं, तो बकरी का भी कुछ इम्पोर्टेंट रोल है किसान का फाइनेंशियल डेवलपमेंट करते करने के लिए। तो अरारिया में हम लोग बकरी का साइंटिफिक जो बकरी पालन होता है उसके बारे में भी हम लोग किसान बंधु को सपोर्ट करते हैं। और औरंगाबाद में चल रहा है हमारा उसी तरह का, जैसे केला का खेती चल रहा है 10 एकड़ में, मशरूम भी हम लोग करते हैं। देखिए आज मशरूम ऐसा एक जगह हमारा बिहार में पहुंच गया, बायोटेक किसान के आधार पर बहुत महिला किसान जो उद्योग के आधार पर आगे बढ़ गए हैं, वो लोग अच्छा कमा भी रहा है। हम लोग मशरूम कल्टीवेशन में भी किसान को सपोर्ट करते हैं और औरंगाबाद में हम लोग गोट फार्मिंग के भी सपोर्ट कर, इस आधार पर देखेंगे तो जो 6 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग किसान बंधु को सपोर्ट करते हैं। और बी कीपिंग भी हम लोग कराते हैं, जो मधुमक्खी पालन है वो मधुमक्खी पालन भी कराते हैं। आपको पता होगा हमारे यूनिवर्सिटी में बी कीपिंग का एक प्रोसेसिंग का यूनिट भी है और उसमें भी हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में भी सपोर्ट कर रहे हैं।
1: जी, तो ये कुछ कार्यक्रम है जो हमारे विश्वविद्यालय में चल रहा है। और आगे इस दिशा में अगर हम आकांक्षी योजनाओं के बारे में बात करें तो थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में भी दें।
0: हाँ देखिए, आकांक्षी एरिया में हम लोग कैसे किसान बंधु को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम एक्टिविटी जैसे आपको बताया था ना, जैसे केला के बारे में, केला का जो G9 वैरायटी का जो पौधा होता है ना, वो पौधा हम लोग किसान बंधु को देते हैं, उसका किसान बंधु को खाद भी देते हैं, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल जैसे कीड़ा वगैरह को कंट्रोल करने के लिए उसके लिए भी किसान बंधु को सपोर्ट करते हैं, पन्नी भी देते हैं और मल्चिंग मटेरियल भी देते हैं। वो नहीं, उसके साथ साथ देखिए हमारा हर KVK में दो यंग प्रोफेशनल है, वो लोग किसान के पास जाते हैं, रेगुलरली विजिट करते हैं, साइंटिस्ट भी जाते हैं, किसान का कुछ ही तरह का प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होता तो किसान को सपोर्ट करते हैं। उसी तरह से जैसे मधुमक्खी पालन में हम लोग किसान बंधु को बी बॉक्स देते हैं, फ्रेम देते हैं, फाउंडेशन सीट देते हैं, सुपार्ट देते हैं, एम्प्टी बॉक्स भी देते हैं। तो इस तरह हम लोग बी कीपिंग के आधार पर किसान को सपोर्ट करते हैं। और मशरूम में हम लोग किसान बंधु को देते हैं जैसे स्पॉन देते हैं, सबस्ट्रेट देते हैं, पीपी बैग देते हैं, फॉर्मालिन देते हैं, हैंड स्प्रे देते हैं। तो इस तरह किसान बंधु को हम लोग सपोर्ट करते हैं। और जो बाकी जैसे गोट के आधार पर, गोट के भी हम लोग जैसे डीवार्मिंग करने के लिए, वैक्सीनेशन करने के लिए, और जो बच्चा होता है बकरी का बच्चा वो भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। और रेगुलरली जैसे होता है किसान के लिए एक प्रॉब्लम होता है बकरी पालन में, जो फोडर का प्रॉब्लम होता है, तो उस आधार पर हम लोग पेरिनियल जो फोडर कल्टीवेशन करने के लिए भी किसान को हम लोग सपोर्ट करते हैं। पेरिनियल फोडर मतलब जो देखिए कोई को क्या क्या होता है ना, लीन पीरियड के समय जब होता है किसान को बकरी के लिए खाना नहीं मिलता, उस समय हम लोग सपोर्ट करते हैं। और उसके साथ UAMB ब्लॉक बोलते हैं, एक मिसाल फीड मटेरियल हम लोग डेवलप किए हैं, हमारे साइंटिस्ट लोग ने यहाँ का लोकल के आधार पर जैसे जरूरत पड़े उसी तरह उसको मॉडिफाई भी किया है और उसके आधार पर किसान लोगों को हम लोग सपोर्ट भी करते हैं। और दूसरा जो मखाना जो आबादी होते हैं, जो सबर मखाना जो वन का जो प्रभेद है वो हम लोग किसान को देते हैं और कुछ खाद भी देते हैं, इंसेक्टिसाइड भी देते हैं। और रेगुलरली हमारा जो साइंटिस्ट है वहाँ पर किसान के जगह पर विजिट करते हैं।
1: जी, तो ये कुछ बातें हैं जो बायोटेक किसान हब के आधार पर किसानों को सपोर्ट किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब, कृषि उद्यमिता के विकास के लिए और क्या कुछ कार्य हो रहा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
0: हाँ देखिए, प्रोडक्शन के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है किसान बंधु के पास उसका मार्केट का सेलिंग करना, मार्केट तक पहुँचना, प्रोडक्ट को बेचना सबसे बड़ा चैलेंजिंग होते हैं। देखिए हमारा सबसे ज्यादा जो बायोटेक किसान आपका मेन टारगेट था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को सपोर्ट करना। देखिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का इंडिविजुअल लेवल में मार्केट में बार्गेनिंग करने का पावर ज्यादा नहीं रहते, तो उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मोस्टली हम लोग क्या किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। टोटल हम लोग 34 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं किसान बंधुओं का। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो सदस्य है उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और उन लोगों को इकट्ठा करके करते हैं, उसके आधार पर प्रोडक्ट बेचने का बंदोबस्त करते हैं। जैसे हम मान लीजिए मशरूम एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, देखिए रॉ मशरूम जो होता है जिस दिन का प्रोडक्शन उस दिन नहीं बेच पाते तो किसान के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, उसके आधार पर हम लोग कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट उन लोगों को सपोर्ट किए, जैसे मशरूम का बिस्किट, मशरूम का पाउडर, उसका अचार व पिकेल जो बोले, ड्राई सूप, इस तरह प्रोडक्ट डेवलपमेंट किसान को सपोर्ट भी किए। और शायद के बारे में, हानि के बारे में, हम देखिए हमारा यूनिवर्सिटी में प्रोसेसिंग यूनिट है, तो किसान को हम लोग प्रोसेसिंग कैसे करना चाहिए उसको सिखाते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन का भी बंदोबस्त करते हैं। करने के बाद

0: से बॉटलिंग करके और का प्रोजेक्ट के लोगों के आधार पर प्रोडक्ट को हम लोग ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांडिंग करके लोकल मार्केट और डिस्टेंट जो मार्केट है उस जगह पर बेचने के लिए भी सपोर्ट करते हैं। और मखान, आप पता होगा मखाना हमारे बिहार में तो ऑलरेडी एक नॉन प्रोडक्ट है, नॉन क्रॉप है, तो और मखाना का बिहार का मखाना का बहुत डिमांड भी है। तो हम लोग मखाने के लिए पहले देखिए किसान लोग क्या करते थे, पहले किसान लोग और जो उसका जो सीड होता है जब प्रोडक्ट मिलता था उसी को जस्ट मिडिलमैन में बेच देते थे। लेकिन अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को उसको कैसे अपना डोर लेवल में प्रोसेस करके पैकिंग करके प्रोजेक्ट का लोगो लगा के मार्केट में बेच सकते हैं, उसके लिए हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें फ़ायदा भी हो रहा है, वो लोग ज़्यादा मुनाफा भी मिल रहा है और उन लोग एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े हुए और अल्टीमेटली उन लोगों को बेनिफिट भी मिल रहा है। और केले के बारे में बताएंगे, केले बहुत ज़्यादा अभी प्रोडक्शन हो रहा है और उसके बेनिफिट भी किसान बंधु को मिल रहा है थोड़ा। तो किसान बंधु, बायोटेक किसान हब हमारा जो सिक्स एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर चल रहा है, तो वहाँ पर किसान को भी सपोर्ट भी मिल रहा है और हम लोग उम्मीद रखते हैं बायोटेक किसान के आधार पर जो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग डेवलप कर रहे हैं, किसान को उसमें मुनाफा तो जरूर मिल रहा है और भविष्य में भी मुनाफा उन लोगों को मिलते रहेंगे। तो इसी बात के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।
1: तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, अगर बायोटेक किसान हब का नाम आप सुनते हैं तो आप समझ जाइए कि क्या कुछ इसके तहत किया जाता है, किसानों के लिए कैसे ये मददगार साबित होता है। आज जितनी भी बातें यहाँ पर आपको डॉक्टर साहब ने बताई हैं तो मुझे लगता है कि अगर आपके मन में बायोटेक किसान हब को लेकर संशय होगा तो ज़रूर खत्म हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप सभी से और भी बातें होंगी इसी फ्रिक्वेंसी पर, 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण।

देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और हर रोज की तरह आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती से जुड़ी बातें। और अभी फिलहाल यहां इस समय परवल जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। नए अगर सब्जियों की बात करें तो उसमें परवल भी शामिल हो जाता है गर्मी के मौसम में। अब यहां पर खेती की बात कर रहे हैं तो इस समय हमारे जो किसान भाई हैं परवल की खेती करके अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे खेती परवल की और क्या क्या सावधानियां बरतनी है हमारे किसान भाइयों को इसकी खेती के दौरान, और भी बहुत सारी बातें परवल की खेती से जुड़ी, इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर ममता कुमारी मैडम। मैं आप सभी को बता दूं, ये वैज्ञानिक हैं KVK सबौर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: थैंक यू अनु।
4: मैडम सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोताओं और किसान भाइयों को परवल की खासियत के बारे में बता दीजिए कि इसमें क्या क्या गुण हैं।
6: परवल एक कद्वरीय सब्जी का महत्वपूर्ण सदस्य है और परवल के बारे में, परवल की बहुत सारी चीज़ें

0: अपने घरों में बनती हैं, जैसे अचार है, सब्जी है, चटनी है, इसका लोग कम तेल मसाला में भी अलग अलग उत्पाद बना करके खाना पसंद करते हैं। खास बात यह है भागलपुर के क्षेत्र के लिए कि भागलपुर में लगभग ये जितना भी दियरा का क्षेत्र है उसका मुख्य फसल परवल है, और यहाँ हजारों एकड़ में परवल की खेती होती है। किसान के लिए आने वाले समय में कद्दूवर्गीय सब्जी का एक महत्वपूर्ण उत्पाद की तरह परवल आता है, और यह नाथनगर, सुल्तानगंज, नाथनगर, सबौर, कहलगांव, पीरपैंती जैसे ब्लॉकों प्रखंडों में परवल की खेती बहुत बड़े भूभाग में की जाती है, और इसमें किसान जो लगाते हैं इसको जब अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में पानी निकल जाता है बाढ़ का, उसके बाद लोग परवल लगाना प्रारंभ करते हैं, और परवल लगाते हैं, परवल के साथ साथ वो करेले के बीज को भी डाल देते हैं। करेले के बीज को डाल देते हैं तो परवल समय के आने के साथ साथ परवल अपना बढ़वार में आता है, लेकिन उससे पहले हमारे किसान हैं जो करेले को एक इंटरक्रॉप की तरह लेकर के उत्पाद ले लेते हैं और करेला का फसल को बेच लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो नीचे में परवल लगाते हैं और ऊपर की तरफ मिर्च लगाते हैं, जैसे वो मिर्च का भी उत्पादन अभी परवल के साथ साथ ले रहे हैं।
1: जी मैडम, अभी क्षेत्र के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार की क्षेत्र होनी चाहिए जहां परवल की खेती हमारे किसान भाई कर पाएं, या फिर जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु कैसा होना चाहिए इसकी खेती के लिए?
0: परवल मुख्यतः सालों भर भी आप रख सकते हैं अगर है, लेकिन चूंकि यह दीरा क्षेत्र में लगता है तो दीरा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित होता है, और जुलाई अगस्त में जब बाढ़ आता है तो किसानों का स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है फलन पे रहता है, फलन के एकदम उत्कर्ष चरम पे रहता है, उस समय हमारे किसान भाइयों का फसल बह जाता है। तो अब आने वाले दिनों में देखा गया है कि बहुत सारा ऐसा गांव है, आप जैसे खैरपुर है, लत्तीपुर है, इन सब गांव में परवल जो है ऊपरी भूमि में भी किसान अब लगाना प्रारंभ कर दिए हैं, जिससे उनको स्वयं का लत मिलना प्रारंभ हो गया है।
1: जी, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए मैडम इसकी?
0: इसके लिए मुख्यतः मिट्टी एक है कि दीरा में बलुआही मिट्टी होती है, और चूंकि परवल जब जमीन पर चलता है तो जहां जहां गांठ होता है वहां वहां से परवल का जड़ें आ जाती हैं, और वो ज्यादा तेजी से फैलाव दीरा वाले क्षेत्र में ही होता है। लेकिन ऐसी ये एक भ्रम के तौर पर ही है, क्योंकि जब ये ऊपरी भूमि में जाने लगे और हमारे किसान इसको अलान पर देने लगे तो इस तरह की समस्याओं का कोई या इस तरह के किसी भी प्रकार का इनपुट वहाँ नहीं रहता है, फिर भी परवल की खेती बहुत अच्छे तरीके से हो रही है।
1: जी, तो यहाँ पर अभी मैडम ने बताया कि परवल आप किस क्षेत्र में उगा सकते हैं, और एक भ्रांति के बारे में भी मैडम ने बताया कि लोग सोचते हैं कि ये बालू वाली जगह पर ही इसका जो है उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन अभी मैडम ने बताया कि किसान भाई अब जो है ऊपर ज़मीन पर भी इसकी खेती कर रहे हैं। तो अब जो खेती हो रही है मैडम परवल की, उसमें बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत होती है, किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं और सुधार कहाँ पर करनी है, तो कुछ ऐसी बातों के बारे में बताइए जब हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं तो सावधानियां उनको बरतनी चाहिए।
0: जी, परवल में सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को सावधानी यह लेनी चाहिए कि किस परवल में नर और मादा अलग अलग पौधों में होता है जी। तो वो नर और मादा का सही अनुपात को मेंटेन करें, सही अनुपात में लगाएं, और अनुशंसित जो है नर मादा का वो 5 नर मादा पे 1 नर लगाना चाहिए, मतलब कि 10:2 के इस अनुपात में किसानों को लगाना चाहिए। लेकिन किसान भाई से जब बहुत सारे किसानों से जब बात मेरी हुई तो किसानों ने अपना जो बताया कि जब हम 5 और 1 पर देते हैं तो नर है जो बहुत तेजी से फैलता है और मादा को छा ये कर देता है, ढकने का प्रयास करने लगता है। उस केस में किसानों ने अपना 1:9 का रेशियो अनुपात में लगाया, 1 नर और 9 मादा, तो उनको उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। पहला सावधानी ये है। दूसरा सावधानी क्या होता है कि नर और मादा का अनुपात सही मायने में नहीं रखा जाता है तो परागण की क्रिया सही सही नहीं होती है, और जब परागण की क्रिया सही नहीं होती है तो फल है जो सही अनुपात में लगता नहीं है, जो उनको एक उत्पादन प्राप्त होना चाहिए, हमारे किसान भाइयों को

0: साधन नहीं प्राप्त होता है। दूसरा क्या होता है कि फल में परागण हो भी जाता है और सही परागण तरीके से नहीं हो पाता है तो छोटे छोटे फल सड़ करके गिरना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे किसान को ही कहीं ना कहीं हानि होती है। किसान इस तरह का अनुपात को पहला मेंटेन करें। दूसरा चीज है कि परवल के बारे में कि परवल में सफेद फूल होता है, सफेद फूल होता है तो होता क्या है कि परवल में फल मक्खी की भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं
1: जी।
0: तो किसान को लाइट ट्रैप पर जाना चाहिए, किसान को परवल में लाइट ट्रैप जरूर लगाएं जिससे फल मक्खी से उनको निदान प्राप्त हो जाता है
1: जी।
0: तीसरी समस्या आती है कि चूंकि यह दीरा में ज्यादा लगाया जाता है और दीरा में गंगा जी की मिट्टी में निमाटोड का बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहा है, जड़ों में गांठ हो जाती है परवल में, और जड़ में गांठ होने जाने के कारण जो पोषक तत्व हैं सारा ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है, और जब पौधा फलन में आता है तो पौधे का जो मांग होता है वो बढ़ जाता है, और उस स्थिति में क्या होता है कि पूरा का पूरा लत सूख जाता है फलन पर आने वाली अवस्था में। तो किसान भाइयों को चाहिए कि उसमें नीमयुक्त खली का उपयोग करें, नीमयुक्त कीटनाशक का प्रयोग करें, और साथ साथ गेंदा को अंतर्वर्ती फसल के तौर पर परवल में लगाएं, सरसों को अंतर्वर्ती फसल के तौर पर परवल में लगाएं, जो कि प्राकृतिक रूप से निमाटोड का नियंत्रण हो जाता है
1: जी। मैडम, अभी बाजार में जब हम परवल खरीदने जाते हैं तो दो किस्म के परवल हमें देखने को मिलते हैं, एक डार्क ग्रीन और एक हल्का ग्रीन, और एक में वाइट धारीदार भी रहते हैं, तो इसमें क्या अंतर है, क्या बीज से ये अंतर उत्पन्न होती है या फिर क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: परवल की कई प्रजातियां हमारे यहाँ लोकल में लगती हैं, जैसे स्वर्ण रेखा लगती है, स्वर्ण रेखा,
1: तो कौन सी किस्म हमारे क्षेत्र के लिए बहुत मतलब किसान भाइयों को बीज जो है वो चयन करना है?
0: हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक, जो कि बिना धारी वाला होता है, थोड़ा चमकीला होता है, हल्के रंग का होता है,
1: इसको बहुत ज्यादा
0: करता है स्वर्ण रेखा, काफी दिनों से हमारे यहाँ लग रहा है। बहुत सारी लोकल प्रजातियां हैं, जैसे निमिया है, डंडाली है, ये सब भी किसान लगा रहे हैं। और मुख्यतः किसान परवल का जो लत है बाढ़ में बह जाने के कारण बंगाल से ला रहे हैं, गया से ला रहे हैं, समस्तीपुर से ला रहे हैं, तो किसान अपने द्वारा बहुत सारे ऊपरी भूमि में भी रखे हुए हैं, तो किसान लोकल भी इसकी आपूर्ति करना प्रारंभ करती है
1: जी। तो किसान भाइयों, अभी आप जान रहे थे परवल की खेती आपको कैसी करनी चाहिए और क्या कुछ सावधानियां जो मैडम ने बताई, वो बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इससे आपको हानि बिल्कुल भी नहीं होगी और मुनाफा, आपके उत्पादन में अधिक मुनाफा मिलेगा आपको। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे, फ्रिक्वेंसी यही है, याद रखिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ FM ग्रीन। नमस्कार। उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, सभी के लिए आप सभी के बीच लेकर आ गए हैं खास विषय। गर्मी का मौसम आ चुका है और ऐसे में पशुओं की खास देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है, उनके आहार की, उन्हें समय समय पर आप किस तरह के आहार दे रहे हैं,

0: चारा दे रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और आज हम एक खास विषय लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पशुओं को उपचारित भूसा खिलाने के महत्व के बारे में। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, जो कि पशु वैज्ञानिक हैं केवीके बांका से, और आज वो बहुत सारी जानकारी आपको देंगे उपचारित भूसा के बारे में कि कैसे आप खिलाएं, क्या महत्व है इसका, अगर आप पशुओं को खिलाते हैं तो क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि ये उपचारित भूसा क्या होता है।
1: एक्चुअली हमारे पशुपालक जो भूसा को खिलाते हैं ना, लेकिन भूसा को खिलाते हैं तो उसमें पौष्टिकता कम होती है, सुपाच भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो उसको हम लोग उपचारित करते हैं, बहुत सारे केमिकल रसायन से उपचारित करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है जो यूरिया से उपचारित करने की, तो यूरिया से उपचारित जो करते हैं उसी भूसा को जब पशु खिलाते हैं उसको उपचारित भूसा कहते हैं।
0: जी, उपचारित भूसा आपने जाना कि क्या होता है और इसके खिलाने के क्या कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं।
1: एक्चुअली जब हम किसी चीज़ से उपचारित करते हैं, एग्जांपल ले ले, हम लोग यूरिया उपचारित की बात कर रहे हैं, यदि यूरिया से उपचारित करते हैं तो इसमें क्या होता है, वो जो भूसा है वो ज़्यादा सुपाच हो जाती है। जैसे कि मक्के की डंठल हो गई या चावल का छिलका हो गया, धान का छिलका, यदि इसको उपचारित कर देते हैं तो ये मुलायम हो जाती है, मतलब अधिक पलेटेबल, अधिक स्वाद लेकर पशु खाती है। इसके साथ साथ इसमें पौष्टिकता भी बढ़ जाती है, तो ये सब काफ़ी फायदे हो जाते हैं, मतलब उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इसलिए
0: पौष्टिकता इसमें बढ़ जाती है और सुपाच्य हो जाता है, आसानी से पचने वाले पशुओं के लिए। जी, तो डॉक्टर साहब, अब तो अगर इसे खिला रहे हैं अपने पशुओं को हम, हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई, तो क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए उपचारित भूसा को खिलाने समय?
1: एक्चुअली है क्या कि यदि उपचारित भूसा, यदि यूरिया से उपचारित करके खिला रहे हैं, इसके जो नियम है इसके अंतर्गत है कि उपचारित किए हैं तो 21 दिन के बाद ही इसको खिलाना है ना। अच्छा। तुरंत खिलाएंगे तो यूरिया के कारण हानि भी कर सकती है, तो 21 दिन के बाद खिलानी है। और इसमें क्या होता है, जानवर जो खाती है उसमें उसका स्वाद बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, उसकी गंध जो निकलती है, तो इसके कारण अमोनिया गंध निकलती है, जिसके कारण शुरुआत में खाना कम पसंद करती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भूसा उपचारित भूसा है उसको आधे घंटे के लिए कम से कम बाहर में बिछा कर छोड़ देना, किसी पेपर पे या प्लास्टिक बिछा कर छोड़ देना,
0: या धूप में,
1: शेड में है। अच्छा। शेड में है या धूप ही थोड़ा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कहीं पर ही बिछा देना ताकि केवल उसका गैस निकल जाए। वो गैस निकल जाने के बाद आप उसको, हाँ, उसकी गंध निकल जाए, उसके बाद आप अपने पशु को खिला सकते हैं। और उपचारित करने समय खासकर ध्यान देने की जरूरत है कि जो घोल बना के रखे हैं उसको जानवर डायरेक्ट पी नहीं जाए, इसकी सावधानी रखने की जरूरत है और बच्चों से दूर रखने की जरूरत है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि मतलब डायरेक्ट ना पी जाए, तो फिर कैसे पिलाना होगा उन्हें?
1: नहीं, उसको पिलाना नहीं बल्कि उस घोल से उसको उपचारित करना है।
0: अच्छा,
1: और इसको उपचारित करने के जो तरीके हैं वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपके पास भूसा है तो 100 किलो भूसा लेंगे, 100 किलो भूसा के लिए मात्रा जो बता रहे हैं, 100 किलो भूसा किसी चीज का, या तो पुआल की कुट्टी हो, या गेहूं का भूसा हो, या मकई का डंठल हो, या मकई की बलरी हो, सभी चीज का आप यूरिया उपचारित कर सकते हैं। इसको करने के लिए 100 किलो भूसे के लिए आपको 4 किलो यूरिया लगेगी, है ना। 4 किलो यूरिया का 40 लीटर पानी में घोल बनानी है, 40 लीटर पानी लेंगे उसमें 4 किलो यूरिया डाल देंगे, उसका बढ़िया से डंडे से घुमाकर घोल लेंगे, एक घोल तैयार होगी। उसके बाद क्या करना है, उस 100 किलो भूसे को एक प्लेन सरफेस पे बिछा देना तो उसकी जो भूसे हैं उसकी मोटाई, जो थिकनेस होती है वो लगभग 6 इंच की होनी चाहिए, है ना। इतनी मोटा में बिछा दिए, उसके बाद उसके बराबर मात्रा में हाथ से भी या कोई छलनी लेकर उस पर छिड़क देना है। बराबर मात्रा में छिड़क दिए तो 100 किलो भूसा के लिए हो गया। फिर से दूसरा 100 किलो भूसा लेना, उसी पर दूसरे परत के रूप में बिछा देनी है, और अलग से फिर से 4 किलो यूरिया और 40 लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़कना है। इसी तरह तह पे तह बनाते जाएंगे, उसके बाद दो आदमी उस पर चल के उसको बैठाएंगे, दबाएंगे, मतलब कि अच्छी तरह से पैक हो जाए। इस तरह से मान लिया कि 1 टन भूसे को उपचारित करना था तो 10 परत बनेगी, 10वां परत समाप्त हो जाती है। उसके बाद एक प्लास्टिक ले लें, उससे ऊपर से ढक दें। यदि प्लास्टिक की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो नॉर्मल पुआल जो होते हैं, सूखा पुआल, वो भी डाल दे सकते हैं, उसके ऊपर जूट का बोरा या प्लास्टिक का बोरा रख दें। इस प्रकार से उसको 21 दिन के लिए छोड़ देना। 21 दिन के बाद क्या होगा कि ये जो भूसा है वो देखिएगा थोड़ा कलर डाउन हो जाएगी, लेकिन रंग उसकी डाउन हो जाएगी, भूरा टाइप पर थोड़ी हो जाएगी, लेकिन बहुत मुलायम हो जाएगी और सुपाच हो जाती है। अब इसको खिलाने के लिए वही करना है कि आधे घंटे के लिए बाहर छोड़ देना है।

0: धीरे धीरे करके पशु को आदत लगानी इसको खिलाने के लिए। इसके कारण होती क्या है, एक्चुअली भूसा जो होती है उसमें लिग्निन रहता है, सेलुलोज लिग्निन बॉन्ड, लिग्नो सेलुलोज बॉन्ड रहती है, उसके कारण सुपाच नहीं रहती है। अब ये यूरिया जो डाले इससे अमोनिया गैस बनती है, वो अमोनिया गैस उसको तोड़ देती है जिसके कारण ये मुलायम हो जाती है और ये नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है। मतलब कि जिस भूसे में प्रोटीन की मात्रा मात्र 2 से 2.5% तक होती है, वो बढ़ के 6 से 7% हो जाती है। मतलब कि प्रोटीन की मात्रा 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है, यानी आपके पशु को प्रोटीन सस्ते में उपलब्ध हो जाएगी और सुपाच हो जाएगी। खास करके मक्के का डंठल या चावल का छिलका, जो धान का छिलका है, वो यदि पशु नहीं ऐसे खा रहे हैं उसको यूरिया उपचारित करके खिलाइए, बहुत अच्छी तरह से खाएगी और उसको पौष्टिकता भी अधिक मिलेगी
1: जी। और अगर मान लीजिए कि हम गाय और भैंस को खिलाते हैं और मेन मोटिव है हमारा कि हम दूध का उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या इससे ये जो भूसा जो है उपचारित करके खिलाया जाता है तो क्या वृद्धि होती है दूध में? हाँ,
0: बहुत अच्छा प्रश्न है, खासकर पशुपालकों के लिए, कि यदि आप यूरिया उपचारित करके भूसा खिलाते हैं तो आपको खल्ली मतलब प्रोटीन का सोर्स होता है वो कम देनी पड़ेगी और दूध भी इससे बढ़ेगी। हमारे यहाँ किसान जो पूरी तरह संतुलित रूप में खिला रहे हैं उनको इतना फायदा हो रहा है कि यदि वो 5 किलो दाना खिला रहे हैं पशु को और यूरिया उपचारित भूसा यदि खिलाना शुरू करते हैं, पहले वो प्लेन भूसा खिला रहे थे तो 5 किलो दाना देने की जरूरत पड़ती थी, यदि यूरिया उपचारित भूसा देना शुरू कर दिए हैं तो 5 किलो की जगह मात्र 4 किलो दाना देने से काम चल जाती है। मतलब कि प्रत्येक दिन एक जानवर पर 1 किलो दाना, मतलब कि 24 रुपया की बचत कर ले रहे हैं, यानी 10 गाय उनके पास है, 240 रुपये की प्रत्येक दिन की बचत हो जा रही है, यानी कि महीने में एक लेबर का खर्च बचा ले रहे हैं। और नॉर्मल किसान जिनकी गाय 4 से 5 लीटर दूध दे रही है, वो यदि यूरिया उपचारित भूसा खिलाते हैं तो उनको खल्ली भी देने की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत फायदेमंद चीज़ होती है जिसमें खर्च भी कम है, केवल थोड़ी सी मेहनत है
1: जी। मतलब मेहनत है और जितना ज़्यादा आपका खर्च लगता था अन्य जो भूसे हैं या फिर चारा वगैरह लाने में, उसमें भी ये अगर उपचारित भूसा खिलाते हैं तो उसमें भी कमी आएगी, है ना?
0: हाँ, इसमें भी कमी आती है और खास करके इसके संग्रह करने में बहुत किसान भाइयों की हेल्प मिलेगी। इसलिए हेल्प मिलती है कि इसको जब दबा कर हम रखते हैं ना, तो इसके कारण क्या होते हैं, जिस जगह पे आप 1 टन भूसा रख पा रहे थे वहां पर अब 2 से 2.5 टन भूसा आप रख पाएंगे।
1: ये हल्का होता है,
0: ये चूंकि ये बहुत ज्यादा पैक हो जाती है, अच्छा। हल्का होने कारण कम अटती थी, लेकिन अब इसको पानी की मात्रा मिल गई और 2 आदमी मिलकर चढ़ के दबा रहे हैं, जिसके कारण क्या होती है कम जगह में ज्यादा स्टोर कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ इसमें अमोनिया की जो गंध होती है जिसके कारण इसमें चूहे नहीं लगते हैं, अच्छा। और कोई भी फंगस नहीं लेंगे, कीड़े नहीं लेंगे। पशुपालक भाई को जब ये उपचार करने के तरीके बताए जाते हैं तो उनको 2 तरह की परेशानी नजर आती है। एक तो होती है कि 4 किलो यूरिया मिला रहे हैं इसके कारण मेरे जानवर को कुछ हो तो नहीं जाएगी। दूसरी परेशानी रहती 40 लीटर पानी मिला रहे हैं तो सड़ तो नहीं जाएगी मेरी भूसे। तो एक किसान पशुपालक भाई ये आपको बता दें कि जो 21 दिन के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं तो यूरिया नहीं रह जाती है। आप लोग सभी जानते हैं जब पानी में यूरिया को मिलाई जाती है तो अमोनिया गैस बन जाती है, वही अमोनिया गैस उस भूसे में रहती है, इसलिए उससे डरने की बात नहीं है। और दूसरी बात, पानी जो मिला रहे हैं इसमें अमोनिया गैस के कारण इसमें फंगस तक नहीं लगेंगे, आप इसको 2 साल 4 साल तक भी संग्रह कर सकते हैं। इसमें चूहे भी नहीं लगेंगे, जो कि आपकी समस्या होती है चूहे लगने की। केवल परेशानी एक ही चीज आपकी आएगी कि जो भूसे में आप अनाज गेहूं ये सब अंदर में रखते हैं वो नहीं रख पाएंगे यदि यूरिया उपचारित भूसा करते हैं तो। बाकी स्टोर करने, संग्रह करने के लिए बहुत अच्छा तरीका भी है।
1: तो सर ये कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं?
0: इसको पैक करके रख सकते हैं 2 साल 4 साल तक आराम से रख सकते हैं, मतलब कह सकते हैं 5 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं यदि आप ऊपर से पैक करके रख सकते हैं कि अमोनिया गैस बाहर नहीं निकल जाए। यदि पूरे खुले में कर रहे हैं प्लास्टिक से नहीं ढक पा रहे हैं तो 1 साल तक आराम से आप रख सकते हैं, यदि प्लास्टिक से बढ़िया से पैक कर दिया तो 5 साल तक कोई समस्या नहीं आएगी आप
1: जी। तो किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों, आज उपचारित भूसा के बारे में आपने जाना। डॉक्टर साहब, ज़्यादा से ज़्यादा कोई संदेश आप हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों को देना चाहेंगे?
0: पशुपालक भाई को हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग की जो पशुपालन में सबसे अधिक खर्च होती है वो खिलाने पे खर्च होती है, तो हम लोग ये कोशिश करें कैसे कम खर्च में अधिक पौष्टिकता अपने पशु को उपलब्ध करा पाएं। इसके लिए नई नई तकनीक आती है, जैसे भूसे को यूरिया उपचारित करके खिलाना, मक्के को डंठल को खिलाना, ये सब तरीके अपनाएं और नई तकनीकें जो पशुपालन में है उसका उपयोग करके हम लोग आधुनिक रूप से पशुपालन करें, तभी हम लोग फायदा ले सकते हैं।
1: और अगर आप बांका के आसपास हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र बांका भी जा सकते हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र सर से आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप आपके पशु को लेकर

कुछ भी समस्याएं हो रही हैं तो आज के लिए रेडियो वार्ता में तो इतना ही। अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे आप सभी के बीच। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए

और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओ, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोले।

गांव गणेश धाम परसुरी पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलाऊ दास जय दास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से

हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओ, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना? लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओ, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि ये नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओ, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओ, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओ, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओ, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओ, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों के दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओ, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। 8

0: 1-800-44-55-9 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया, माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: क्या करेगी इनका तू है?

0: बस्सी, तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल घर चल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।
1: नहीं, वो

0: उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।
2: बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, बेटी तू बसंती, उदास मत हो। उदास ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। अद्भुत यात्रा साबित इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको। जीवन को तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी, अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।

0: लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांज के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा।
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो।
4: चलो
3: चलो
4: चलो,
3: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांवों में महिला

मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के

आम है या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण

भी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों, इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाले सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमिथो 8 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट और पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव

इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह, वैज्ञानिक, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। आज जो जानकारी लेकर आए हैं वो है बहुउपयोगी मसाला हल्दी की खेती के बारे में। आज इसके बारे में जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद मैम।
0: आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हल्दी का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है और इसके फायदे क्या क्या है।
2: जैसा कि हमारे किसान भाइयों को पता है कि हमारे दैनिक जीवन में हल्दी का बहुत ज़्यादा उपयोग है। जैसे मसालों में हल्दी भारत की धरोहर है। प्राचीन काल से ही भारतवासी हल्दी का इस्तेमाल दाल, सब्जी, चटनी, अचार तथा अन्य भोज सामग्रियों को लुभावना तथा सुनहरा रंग प्रदान करने के साथ ही साथ विशेष प्रकार के सुगंध भरने के लिए करते हैं। भारतीय पकवान तो बिना हल्दी के बन नहीं सकती, और यदि बनता भी है तो उसका रंग फीका दिखता है तथा स्वाद में भी फीका पड़ जाता है। राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिकों के अनुसार हल्दी में कैंसर रोधी गुण विद्यमान है। शायद हल्दी के इन्हीं गुणों के कारण भारतीय लोग आदिकाल से हल्दी का इस्तेमाल भोजन में करते आ रहे हैं। प्राचीन काल से ही हल्दी प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु रही है। शुभ एवं मांगलिक अवसरों पर हल्दी का इस्तेमाल प्रधानता के साथ भारत में किया जाता है। शादी विवाह के अवसर पर हल्दी का उपयोग विभिन्न मांगलिक कार्यों में किया जाता है। घरेलू चिकित्सा पद्धति में हल्दी अनेकों मर्ज की एक अचूक औषधि है। हल्दी का विश्व में कुल उत्पादन का लगभग 86% भारत का हिस्सेदारी है। आंध्र प्रदेश हल्दी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। जहाँ तक मैं ये बता दूँ कि बिहार के भी कुछ जिलों में

0: हल्दी की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं।
1: जी, ऐसे सुना गया है कि हल्दी की खेती में कुछ समस्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं, जरा उसके बारे में बताएं।
0: हल्दी की खेती में किसान भाई उसको ये ना सोचे कि क्या नुकसान होता है, उसका मतलब ये है कि नुकसान के बारे में हम आपको बता दें कि इसका मतलब ये होता है कि हल्दी की फसल को तैयार होने में 8 से 9 महीने का समय लगता है। इस प्रकार यह 2 फसल अवधि ले लेती है। जो हमारे लघु सीमांत किसान हैं, जिनके पास खेत कम है, उनके लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 2 फसल ले लेता है एक हल्दी के क्रॉप। जो हमारे किसान भाइयों उतने टाइम में 2 या 3 फसल ले लेते हैं, इसमें आप एक ही फसल ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हल्दी का बीज दर 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर है, जिसे खरीदने पर काफ़ी खर्च पड़ता है। यदि किसी किसान के पास इसका बीज नहीं है तो उसे बीज का अधिक खर्च करना पड़ता है। तीसरा, हल्दी उखाड़ने के बाद बाजार भेजने से पहले उसका प्रसंस्करण करना पड़ता है, जिससे अधिक श्रम एवं खर्च पड़ता है। चौथा, रोग रोधी अधिक उपज एवं उच्च गुणवत्ता वाले किस्मों के बीज किसानों को नहीं मिल पाते हैं, इसके वजह से हमारे किसान भाइयों इसमें प्रॉब्लम होती है और उसके उपज में उनको नुकसान होता है।
1: जी, तो अब आप किसान भाइयों को हल्दी के उन्नत किस्मों के बारे में बताएं, ताकि वो इसकी खेती अधिक से अधिक लाभ उठा सकें इसकी खेती में।
0: हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट में, हमारे खुद के स्टेट में राजेंद्र सोनिया एक ऐसी वैरायटी है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा ढोली से इसको निकाला गया है। इसकी खेती के लिए हल्दी की उपज क्षमता 8 टन प्रति हेक्टेयर है। यह 210 दिनों में तैयार हो जाती है। इसमें करक्यूमिन, जो उसका पीलापन होता है, रंग रसायन जो उसमें पाया जाता है, उसकी मात्रा 8.5% होती है। उसी प्रकार बहुत सारी वैरायटी हैं, सोना, शोभा, कांथी, NDH-18, NDH-19, जो कि ND यूनिवर्सिटी अयोध्या से निकाली गई है, प्रतिभा, स्वर्णा, इन सभी वैरायटियों को हमारे किसान भाइयों लगा करके अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं।
1: हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है, और इसकी खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है, और खेत की तैयारी कैसे करेंगे?
0: हल्दी की फसल खेत के लिए गर्म एवं नम जलवायु सर्वोत्तम होती है। औसत वार्षिक वर्षा 900 से 1000 मिलीमीटर उपयुक्त होती है। बुआई तथा जमाव के समय कम वर्षा तथा पौधों के वृद्धि एवं विकास के समय अधिक वर्षा चाहिए। फसल परिपक्वता अवधि में शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। और जहाँ तक हम भूमि की बात करें, हल्दी के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें जल निकास का उचित प्रबंध हो तथा मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी की हम बात करें, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के उपरांत 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करके पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। अंतिम जुताई के समय 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खेत में बराबर मात्रा में डालकर मिट्टी में भली भांति मिला दें।
1: तो आपने अभी हल्दी के किस्मों के बारे में बताया, साथ ही साथ जलवायु के बारे में भी जानकारी दी। अब आप हल्दी के बीज उपचार, बुआई का समय, बीज दर और बुआई की दूरी और गहराई के बारे में बताएं।
0: जहाँ तक हम बीज उपचार की बात करें किसान भाइयों से, तो बीज उपचार हम हल्दी के केस में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हल्दी की बुआई के पूर्व प्रकंदों की फफूदीनाशक इंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम अथवा कार्बेंडाजीन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर बना लें। घोल के में कंदों को 60 मिनट लगभग 1 घंटा तक डुबोकर रखने के बाद छाया में सुखाकर 24 घंटे बाद ही बुआई करनी चाहिए। बुआई का समय, हल्दी की बुआई के समय पर इसकी उपज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को 15 मई से 15 जून तक इसकी बुआई अवश्य कर देनी चाहिए। और बीज उपचार की हम जहाँ तक बात करें, बीज की मात्रा प्रकंदों के आधार पर निर्भर करता है। यह मुख्य रूप से स्वस्थ व रोग मातृ प्रकंद एवं प्राथमिक प्रकंदों को ही बीज के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ऐसे प्रकंद जिसका वजन 20 से 25 ग्राम हो तथा प्रत्येक प्रकंद में 3 से 4 आँखें, जिसको हम बांड भी बोलते हैं, के बीच के लिए

0: अच्छा माना जाता है। बुआई की दूरी तथा गहराई, अच्छी उपज के लिए बीज बुआई हेतु कतार से कतार दूरी 30 सेंटीमीटर तथा प्रकंद से प्रकंद की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं। प्रकंदों की बुआई 5 सेंटीमीटर गहराई में की करनी चाहिए।
1: अब इसके लिए खाद एवं उर्वरक प्रयोग की मात्रा, सिंचाई एवं जल निकास और निकाई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताएं।
0: खाद एवं उर्वरक, हल्दी की फसल अन्य फसलों की अपेक्षा भूमि से अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। खेत की अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें। रासायनिक उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन 150 किग्रा, फास्फोरस 60 किग्रा तथा पोटास 120 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की आधी मात्रा तथा नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा खेत में अंतिम जुताई के समय दें तथा किसान भाई एक चीज़ें और ध्यान दें कि नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा बुआई के 35 से 40 दिन बाद तथा नाइट्रोजन की शेष एक तिहाई मात्रा, पोटास शेष आधी मात्रा बुआई के 75 से 80 दिन के बाद दें। सिंचाई एवं जल निकास की हम बात करें तो हल्दी की फसल को पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। मिट्टी की सिंचाई, जलवायु, भूमि की संरचना, वर्षा तथा पलवार जिसको हम मल्चिंग भी कहते हैं के अनुसार 10 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर की जाती है। प्रकंदों में के जमाव व वृद्धि विकास के लिए समय समय पर सिंचाई करना बहुत ही जरूरी है। और हम निकाई गुड़ाई और खरपतवार के बारे में हम बता दें आपको कि हल्दी के खेत में पत्तियों की पलवार जैसे मल्चिंग, जिसे हम मल्चिंग कहते हैं, लगाने से काफ़ी हद तक खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। हल्दी की फसल में प्रायः 3 बार गुड़ाई करने से खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ प्रकंदों में वृद्धि एवं विकास अच्छे तरीके से होती है, जिससे हमारे किसान भाइयों प्रथम गुड़ाई बुआई के 30 दिन बाद, तृतीय बुआई के 60 दिन बाद तथा तृतीय 90 दिनों के बाद करें।
1: अंत में आप इसमें मुख्य रूप से लगने वाले कीट एवं बीमारियों और इनसे सुरक्षा के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें, साथ ही हल्दी का प्रोसेसिंग हम कैसे कर सकते हैं उनके बारे में बताएं।
0: हल्दी में मुख्य कीट हम किसान भाइयों को बता दें और इसका नियंत्रण हम बता दें कि हल्दी में जो पहला कीट है दीमक या कजरा पिल्लू, यह दोनों कीट पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। पौधों के प्रारंभिक अवस्था में कजरा पिल्लू जमीन की सतह से पौधे को काट देता है। इससे बचाव हेतु दानेदार फोराडान 3G कीटनाशी दवा का 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयारी के समय ही मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। दूसरा है तना छेदक, यह कीट छेद करके भीतर घुस जाता है तथा पत्ते को खोखला बना देता है, जिससे पौधा मर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए इमेमेक्टाक्लोर बेंजोएट कीटनाशी दवा का 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तीसरा है थ्रिप्स, इसका उपयोग, यह कीट पौधे के हरी पत्तियों को चूसता है तथा पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोफीड कीटनाशी दवा का 1 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। हल्दी के कुछ प्रमुख रोग एवं नियंत्रण है। प्रकंद विगलन रोग, फसल के प्रारंभिक बढ़वार के अवस्था में पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं तथा जमीन के ऊपर का तना गल जाता है। भूमि के भीतर का प्रकंद भी सड़कर गोबर की खाद की तरह हो जाता है। यह बीमारी जल भराव वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। रोगग्रस्त बीज प्रकंद बोने पर ही यह रोग लग जाता है। इसके नियंत्रण हेतु खेत में पानी नहीं रुकने दें तथा कापर ऑक्सीक्लोराइड फफूंदी नाशक दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों के जड़ों के पास भिगोएं तथा पौधों पर भी इसी घोल का छिड़काव करें। स्वस्थ प्रकंद की बुआई करें और इससे आप नियंत्रण कर सकते हैं। और तीसरा ये है पूर्ण धब्बा रोग या पर्ण चत्ती रोग, इसके नियंत्रण के लिए भी मैंकोजेब फफूदी नाशक दवा का 200 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल

0: बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर इसका छिड़काव करें और इसको इससे नियंत्रण पाएं। इसका प्रसंस्करण जो है हमारे जो किसान भाइयों को मैं बता दूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हल्दी की खेती करने के बाद आप उसे करेंगे क्या, उसका क्या कर सकते हैं आगे, उसमें है प्रकंदों को पहले उबालें। इसमें करते क्या है, सर्वप्रथम लंबी तथा गोली प्रकंदों को अलग अलग काट लिया जाता है। इसके उपरांत लंबी प्रकंदों को अलग तथा गोले प्रकंदों को अलग अलग उबाला जाता है। प्रकंदों को एल्युमिनियम या मिट्टी के बर्तन में उबालना चाहिए। प्रकंदों को बर्तन में सुखाने के बाद ऊपर से पानी भर दिया जाता है ताकि प्रकंद पानी में डूब जाएं तथा बर्तन में मुंह पर धान या कापुआल या हल्दी के सूखी पत्तियों की परत रख कर ढक्कन से ढक दें। इसके बाद उसे धीमी आँच में उबलने दें। लंबे गाँठ 1 से 2 घंटे में तथा गोले गाँठ 2 से 2.5 घंटे में पूर्ण रूप से पक जाते हैं। जब बर्तन के मुंह से पीला पीला हल्दी के रंग का झाग निकलने लगे तथा हल्दी का गंध आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हल्दी के प्रकंद पूरी तरह से पक चुके हैं। दूसरा है उबले प्रकंदों को सुखाना। उबले प्रकंदों को सुखाने के लिए प्रकंदों को त्रिपाल या पक्की साफ सुथरा जगह पर धूप में पतली परत में फैला दिया जाता है। इस प्रकंदों को शाम के समय जमा कर त्रिपाल से ढक देते हैं ताकि रात में उस पर ओस न गिरे। हल्दी की उबली प्रकंद लगभग 10 से 15 दिनों में सूखकर तैयार हो जाती है। अच्छी प्रकंद से सूखी प्रकंद बिल्कुल सख्त तथा तोड़ने पर चट की आवाज़ करनी चाहिए। सूखने के बाद प्रकंदों में नमी 8% से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि उसे लंबी अवधि तक भंडारित किया जा सके। तीसरा है सूखे प्रकंदों का पालसिंग करना, जो उसके चमक को लाता है, जो आप मार्केटिंग में उसको भेजते हैं, जिसका आपको लगता है कि अच्छे हमको वो उपज किए हैं तो अच्छा उसका वो आपको पैदावार मिला है तो उसका अच्छा बेनिफिट मिले, उसके लिए क्या करते हैं कि बाज़ार में हल्दी की अच्छी किस्म लेने के लिए हल्दी को पालसिंग किया जाता है ताकि हल्दी आकर्षक एवं चमकदार दिखे। सूखे प्रकंद को जूट के बोरे या बांस की टोकरी से रख कर रगड़ा जाता है ताकि छिलका मिट्टी का कण तथा छोटी जड़ें बाहर निकल जाएं। अब इसे हल्दी के पाउडर का गाढ़ा घोल बनाकर उसे रंग देते हैं तथा सूखा देते हैं। बड़े पैमाने पर पालसिंग या का कार्य यांत्रिक विधि से किया जाता है। पालसिंग के बाद प्रकंदों को किसी वायुरोधी बड़े डब्बे में भंडारण कर सकते हैं या बाजार में बेच सकते हैं और हमारे किसान भाइयों इससे अधिक से अधिक आय कर सकते हैं।
1: जी तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे हल्दी की खेती के बारे में और आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट

मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम

रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
1: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो सुनो एक

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों, आइए एक बार फिर से आप सभी से हम मुलाकात करने आ चुके हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, जहाँ आप जानते हैं बहुत ही खास बातें, उपयोगी बातें, और आज फिर से बहुत ही खास आपके फायदे की बातें हम लेकर आए हैं। जी हाँ, जहाँ तक खेती की बात होती है तो खेती में हम बहुत सारे चीज़ आपको बताते हैं, उनसे जुड़ी बातें बताते हैं, जिसे आप अपना कर एक सफल किसान बन सकते हैं, चाहे हमारे किसान बहनें हो या भाई हो। फिलहाल यहाँ पर आज का विषय आप सोच रहे होंगे कि क्या होने वाला है, तो आपको बिल्कुल बिना इंतज़ार करवाए मैं बताती हूँ। आज का विषय है आर्सेनिक दूषित मिट्टी में सुरक्षित खेती, और इस विषय पर खास चर्चा के साथ हमारे बीच हैं, जी हाँ बता दें हम, डॉक्टर विष्णुदेव प्रसाद जी, और मैं आपको बता दूं ये हैं सहायक प्राध्यापक बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि केमिकल्स जो हैं वो

0: मानव को तो परेशान कर ही रहे हैं। और साथ ही अगर खेती की बात करें तो यहाँ भी ये अपनी जो कहर हैं वो बरपा रहे हैं। फिलहाल आज का हमारा विषय है आर्सेनिक से रिलेटेड जुड़ा हुआ। तो आज सबसे पहले जानेंगे हम कि आर्सेनिक प्रदूषण क्या है और इसका मानक क्या है।
1: जैसा आपने बताया कि आर्सेनिक का एक भयावह स्थिति में पहुँच रही है, तो आर्सेनिक एक प्रकृति में पाए जाने वाला तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। पानी में आर्सेनिक की मात्रा जो परमिसेबल लिमिट भी बोलते हैं उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 ppb मतलब 10 ppb होनी चाहिए, पर बहुत सारे हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इसकी मात्रा 10 से बहुत ज़्यादा है जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है।
0: जी, तो ये आपने जाना कि ये कैसे आपको प्रभावित कर सकता है। और इसके बाद डॉक्टर साहब अगर बात करें मानव की और फसलों की तो इसका क्या क्या कुप्रभाव इस पर पड़ सकता है?
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं आर्सेनिक एक बहुत ही खतरनाक तत्व है जिससे त्वचा में संक्रमण, फेफड़ों का कैंसर तथा अन्य कई बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। हाल के दिनों में आर्सेनिक प्रदूषित जल का प्रयोग कृषि कार्यों में काफ़ी बढ़ गया है जिससे मिट्टी में इसका संचय हो रहा है। फसल आर्सेनिक को खतरनाक स्तर तक अवशोषित कर रहा है और इन फसलों में आर्सेनिक के कुप्रभाव देखने को मिल रहे हैं और इसके उपयोग से मनुष्य तथा जो हमारे जानवर हैं वो भी प्रभावित हो गए हैं। और उनके जैसे हम लोग फसल खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं, जानवर के मांस खाते हैं या दूध पीते हैं, उससे भी आर्सेनिक हमारे खाद्य श्रृंखला में शामिल हो गई है।
0: यानी कि यूँ कहें कि अगर हम कोई शाक सब्जी खाते हैं, अगर खेती हो रही है तो उसमें भी आर्सेनिक के कुछ जो मात्रा है वो चले जाते हैं,
1: बहुत ज्यादा आ सकती है। तो और जो भी अगर आर्सेनिक कंटामिनेटेड एरिया में जो भी चीज ग्रो हो गई है और उस फसल को अगर हम खाते हैं या दूध के थ्रू हमारे शरीर में आता है तो उससे भी आर्सेनिक का कुप्रभाव हो सकता है।
0: तो इस कुप्रभाव से मतलब जो मानव है उनमें किस तरह की लक्षण या स्थिति दिखाई देती है सर?
1: मानवों में आप देखें हथेली में आर्सेनिकोसिस एक बीमारी होती है जो त्वचा में काले काले धब्बे नजर आते हैं।
0: अच्छा।
1: और उससे फेफड़ों में कैंसर भी बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया है, तो इससे बहुत ही खतरनाक बीमारियां हो सकती है।
0: तो क्या जानवरों को भी ये प्रभावित करता है?
1: हाँ, जानवरों में भी ये प्रभावित करता है, पर उनके लक्षण के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं
0: अभी पता चली है।
1: पर आदमी में, मनुष्यों में ऐसा बहुत ही ज्यादा कुप्रभाव देखने को मिला है।
0: अच्छा, तो सर जब बिहार राज्य की हम बात करते हैं तो आर्सेनिक प्रदूषण की कितनी भयावह स्थिति हमारे बिहार में है?
1: अगर हम ऐसे देखें तो दुनिया में इससे बहुत सारे देश हैं उसमें आर्सेनिक का इफेक्ट है। भारत देश में अगर हम भारत की बात करते हैं तो 7 राज्य ऐसे हैं जिसमें आर्सेनिक का कुप्रभाव देखा गया है। उनमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर हैं। बिहार, अगर हम बिहार की बात करें तो इसमें 18 जिले जो है आर्सेनिक से ग्रसित हैं। उनमें उन जिलों में भोजपुर, सागर, बेगूसराय, भागलपुर, पटना और बक्सर सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वैज्ञानिकों के सर्वे के अनुसार भोजपुर जिले में के कुदरिया गांव में पाया गया है कि सिंचाई जल में 80 ppb तक आर्सेनिक कंटामिनेशन है, जबकि सॉइल में 2.5 मतलब 2.5 ppm तक आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति में है और इसे बचने के उपाय बहुत ही अत्यंत आवश्यक है।
0: तो सर अगर हमारे जो किसान भाई हैं, किसान बंधु हैं, अगर उन्हें पता लगाना हो कि जो उनके खेत में ये समस्या है या नहीं, आर्सेनिक की समस्या है या नहीं, तो वो कैसे पता लगा सकते हैं?
1: जैसा सभी किसान भाइयों को पता है कि आर्सेनिक का कोई गंध नहीं होता, स्वाद नहीं होता, महत्व नहीं होता, तो इसे पता लगाना थोड़ी डिफिकल्ट है। पर आप लोग देखते होंगे कि समय समय पर जल बोर्ड के अधिकारी आते हैं और आर्सेनिक दूषित क्षेत्र में वो सर्वे करते हैं और जो भी ट्यूबवेल होता है या कुआं होता है उसको लाल रंग से या रेड कलर से उसको अंकित करते हैं।
0: अच्छा।
1: अगर आपको जब पता चल गया कि ये रेड कलर से अंकित है तो उसका पानी का उपयोग ना करें। और अगर कृषक बंधु भाई बहन अगर चाहे तो अपने मिट्टी और सिंचाई जल को किसी सर्टिफाइड लेबोरेटरी में ले जाके वो चेक भी करवा सकते हैं।
0: जी, ये इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं किसान बंधु कि आर्सेनिक समस्या आपके खेत में है या नहीं, ये आपको प्रभावित कर रही है नहीं। और इसके बाद अगर प्रबंधन की बात करें डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमें पता लग जाता है कि हमारे खेत में आर्सेनिक की समस्या भी है तो इसका प्रबंधन यानी कि इसका निदान कैसे कैसे कर सकते हैं?
1: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देने की बात है. सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि जिस भूजल में या जिस ट्यूबवेल में आर्सेनिक कंटामिनेशन पता चल गया है

0: उसका सिंचाई में बहुत कम से कम पानी यूज करें और ऐसे फसल को उगाएं जहाँ पे भूजल और जो जमीन से निकलने वाले जंत्र है उसका उपयोग कम से कम हो, क्योंकि भूजल में आर्सेनिक की कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। और किसान भाई ऐसे फसल चक्र का उपयोग कर सकते हैं जिसमें भूजल कम से कम यूज हो, जिसमें सिंचाई कम लगे, वैसे फसल चक्र का यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे आपने देखा होगा जो एग्रोकेमिकल्स जैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स हम लोग स्प्रे करते हैं उसमें भी आर्सेनिक कंटामिनेशन हो सकते हैं, तो प्रयोग में लाने के पहले आप उनके लेवल को पढ़ें। अगर उसमें आर्सेनिक हो तो वैसे केमिकल्स वैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड का उपयोग ना करें, तो आप इसको प्रबंधन में ला सकते हैं।
1: तो इस तरीके से आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आपने जाना कि आर्सेनिक दूषित मिट्टी में आप सुरक्षित खेती कैसे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पहलुओं पर हमने चर्चा किया, जैसे कि इसका क्या जो है प्रभाव पड़ सकता है मानव पर, साथ ही फसलों पर। इसके बाद आपने जाना कि इसकी समस्या का निदान आप कैसे कर सकते हैं। और तो इस तरीके से अगर आप भी यानी इस समस्या से जूझ रहे हैं, आपके खेतों में भी ये समस्या है, तो आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आ सकते हैं और यहाँ पर हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही। सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम।
2: उन्नत कृषि

0: है।
1: क्या आप तैयार हैं आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि,

0: है।
1: क्या आप तैयार हैं आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे।

इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: Coco,
1: Kasi.
0: Kasi.
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24

उनके दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों, इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाली सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमिथो 8 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गला घोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

हर समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुझे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। और आज फिर आप सभी के पास, आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूं मैं उन्नत कृषि कार्यक्रम। दोस्तों, अगर बात करें हम खेती की तो उसमें हर फसलों की बात करते हैं, हम साग सब्जियों की बात करते हैं, लेकिन उसमें एक अलग चीज़ उसमें उससे जुड़ता है, यूँ कहें कि खेती और किसानों से जुड़ता है, वो है पंचगव्य। अगर इसकी बात करूँ मैं तो खेती और हमारे जो किसान बंधु हैं वो तो पंचगव्य के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन इसके अलावा बहुत कम लोगों को इनके बारे में जानकारी होता है कि ये पंचगव्य क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, इसे कैसे बनाया जा सकता है, इसे किस तरीके से रखा जा सकता है, ये खेती में किस तरीके से फ़ायदेमंद है। तो आज यही विषय लेकर हम आए हैं, यानी कि पंचगव्य की पूरी जानकारी देने हम आपको आए हैं। तो आज का हमारा विषय है पंचगव्य बनाने का विधि एवं उपयोग, और इस विषय पर विशेष चर्चा के साथ आए हैं हमारे बीच डॉक्टर शंभू प्रसाद जी। और मैं आपको बता दूं कि ये हैं सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद मैडम।
2: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पंचगव्य है क्या?
3: मैडम, ये पंचगव्य खास करके मैं किसानों को विशेष रूप से ये बताना चाहूँगा, पंचगव्य जैसा कि नाम से ही ये स्पष्ट हो जा रहा है, पंच मीन्स पांच और गव मीन्स गाय।
2: जी,
3: गाय से प्राप्त

0: पांच उत्पादों यथा गाय का गोबर, गाय का दूध, घी, दही और मूत्र को मिलाकर तैयार किया जाने वाला एक तरल जैविक खाद है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से जैविक खेती में की जाती है।
1: अच्छा।
0: और इसके प्रयोग से बहुत सारे फायदे हैं और किसान अगर चाहेंगे कि अपनी खेती को समृद्ध बनाए तो निश्चित रूप से उन्हें पंचगव्य को अपनी खेती में शामिल करने की जरूरत है।
1: जी, तो यहाँ पर आपने जाना कि पंचगव्य क्या है और इसके प्रयोग से यानी कि खेती को और समृद्ध अगर बनाना चाहते हैं हमारे किसान भाई तो इसकी बहुत ज़रूरत है, वो ऐसे बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी सामग्री की ओर जाते हैं, अगर इसे बनाना है तो सबसे पहले हम सामग्री को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या क्या सामग्री इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि पंचगव्य बनाने के लिए गाय से प्राप्त पाँच उत्पादों की आवश्यकता होती है। उसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर है, गाय का दूध है, गाय का घी है, गाय का दही है और गौमूत्र है।
1: अच्छा।
0: इसके अलावे अगर हम पंचगव्य को और समृद्ध करना चाहते हैं तो इन सारे पांच उत्पादों के अतिरिक्त हमें कच्चे नारियल का पानी भी मिलाने की जरूरत पड़ती है और उसमें चूंकि ये जीवाणु की सहायता से तैयार किया जाने वाला उत्पाद है पंचगव्य, तो इसके लिए हमें जीवाणुओं के भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसके लिए लगभग 250 से आधा किलोग्राम शक्कर की आवश्यकता होती है।
1: अच्छा।
0: जिसको आम भाषा में लोग गुड़ भी बोलते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है
1: जी।
0: और फर्मेंटेशन की क्रिया को और बढ़ावा देने के लिए उसमें ईस्ट कल्चर की भी जरूरत पड़ती है।
1: अच्छा।
0: तो ईस्ट कल्चर को भी मिलाना हम लोग उचित समझते हैं और सजेशन भी देते हैं किसानों को कि ईस्ट कल्चर को भी उसमें मिलाया जाए, उससे फर्मेंटेशन और डिकम्पोजिशन की क्रिया थोड़ी फास्ट हो जाती है और पंचगव्य सही मायने में अच्छी तरह से तैयार हो पाते हैं।
1: ठीक। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि कच्चे नारियल के पानी का इस्तेमाल पंचगव्य बनाने में किया जाता है इसके सामग्री के रूप में, तो हम जानना चाहेंगे कि क्यों किया जाता है कच्चे नारियल के पानी का इस्तेमाल?
0: ये जो कच्चे नारियल का पानी जिसको देहात में लोग डाब भी बोलते हैं
1: जी जी,
0: और ख़ास करके जिन लोगों को पीलिया या जॉन्डिस की शिकायत होती है
1: जी,
0: तो उसमें इस नारियल के पानी का प्रयोग भी लोग करते हैं। और इसमें एक खासियत है कि इसमें काइनेटिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिसकी काफ़ी उपयोगिता है क्लोरोफिल सिंथेसिस में
1: जी।
0: तो अगर नारियल के पानी का प्रयोग हम पंचगव्य बनाने में करेंगे
1: जी जी,
0: तो इस काइनेटिन पदार्थ के कारण जिस पौधे पर पंचगव्य का स्प्रे होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह से होगी और फोटोसिंथेट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में बनेंगे। इसके साथ ही साथ पौधों का विकास भी सही होगा और दाने भी पुष्ट होंगे और उपज की अच्छी प्राप्ति होगी।
1: तो ये तो बात हो गई सामग्रियों की, और अब विधि जानना चाहेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है।
0: जी हाँ, इसको बनाने का तो बहुत ही सरल तरीका है, हालांकि इसको बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, विधियाँ हैं, लेकिन मैं काफ़ी सुगम विधि को किसानों के बीच लाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा उन्हें। और ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहले वो जो आवश्यक सामग्री है पंचगव्य बनाने के लिए, किसानों से अनुरोध होगा कि पहले उसको इकट्ठा कर लिया करें, और उसमें खास करके 5 किलोग्राम ताज़ा गोबर है, गाय का गोबर, 2 किलोग्राम गाय का दूध, 2 किलोग्राम दही, 1 किलोग्राम घी और 3 लीटर गौमूत्र। इसके अलावे उन्हें 3 लीटर कच्चे नारियल का पानी भी चाहिए, 250 से 500 ग्राम शक्कर चाहिए और 1 दर्जन पके हुए केले का पल्प या गुदा चाहिए
1: जी।
0: मैं क्रम से इसको बताना चाहूँगा ताकि किसानों को, हमारे किसान बंधुओं को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो
1: जी।
0: तो सबसे पहले क्या करें कि एक प्लास्टिक के टब में 5 किलोग्राम गाय का ताज़ा गोबर लें और उसमें 1 किलोग्राम गाय का घी को दोनों हाथों से अच्छी तरह से, जिस तरह से आटा गूंथते हैं उस तरह से मिला दें, और जब वो अच्छे तरह से मिल जाए तो उसको छाया में रख दें और उसको किसी सूती वाले कपड़े से या जूट की बोरी से ढक दें।

0: दूसरी तरफ 20 से 25 लीटर क्षमता वाली एक प्लास्टिक का गैलन लें और उस गैलन में 3 लीटर गौमूत्र, 2 लीटर गाय का ताज़ा दूध, 2 किलोग्राम दही, उसको मिलाएं और उसी में 3 लीटर कच्चे नारियल का पानी भी डाल दें और साथ में 250 से 500 ग्राम शक्कर को भी मिलाएं
1: जी।
0: और ये इन सारे चीज़ों को मिलाने के बाद जो एक दर्जन केला है उसके पल्प को अच्छी तरह से मसल कर इस मिश्रण में मिला दें और उस मिश्रण को छड़ी से या डंडा से इस तरह से मिलाएं कि सारा मिश्रण अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए
1: जी।
0: अब इस गैलन को भी छाया में रखना है अलग 4 दिनों तक। दोनों ये पहले जो हमने पात्र में गोबर और घी का मिश्रण मिलाया है उसका वो टब जो है उसको भी अलग रखेंगे और उसी जगह इसको भी रख देंगे और इसके मुंह को भी सूती के कपड़े से या जूट वाले कपड़े से ढक के रखेंगे
1: जी।
0: 4 दिनों तक दोनों जो मिश्रण है दोनों को अलग अलग रखा जाएगा और प्रत्येक दिन दोनों मिश्रण को दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार अच्छी तरह से मिलाना है। गोबर और घी का जो मिश्रण हमने प्लास्टिक के टब में रखा है उसको भी मसल के मिलाना है और इधर जो तरल पदार्थ का मिश्रण है उसको भी छड़ी या डंडे से दिन में 3 बार घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में मिलाते हुए मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाकर मिला देना है
1: जी।
0: और फिर 5वें दिन ये दोनों जो अलग अलग मिश्रण हैं दोनों को एक साथ कर देना है। गोबर और घी का जो मिश्रण है उसको चौड़े मुंह वाले गैलन जो प्लास्टिक के गैलन है उसमें डाल देना है और फिर छड़ी या डंडे से उसको अच्छी तरह से मिला देना है। अब ये जो मिश्रण है इसको लगभग 15 दिनों तक छोड़ देना है छाया में ही और फिर इसको प्रत्येक दिन दिन में 3 बार फिर छड़ी से मिलाना है घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में
1: जी।
0: तो इस प्रकार से 4 और 15 दिन 19 दिन के बाद ये हमारा जो है जो मिश्रण है वो तैयार हो जाएगा अच्छी तरह से और उसके बाद फिर पतले सूती के कपड़े से इसको हमें छान लेना है और छानने के बाद जो तरल पदार्थ हमें मिलेगा वो पदार्थ हमारा पंचगव्य के रूप में माना जाएगा और ये तरल पदार्थ हमारे खेती के लिए काफ़ी उपयोगी है। किसान इस तरल पदार्थ को, इस छने हुए तरल पदार्थ को पंचगव्य के रूप में अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों आपने जाना कि कैसे इसे बनाया जाता है। अच्छा सर हम ये जानना चाहेंगे कि हम इसे कितने दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं।
0: एक्चुअली ये सारे जीवाणुओं के द्वारा ही कार्यान्वित होते हैं और इसमें जीवाणुओं की संख्या पर्याप्त होती है
1: जी।
0: तो बेहतर इस्तेमाल के लिए इस तरल पदार्थ को जो तैयार पंचगव्य है उसको लगभग 2 महीने तक स्टोर किया जा सकता है।
1: 2 महीने तक
0: जी। तो उसमें उसकी क्रियाशीलता में कोई ज़्यादा कमी नहीं आती है। फिर ज़्यादा दिनों तक अगर रखेंगे तो उसकी क्रियाशीलता में कमी आती जाती है, इसीलिए बेहतर ये होगा कि उसको 2 महीने के अंदर ही उसका इस्तेमाल अपने खेतों में कर लें।
1: ठीक। तो सर अब इसमें जो है खेतों की बात करते हैं तो इनका जो प्रयोग है वो खेतों में कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई?
0: किसान बंधु इसको विभिन्न रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। इसको बीज के साथ उपचारित भी कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: इसको सिंचाई जल के साथ खेतों में डाल भी सकते हैं और फसल खरी फसल में इसका छिड़काव विधि के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी।
0: और खास करके मैं तो कहूँगा कि इसकी शुरुआत किसान बंधु अपने बीजों को उपचारित करने में, चाहे वो राइजोम हो या कटिंग हो या सीड्स हो, उसको लगभग 20 मिनट तक पंचगव्य के 3% घोल में डुबा करके रखें और उसके बाद उसको छाया में थोड़ी देर के लिए सुखा दें, फिर उसका इस्तेमाल खेतों में बोने के रूप में या लगाने के रूप में या कटिंग को प्लांट करने के रूप में करें। तो इस तरह से सीड ट्रीटमेंट बीज उपचार के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किसान बंधु चाहते हैं कि मैं इसको मिट्टी में इस्तेमाल करूं तो उसके लिए उन्हें सलाह दी जाती है कि पंच

0: अब का 20 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई जल के साथ अपने खेतों में व्यवहार कर सकते हैं किसी भी फसल में, चाहे वो गेहूं हो, मक्का हो या दलहनी फसल हो, किसी भी फसल में इसका प्रयोग सिंचाई जिसमें सिंचाई जल का इस्तेमाल करते हैं उसमें करें, जिसमें सिंचाई जल का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसमें वो कंपोस्ट के साथ या बर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर खेत में छींट सकते हैं अंतिम जुताई के समय में। लेकिन खेत में थोड़ी नमी रहनी चाहिए उस समय, ताकि जो जीवाणु हैं उसको जीवित रहने का भी अवसर मिले, मौका मिले, और उतना जो आवश्यक तापमान है उस तापमान पर वो जीवित रह सके। तीसरी बात है कि छिड़काव के रूप में भी किसान बंधु इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और छिड़काव के रूप में इसके 3% घोल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब 1 लीटर पानी में 30 मिलीलीटर पंचगव को मिलाकर किसी भी फसल में इसका छिड़काव, किसी भी फसल में पंचगव का छिड़काव कर सकते हैं। और ये छिड़काव मुख्य रूप से 2 बार करनी चाहिए। पहला छिड़काव करना चाहिए जब कली वाली अवस्था आती है, यह कली लगना शुरू होता है पौधे में, उस समय करना चाहिए। और दूसरा छिड़काव करना चाहिए जब उसमें फल आ जाते हैं या पौधे में फल जब पकड़ लेता है तो उस समय उसका छिड़काव करना चाहिए। अगर एक ही छिड़काव करना है उनको तो फल लगने के बाद इसका छिड़काव करें, और इससे उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। और हम लोगों ने अपने यहाँ प्रयोग करके भी देखा है, देख भी रहे हैं, तो इसके छिड़काव से एक फ़ायदा ये समझ में आता है कि इसमें कुछ एक विशेष प्रकार का गंध होता है।
1: अच्छा।
0: जिसके वजह से पौधे में कीड़े और रोग का प्रकोप कम हो जाता है।
1: अच्छा।
0: जिस फसल में इसका छिड़काव करते हैं उसके आसपास कीड़े नज़र नहीं आते हैं, तो ये काफ़ी उपयोगी है। और ना सिर्फ ये रिपेलेंट का काम करता है बल्कि पौधों में ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है, उसके विकास में सहायक होता है। और इसमें बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे फंगस, बहुत सारे एक्टिनोमाइसिटीज लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। मिट्टी में जो पोषक तत्व तो ऐसे रूप में विद्यमान हैं, वर्तमान है, ये मौजूद हैं, जो पौधों को मिल नहीं पा रहे हैं उनको भी घुलाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। और पौधों के जड़ के आसपास एक ऐसा आवरण बनाते हैं, एक ऐसा परिधि बनाते हैं जिसमें हानिकारक रोग का अटैक नहीं हो पाता है, जिसके वजह से पौधे स्वस्थ रह पाते हैं। अगर हम फोलियर स्प्रे कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी पौधों के पत्तियों पर भी एक आवरण बनाता है, जिसके वजह से बाहरी कीड़ों का या रोगों का प्रकोप नहीं के बराबर हो पाता है।
1: तो आपने जाना किसान बंधुओं की क्या क्या फ़ायदे हैं पंचगव्य के, और आपने जाना कि कैसे इसे बना सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं खेतों में, इसकी विधि को जाना आपने, और साथ ही बहुत सारी चीज़ें से जुड़ी जो हैं डॉक्टर साहब ने बताया। तो फिलहाल तो चाहेंगे कि आप भी अगर नहीं जानते हैं इसे बनाना, तो यहाँ पर जो भी आप सभी को बताया गया तो अगर आप उसे अपनाते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो ज़रूर आप इसे सीख जाएंगे बनाना और आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
5: खुद भी बचे देश भी बचाए।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: CIET NCERT presents audio book Ganit Prakash, textbook of mathematics for grade 7.
10: Chapter number 6, number play, page number 127. On the right side of the page, there is a QR code provided, scanning which you can reach out to the additional resources. 6.1. Numbers tell us things. What do the numbers in the figure below tell us? Remember, the children from the grade 6 textbook of mathematics. Now, they call out numbers using a different rule. Here, we have an image of children with numbers 0, 1, 0, 2, 2, 2, and 1. What do you think these numbers mean? The children rearrange themselves and each one says a number based on the new arrangement. Another image here of children having numbers are 0, 0, 1, 2, 2, 5, 6. Could you figure out what these numbers convey? Observe and try to find out. Page number 128. The rule is, each child calls out the number of children in front of them who are taller than them. Check if the number each child says matches this rule in both the arrangements.

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों, इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाले सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं।

और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: CIET NCERT presents ऑडियो बुक पूर्वी, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 7।
3: पेज नंबर 1, यूनिट 1।

0: प्रोडक्शन असिस्टेंट अमरजीत सरकार, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विमलेश चौधरी. दिस ऑडियो बुक इज ब्रॉट टू यू बाय CIET NCERT.
1: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान.
2: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ.

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं।

की प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: Koko Kasi.
1: Kasi. Koko Kasi.
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाले सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथो 8 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए

60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन पे सामाजिक पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है और जब महिलाएं कामकाजी हो या फिर घरेलू हों, उन पर एक अलग तरह का दबाव आज भी महसूस वो करती होंगी। कई बार महिलाओं पर ये दबाव होता है कि महिलाओं को सहनशील दिखना है, कई बार परफेक्ट दिखने का दबाव, कई बार करियर में अच्छा करने का दबाव, कई बार करियर के साथ घर को संभालने का दबाव, अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही जिंदगी में ऐसे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, पुरुषों को भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पर कई बार महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं, क्योंकि अगर वो किसी को बताती भी हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, करियर और घर साथ में नहीं संभल रहा या फिर बच्चों से ऊब गई है, तो फटाक से उसे ये सवाल कर लिया जाता है कि कोई महिला होकर बच्चे से कैसे ऊब सकती है। करियर के साथ तो घर संभालना ही पड़ेगा, घर संभालने का काम तो महिलाओं का ही है ना। मतलब इतनी सारी बातें कह दी जाती है कि एक वक्त आते आते महिला ये समझना शुरू कर देती है कि उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा ख़राब लग रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। करियर, रिश्ता, घर, सोसाइटी, इन सब की उम्मीदों के बीच महिलाएं अपनी इमोशंस को एडजस्टमेंट समझकर दबा लेती है और यही वजह होती है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े शुरुआती लक्षण वो टाइम पर नहीं पहचान पाती और प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत गहरी होती जाती है। अगर आप में भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बाद में जाकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपको लगातार थकान लग रहा है, मोटिवेशन की कमी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद आप थकी थकी सी लगती हैं, छोटे छोटे काम भी आपको भारी लगने लगे हैं, जिन काम को आप बहुत पहले आराम से निपटा लिया करती थी, जो चीज़ें आपको पहले बहुत खुशी देती थी, अब वो करने की एनर्जी ही नहीं बची है, वो करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपको पहले शॉपिंग करना पसंद था, फिल्में देखना पसंद था, खाना बनाना पसंद था, पर अब वो चीज़ें करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपके अंदर उन चीज़ों को करने के लिए एनर्जी नहीं बची है, उनमें अब दिलचस्पी ही नहीं रही है। तो ये सिर्फ शारीरिक थकान की वजह से नहीं हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि आप मेंटली परेशान हो, आप मेंटली थक गई हो। ये डिप्रेशन या एंजाइटी की शुरुआती निशानी भी हो सकती है, जिसे अक्सर महिलाएं कोई रूटीन स्ट्रेस कहकर टाल देती हैं कि चलो इतने काम के बाद ये तो थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेस है ही। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लगातार हो रही है तो फिर आप, हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर परेशान हों। अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बात बात पर रो देती हैं या बिना किसी वजह के आप उदासी महसूस कर रही हैं या फिर आपको अचानक गुस्सा आ रहा है, तो आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी इन अचानक बदले हुए मूड को समझेंगे, लेकिन आपको आपके पास होना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जब हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और साथ में लगातार स्ट्रेस भी होता है, तो ये दोनों मिलकर बहुत बुरी तरीके से मेंटल बैलेंस को बिगाड़ सकती है। और जब ये बदलाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें इग्नोर करना नुकसानदेह हो सकता है। मान लीजिए कि आप छोटी छोटी बात पर आजकल गुस्सा करने लगी हैं और इस बात से आप खुद भी परेशान होंगे कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। आप छोटी छोटी बात पर इमोशनल होकर रोने लग गई हैं या फिर बिना मतलब के, बहुत छोटी सी बात है या फिर कोई बात है ही नहीं, फिर भी आपको बहुत उदासी हो रही है, तो सिर्फ ये इमोशनल वीकनेस नहीं हो सकती है, ये हो सकता है कि आप मेंटली भी थोड़ी परेशान हो या फिर ज़्यादा परेशान हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि नींद और भूख के पैटर्न में भी बदलाव आता है। आप पहले आराम से, आपका टाइम फिक्स था सोने का, आपको नींद भी अच्छी आ जाती थी, लेकिन अब आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही है या फिर आपको बार बार जगना पड़ रहा है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा भी आप सो रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि दिमाग आपका ओवरलोड हो चुका है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भर गई है और आपका दिमाग थक चुका है। इसी तरीके से अगर आप कम खा रही हैं या फिर अचानक आपके खाने के पैटर्न में बदलाव आया है, आप बहुत ज़्यादा खाने लग गई हैं, तो ये भी एक वार्निंग

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

लाइन हो सकता है। नींद, खाना, अगर इन दोनों ही पैटर्न में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, या तो दोनों ही अगर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से गिरा है या फिर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से बहुत बढ़ गया है, तो ये खतरनाक हो सकता है। और कई बार महिलाएं तो अपनी स्थिति के लिए या दूसरों की स्थिति के लिए भी खुद को ब्लेम देना शुरू कर देती हैं, और ऐसे में उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। जब महिलाएं ना हर छोटी छोटी बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगती है, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत उनके घर वाले करते हैं कि उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना, और एक वक्त पे महिलाएं भी ये मान लेती हैं कि अगर उनके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, और वो अपने हर फैसले पर शक करना शुरू कर देती है कि कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, मेरे उस गलत फैसले की वजह से आज ये तो मुझे नहीं झेलना पड़ रहा, या फिर मेरे गलत फैसले की वजह से मेरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी कितनी ही सारी बातें होती हैं जब महिलाएं खुद पे ब्लेम डालने लगती है, और ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आप लो सेल्फ स्टीम से गुजर रही हो, आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम का ये संकेत हो सकता है। और अक्सर ना महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो परफेक्ट बने, और ये उम्मीद जो की जाती है महिलाओं से, ये महिलाओं को और भी ज़्यादा परेशान करती है। कई बार तो महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं, और कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो पहले बहुत फ्रेंडली थी, या फिर बहुत फ्रेंडली नहीं पर ठीक ठाक थी सामाजिक तौर पे, लेकिन वो अचानक धीरे धीरे लोगों से कटने लगी है, बातचीत करने से बचने लगी है, और अपने मन की बात उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है। तो इसे क्वाइट नेचर समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब थोड़ा शांति पसंद कर रही है। अगर वो लगातार ऐसा कर रही है तो हो सकता है कि वो अपने अंदर चल रहे मेंटल थकान को और अकेलेपन का संकेत दे रही है। हो सकता है कि वो अपने अंदर ही इतनी सारी बातों से परेशान हो गई है कि वो बात बाहर निकाल ही नहीं पा रही, या फिर उन्हें लगने लग गया है कि किसी से बात करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन फायदा हो सकता है, और अगर आपने इन सारे संकेतों को इग्नोर किया तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएं। कई बार तो आप ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं, चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को भूलते हैं। किसी चीज़ पर आप फोकस करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, जबकि आप हमेशा से ऐसी नहीं थी। अचानक या फिर धीरे धीरे आप में ये बदलाव अगर दिखने लगे हैं तो ज़रूरी है कि आप टाइम पर मदद लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ना अचानक नहीं होती। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे होती हैं, और ये सारे संकेत उनके शुरुआती संकेत हैं। और अगर आप इन संकेतों को पहचान कर टाइम पर सपोर्ट लेते हैं, फिर चाहे वो दोस्त से बात करना हो, काउंसलिंग करना हो, या फिर ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेना भी हो, तो आप इन सारे संकेतों को बड़ी परेशानी में बदलने से रोक सकते हैं। तो इन संकेतों को अगर आप पहचानती हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी समझ आ रही है, खुद के अंदर कोई भी समस्या महसूस हो रही है, तो सबसे पहले खुद को समय देना शुरू करें। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ना काम के प्रेशर से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए, और खुद को समय देने से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तेज़ी से सुधरने लगता है। खुद को समय देना यानी कि आपको जो पसंद है ना वो कीजिए, नहीं अगर कोई काम समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी पसंद के काम भी हमें करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठ जाइए खुली हवा में, नेचर के साथ, फिर देखिए धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव खुद ही नजर आने लगेंगे। इसके साथ ही एक सही रूटीन फॉलो नहीं करने की वजह से भी महिलाओं में या फिर किसी में भी ऐसी परेशानी देखी जा सकती है। तो जरूरी है कि आप एक सही रूटीन फॉलो करें। आप कोशिश करें कि हर काम का एक समय फिक्स कर दे, उसी समय पर करें, और जब आप अपने डेली लाइफ में भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगती हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लगता है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है, और उससे कम परेशानी होती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें। जैसे ही आप एक सही रूटीन फॉलो करने लगेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी एक्टिविटी जैसे कि योगा शामिल करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज को शामिल करें, और साथ ही सुबह या शाम के समय ज़रूर थोड़ा सा समय निकालें जिसमें आप कोशिश करें कि आप ना पैदल चलें। इससे बहुत फ़ायदा होता है, और सुबह और शाम के समय जब आप थोड़ा पैदल चलते हैं तो इस दौरान आप खुद के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं, और इस वक्त ये ना करें कि आप फ़ोन चला रही हैं या फिर कुछ और, नहीं, बस खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद से बातें करनी है। पर्याप्त नींद तो बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही हो,
तो कोशिश करें कि आप सही समय पर सोने जाएं, और नहीं भी नींद आ रही है तो फ़ोन यूज़ नहीं करें।

करना है, किसी से बातें नहीं करनी है, बस सोने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों में नींद आने लगेगी और दोस्तों से और परिवार से खुलकर बात करें। कोई तो होगा आपके परिवार में जो आपको समझता होगा, आपके दोस्त होंगे, आपकी बहन, माँ या फिर कोई भी, आपका पति, उनसे बात करें, खुलकर बात करें। और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी बिल्कुल नहीं घबराएं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और कई बार नींद आने में अगर परेशानी होती है तो अगर आपको दूध सूट करता है तो रात में गुनगुना दूध पीकर सोएं, और अगर उसमें हो सके तो कच्ची हल्दी मिला दें, आप थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला दें। इससे क्या होता है कि नींद अच्छी आने में बड़ी मदद मिलती है। बस करना क्या है, शाम में या रात में आपको दूध में ये दोनों चीज़ें डालकर उबाल लेना है, और आप हल्की इलायची भी मिला सकते हैं। 3 से 5 मिनट आप उबालेंगे तो जो दूध है वो तैयार हो जाएगा, और इसे गुनगुना या बिल्कुल ठंडा आप पी सकते हैं। तो ये भी आपको नींद आने में काफी मदद करता है, तो ये चीजें भी आप अपना सकते हैं। और अगर इन चीजों से भी आपको आराम नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना, आप नींद, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप में जो लक्षण थे वो अब भी जस के तस बने हुए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए। क्योंकि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा बने रहते हैं तो डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके अंदर आत्महत्या या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के कोई भी विचार आए तो डॉक्टर से तो मिलिए ही। और अगर आपके लक्षण इतने ज्यादा बढ़ गए कि आप रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी आपको परेशानी हो रही है, तो भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। पैनिक अटैक भी कई बार आ जाता है और बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आपको मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो ध्यान रखें कि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा बना रहे, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आए, रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे, या फिर पैनिक अटैक या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगे, तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट से मिलना जरूरी होता है, या फिर आप काउंसलर से भी मिल सकती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें, खुद के दिमाग को शांत रखें और बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करें, स्वस्थ रहें, और तभी आप अपने अपनों को भी प्यार दे पाएंगे, उन्हें स्वस्थ रख पाएंगे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल, और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप बने रहें हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा।

का। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
5: नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि आपकी फसल और आपकी फसलों की पैदावार, ये सभी बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं। तो जी हाँ, बीज उत्पादन में हमें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान रखना होता है। आज इसी विषय को लेकर हम आए हैं। हमारा विषय है धान के बीज उत्पादन हेतु तकनीकी सुझाव, और इस विषय को आप सभी के बीच लेकर आए हैं डॉक्टर सत्येंद्र। मैं आप सभी को बता दूं, सर वैज्ञानिक हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बीज को लेकर किसानों के पास क्या क्या कानूनी वैधताएँ हैं, इनके बारे में बताएँ।
6: किसान भाइयों को नमस्कार। जहाँ तक बीज को लेकर वैधता का सवाल है, तो भारत में एक इसके लिए कानून पास किया गया था सन 2001 में, जिसका नाम है पौधा किस्म संरक्षण एवं

0: चिकित्सक अधिकार अधिनियम, इसको पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001 के नाम से जाना जाता है। इसमें बीज से संबंधित या फिर किसानों के लिए क्या क्या छूट दिया गया है बीज से संबंधित, वो सारी बातें इस एक्ट में हैं, इस अधिनियम में निहित हैं। तो इसके अनुसार किसान भाई अपने बीज को अपना बीज खुद पैदा कर सकते हैं या फिर किसी से भी ले के हम लोग किसान भाई बीज लगा सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाई बिल्कुल फ्री हैं। और ये इस तरह का जो अधिनियम है ये भारत में ही ये इस तरह का बनाया गया है कि किसानों को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि किसान भाई अपने बीज को या तो किसी को अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं, किसी का बीज आपको अच्छा लग रहा है तो वो आप उसको ले सकते हैं। तो इसके लिए अलग से अधिनियम में, इस एक्ट में प्रावधान किए गए हैं जिसमें किसान भाई अपने बीज को स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, उन्नतशील बीज ये क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है?
0: उन्नतशील बीज जो बीज की गुणवत्ता है उसको अगर हम देखेंगे तो बीज की गुणवत्ता कई पहलुओं पर निर्भर करती है। तो उसमें अगर हम मोटे तौर पे देखें तो दो तरह की गुणवत्ता उसमें होती है, एक भौतिक गुणवत्ता होती है और एक उसकी आनुवंशिक गुणवत्ता होती है। तो आनुवंशिक गुणवत्ता की जहाँ तक बात करें तो जैसे अलग अलग किस्म का बीज होता है तो अलग अलग किस्म के बीज में कोई दूसरी प्रजाति का या दूसरे प्रभेद का तो मिक्सचर नहीं है, तो वो उसकी आनुवंशिक शुद्धता पे निर्भर करता है। दूसरा उसकी भौतिक शुद्धता होती है, तो भौतिक शुद्धता में कोई दूसरा इनर्ट मैटर या फिर कोई खराब तरह का बीज तो नहीं मिक्स है, मिक्सर है। तो ये उसको भी एक तरह से उसका भी मापदंड बनाया गया है, तो ये सारा उसकी भौतिक शुद्धता पे निर्भर करता है।
1: जी, और धान की किस्मों की बात करते हैं तो बीज उत्पादन के लिए किसान भाई किन किन धान की उन्नतशील किस्मों को अपना सकते हैं?
0: धान की उन्नतशील किस्में तो काफ़ी हैं जो किसान भाइयों के बीच में प्रचलित हैं। और अभी अगर हम इस समय की बात करें तो ये धान का समय है, धान की फसल खेत में खड़ी है। तो किसान भाई जैसे निचले क्षेत्रों में हम लोग रिकमेंड करते हैं, थोड़ा जहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है उस एरिया में राजेंद्र मैसूरी या फिर स्वर्णा सबवन, ये लंबे अवधि के हैं। सबोर संपन्न धान है, ये लंबी अवधि के प्रभेद हैं, इनको हम लोग संस्तुत करते हैं। इसी तरह से जो ऊपरी भूमि है जहाँ पे कम पानी लगता है या कम पानी की अवस्था में अगर हम देखें तो वहाँ पे कम दिन की जो प्रजाति हैं जैसे सबोर हर्षित है, सबोर दीप है, सहभागी धान है, ये सब प्रजाति हम लोग संस्तुत करते हैं।
1: जी, अगर धान में बीज उत्पादन से संबंधित किसी तकनीकी बिंदुओं को अगर ध्यान में रखा जाता हो तो कृपया बताएं सर।
0: हाँ, इसमें देखिए किसान भाइयों, बीज उत्पादन से संबंधित कई सारे तकनीकी बिंदु होते हैं। उसमें एक तो है कि अगर आप जिस खेत में बीज उत्पादन कर रहे हैं वो, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, यानी आप अगर रजिस्टर्ड सर्टिफाइड बीज पैदा कर रहे हैं तो उस केस में आपको उनके जो मापदंड है सारे उसको फॉलो करना होता है, उसको मानना होता है। और अगर आप अपना खुद का भी बीज पैदा कर रहे हैं तो हमारा सुझाव यही रहता है कि किसान भाई उसमें भी सारे मापदंड जो हैं, जो उन्नतशील बीज पैदा करने के मापदंड है वो सारे उसमें अपनाने चाहिए किसान भाइयों को। तो उसमें कुछ पहलू हैं जिनको किसान भाइयों को ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला एक है कि एक खेत में से दूसरे खेत के, एक बीज के खेत से दूसरे बीज के खेत की दूरी कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि धान के लिए अगर आप बीज पैदा कर रहे हैं, आप जिस खेत में बीज पैदा कर रहे हैं, जिसको आप बीज का खेत मान रहे हैं, उस खेत से दूसरे खेत की दूरी यानी धान की दूसरी किस्म की दूरी

0: कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए, 3 मीटर हो या इससे ज़्यादा हो। तो दूसरे इसको तो बोलते हैं पृथक्करण दूरी, तो ये 3 मीटर कम से कम होनी चाहिए। दूसरे अगर मान लीजिए किसान भाई एक कोई उनका कोई प्लॉट है जिसमें वो धान का बीज के लिए धान लगा रहे हैं, उसको कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, और वो 3 मीटर का पृथक्करण जो दूरी वो नहीं दे पाए हैं, तो किसान भाई क्या कर सकते हैं कि कटाई के टाइम 3 मीटर का जो बॉर्डर एरिया है वो हटा सकते हैं, यानी चारों तरफ उस प्लॉट के चारों तरफ 3 मीटर तक का धान को आप बीज में इस्तेमाल ना करें, ये किसान भाई कर सकते हैं। तो वो भी एक एक तरह से पृथक्करण की दूरी जो थी वो उसका फुलफिल कर देगा उसका। फिर आपको 3 मीटर अगर नहीं भी छोड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 मीटर तक का धान को इस्तेमाल मत करिए बीज में। दूसरी एक तो ये चीज़ हो गया, दूसरी बात है रोगिंग की। रोगिंग मतलब कि धान में, धान के खेत में, उस खेत में जिसका बीज आप इस्तेमाल करेंगे अगले साल, उसमें आपको रोगिंग करना है। रोगिंग होता है अवांछित जो पौधे हैं उनको निकालने का काम। तो ये काम जो है वो कई स्टेज पे होता है, कई अलग अलग जो उसकी अवधि होती है धान की फसल की उसमें होता है। तो जैसे किसान भाई एक बार जब टिलरिंग होती है, जब कल्ले निकलते हैं, तो उस समय पे भी अगर कोई आपको अलग तरह का धान दिख रहा है जो आपको लग रहा है कि इसका नहीं है, उस प्रजाति का नहीं है या बाकी पौधों से अलग दिख रहा है, तो उसको निकाल दें। फिर इसी तरह से फूल आने के समय भी एक रोगिंग की जाती है, ताकि फूल के समय पे भी अगर कोई ज़्यादा ऊंचाई का पौधा है जो आपको लग रहा है कि ये मिक्सचर हो सकता है, या दाने के आधार पे आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उस तरह के पौधे भी हमें हटा देने होते हैं। और उसके बाद एक बार फिर जब पक जाती है फसल, मैच्योर हो जाती है, तो कटाई से पहले भी ये रोगिंग का काम करते हैं। तो इसके बाद कटाई में भी हमें बहुत सावधानी इसमें बीज के खेत में रखनी पड़ती है। तो ये सब कुछ तकनीकी पहलू हैं जिनका ध्यान किसान भाइयों को रखना होता है।
1: जी, अभी डॉक्टर साहब आपने इन तकनीकी बिंदुओं में पृथक्करण की बात की थी, ये पृथक्करण दूरी क्या है और किसान भाई इसमें कैसे ध्यान रख सकते हैं इसे लेकर?
0: हाँ, पृथक्करण दूरी जैसे मैंने बताया कि इसको एक खेत से उसी फसल का, जैसे धान का अगर आप बीज पैदा कर रहे हो तो धान के एक खेत से दूसरे धान के खेत की दूरी कितनी हो, ये होता है पृथक्करण दूरी, जिससे आपस में मिक्सचर ना हो। क्योंकि जो फूल आने के समय में क्या होता है कि जो पोलन होता है, जो उसका परागकण होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, उसका या तो जो कीट होते हैं उनके द्वारा भी चले जाते हैं या हवा से भी चले जाते हैं, जिससे अगर दो वैरायटी, दो अलग अलग किस्म अगल बगल आपने लगाई है तो उनमें कुछ ना कुछ मिक्सचर होने का डर रहता है। तो उसको कम से कम करने के लिए ये अध्ययन करके ये पता किया गया है कि अगर हम 3 मीटर की दूरी रखते हैं दो किस्मों के बीच में जिनका हम बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो वो उससे हमारा कम से कम मिक्सचर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये पृथक्करण दूरी ये हर फसल के लिए अलग अलग होती है। ये धान के लिए जो साधारण धान की फसल का उत्पादन है, साधारण किस्मों का जो उत्पादन है, उसके लिए दूरी कम होती है। और अगर हाइब्रिड का धान उत्पादन करेंगे, बीज उत्पादन करेंगे, तो उसमें वो दूरी बढ़ जाती है। तो क्यों, चूँकि हाइब्रिड का तो किसान भाई बीज उत्पादन नहीं करते हैं, तो जितनी भी है किस्में जो साधारण किस्में हैं उनका बीज उत्पादन किया जाता है, तो उसमें 3 मीटर की जो पृथक्करण दूरी है वो उसको एक मानक माना गया है।
1: जी, आगे बढ़ते हुए रोगिंग के बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, इसे कैसे किसान करें?
0: हाँ, रोगिंग जैसे मैंने बताया, रोगिंग बोलते हैं जो अवांछित पौधे हैं उनको निकालने का। तो इसमें अवांछित पौधे आएंगे कहाँ से, सबसे पहली तो बात यह है, और अवांछित पौधे होते क्या हैं। तो अवांछित पौधे वो सारे हैं जो आपको नहीं चाहिए या आप वहाँ

0: उसको नहीं चाहते हैं खेत में कि ना हो। तो ये वो सारे पौधे जो अलग किस्म के हैं, भले ही वो धान के हैं लेकिन दूसरी किस्म के हैं, जिनका आप बीज उत्पादन नहीं कर रहे हैं और वो मिक्सचर हो गए हैं, मिक्स हो के उसमें आ गए हैं, वो पौधे होंगे। या कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं जो पिछले साल जो आपने धान की फसल ली थी उस खेत में, उसके कुछ पौधे भी अपने आप अगले साल धान के सीजन में अपने आप उग जाते हैं। तो ऐसे पौधे को भी हम अवांछित पौधे में गिनते हैं, उनको भी हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे किसी भी तरह का घास, खरपतवार, कोई दूसरा मिलता जुलता पौधा, किसी भी तरह का जो पौधा है धान के अलावा, वो भी सारा हमें निकालना होता है, वो भी अवांछित पौधे की श्रेणी में आता है। और जो ज़्यादा रोग या कीट लगे हुए पौधे हैं, भले ही वो उसी किस्म के हैं लेकिन उनमें ज़्यादा कीट या व्याधि आ गया है, तो उस तरह के पौधे भी हमारे लिए अवांछित की श्रेणी में आते हैं, तो उनको भी हमें निकाल के हटाना होता है, जिससे हमें शुद्ध बीज उत्पादन हम कर सकें।
1: जी, धान में फूल आने के समय भी कुछ जो बातें हैं उनका ध्यान रखना होता है, वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में बताएं।
0: हाँ, जैसे बीज उत्पादन के जो प्रक्षेत्र है धान का बीज उत्पादन का, उसमें जैसे मैंने बताया कि उसमें रोगिंग करनी होती है, तो वो अवांछित पौधों का हमें फूल आने के समय पे भी निकालना होता है। तो फूल आने के समय पे क्या है, जैसे हम उससे पहले हम देखेंगे कि जो जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है जिन पौधों की, उनको हम निकाल देते हैं, या जो दूसरे हमें लग रहा है कि ये अलग तरह के हैं उसको निकाल देते हैं। तो फूल आने के समय पे सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने की है वो होती है, एक तो ऊंचाई की, ऊंचाई या तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, ज़्यादा हाइट ऊंचाई है पौधे की तो भी निकाल दें, कम हाइट है, बोना है पौधा जो उसमें नहीं होना चाहिए वो भी निकाल दें। दूसरे, फूल आने के समय पे दाने का आकार किसान भाइयों भाई गौर से देखें कि ये अगर उस किस्म का दाना नहीं लग रहा है, या हो सकता है किसी किसी में ऑन्स होते हैं जो जिसको मुच्छल बोलते हैं, तो अगर वो उसमें तूड़ आया हुआ है, उसमें ऑन आया हुआ है, मूछ है, तो उसको और आप जिसका बीज पैदा कर रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पौधों को भी आप फूल आने के समय में पहचान सकते हैं और उनको निकाल सकते हैं।
1: जी, और सबसे ज़रूरी बात जो है कटाई के समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: कटाई के समय में भी जैसे मैंने बताया कि बीज के खेत में किसान भाई ध्यान रखें कि एक तो जो अगर उन्होंने पृथक्करण दूरी नहीं रखी है, तो 3 मीटर का जो धान है वो खेत के चारों तरफ का धान वो बीज में इस्तेमाल ना करें, उसको बीज के लिए ना रखें। और इसके बाद बचे हुए खेत में उनको कटाई के समय में भी, पकने के समय में भी फिर से रोगिंग करना होता है, तो वहाँ पे फिर से देखें कि कोई ऐसा पौधा तो नहीं रह गया है जो उनको लग रहा है कि वो मिक्सचर है, क्योंकि उस टाइम तक वो कई बार उसमें उसको देख चुके रहते हैं, उनको पता चल चुका रहता है कि ये ओरिजिनल जो इसका पौधा है वो किस तरह का होना चाहिए, उसका दाना किस तरह का होना चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो एक एक पौधे को चेक करके, अगर हो सके तो हमें सारे पौधे चेक करके एक एक पौधे को निकाल दें, ताकि हम शुद्ध से शुद्ध बीज पैदा कर सकें।
1: जी, अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इससे रिलेटेड हैं बीज उत्पादन तकनीक से, जो आप किसान भाइयों को बताना चाहेंगे सर?
0: अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में यही है कि उसके बाद एक तो जो कटाई का काम है वो हम मशीन से ना करें, बीज के खेत का कभी भी मशीन से कटाई नहीं करें धान की, उसको हाथ से कटाई करें, हंसिया से जो हम काटते हैं परंपरागत तरीके से वो उसी तरीके से कटाई करें, और उसको 2-3 दिन खेत में छोड़ दें, ताकि वो पूरी जो नमी है, करीब 18% नमी होनी चाहिए कटाई के समय में, और जब आप उसको फिर 2-3 दिन वहाँ छोड़ेंगे, फिर थ्रेश करेंगे, उसको अच्छे से सुखा लें, जो उसकी मड़ाई करते समय ये ध्यान रखें किसान भाई के जो थ्रेशिंग फ्लोर जहाँ पे आप, या वो जगह जहाँ पे आप थ्रेशिंग कर रहे हैं, मड़ाई कर रहे हैं, दाना निकाल रहे हैं, वहाँ पे कोई किसी भी तरह की कोई दूसरी प्रजाति या दूसरा किस्म का

0: ढेर ना रखा हो, वो काट के वहाँ रखा ना गया हो, उसको साफ रखें उस जगह को, जिससे कि किसी भी तरह से मिक्स दूसरी किस्म उसमें ना हो पाए। और उसको मड़ाई के बाद, उसकी धोनी करने के बाद में उसको अच्छी तरह से सुखा लें, जिससे नमी जो है वो घट के 12-13% पे आ जाए। जब 12-13% पे नमी आ जाती है दाने की, तो फिर हम उसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा।
1: जी, तो किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे धान के बीज उत्पादन तकनीक को, जिसमें कि विभिन्न पहलुओं पर बातें की गई हैं। आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा। अगले दिन आपसे फिर एक अलग विषय के साथ आपकी खेती से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, हम उनका हल देंगे। तो सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, तो आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: Coco, Kasi.
1: Kasi, Coco, Kasi.
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाले सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना

बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट और पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफ एम

0: रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूँ सुजाता स्मार्ट एनजीओ से, और मैं हूँ इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ है डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर आरसीएच यूपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको एक हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
0: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
1: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है, और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण फैली हुई है, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
0: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहां जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी एएनएम बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ ओपीवी की वैक्सीन भी पिलाई जाती है, और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं, और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल आईपीवी लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग डीपीटी की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजस रूबेला का बूस्टर डोज और जेई की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो डीपीटी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
0: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को।
1: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती है। टीकों की बात करें तो TD का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जो बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
0: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
1: देखिए, इस

सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा सारा खून आता है, उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं रोग से लड़ने की

0: छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
0: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
1: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहां पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1 हजार की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉइज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है, क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
1: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहाँ भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांति है तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
0: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
1: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां

0: 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफलाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
1: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
0: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया। हमारे पास मैपिंग है, हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है, और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं, इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है और इनमें नियत दिवसों में हमारी एएनएम बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं, उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे, और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं, और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
1: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
0: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है, ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं, 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
1: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी की कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
0: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट एनजीओ का धन्यवाद देना चाहूंगा, और मेरा आखिरी संदेश यह है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एएनएम बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, सेहत पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके पास वक्त ही नहीं होता, और आज के समय में जब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। और ऐसे में उनके शरीर में बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है, और विटामिन की कमी यानी कि उनके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव दिखने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि महिला में विटामिन की कमी के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा भी काम करती हैं तो थक जाती हैं, आपको कमजोरी होती है और एनर्जी की बहुत कमी होती है, तो आपको हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। और विटामिन B12 की जब कमी होती है तो आपके RBC कम हो जाते हैं, जिससे शरीर तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। और अगर आपको बता दें तो आपको लगातार थकान तो लगती ही है, साथ ही दिमाग भी धुंधला सा लगता है। आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, और कई सारी महिलाओं को चक्कर भी आते हैं। अगर आपको इन सारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। इसके साथ ही आपके हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं। अगर इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो विटामिन B12 की कमी है, और विटामिन B12 की कमी महिलाओं में बहुत कॉमन है। खासकर जो महिलाएं शाकाहारी खाना खाती हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी है। तो अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके अंदर ये सारे बदलाव, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करें। वैसे इसके अलावा भी और कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे चक्कर आना मैंने बताया, सांस फूलना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, या फिर आपके चेहरे की ग्लो कम हो जाती है, आपका चेहरा पीलापन सा लगता है, जीभ में जलन होती है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी कभी अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जब हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती है या तो फिर धक धक होने लगता है। और ये सारे जो लक्षण हैं वो विटामिन B12 की कमी से जुड़े हुए लक्षण हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे की ग्लो कम हो गई है, आपके चेहरे में थोड़ा पीलापन आ गया है, तो भी ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, इससे स्किन और चेहरा हमारा पीला या बहुत ही फीका दिखने लगता है और हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो कम हो जाता है। जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हमारे दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को भी ये प्रभावित करता है, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं आप को अगर दिख रहे हैं तो आपके अंदर B12 की कमी है। और B12 की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि बैलेंस्ड डाइट अपनाएं, यानी कि डाइट में हरी सब्जियां, दालें, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल और साबुत अनाज शामिल करें। इससे क्या होगा, B, C, D, E जो भी ज़रूरी मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी हमने विटामिन डी और ई के बारे में भी बात की, सी के बारे में भी बताया आपको। अगर आपके अंदर विटामिन B7 की कमी है या फिर विटामिन ई की कमी है तो आपके बालों का टेक्सचर बदलने लगता है, आपके बाल काफ़ी रफ हो जाते हैं, आपकी स्किन भी रफ हो जाती है और आपके नाखून भी आसानी से टूटने लगते हैं। और अगर बात करें विटामिन डी की कमी की वजह से आपके बाल झड़ते हैं, आपका मूड स्विंग्स होता है, हड्डियों का दर्द होता है आपको, आप अगर उठेंगे बैठेंगे भी तो आपकी हड्डियां जो होते हैं वो चटकने की आवाज़ आएंगी, तो ये जो लक्षण दिखते हैं वो विटामिन डी की कमी से दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें विटामिन सी की, अगर विटामिन सी आपके अंदर कम है तो मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम, गला खराब हो जाएगा या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और ये लक्षण हालांकि जिंक की कमी से भी जुड़े हो सकते हैं, और ये दोनों ही एलिमेंट्स यानी कि विटामिन सी और जिंक आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि आप इन सारे विटामिन्स का ध्यान रखें। और अगर हम बात करें विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की, तो ये ना मूड रेगुलेशन में मदद करता है। आपका मूड कैसा होगा, अगर आपके अंदर विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आप बहुत

चिड़चिड़े से रहेंगे, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको घबराहट होगी और हो सकता है कि आपको हल्का डिप्रेशन भी हो। कुछ महिलाओं में आप देखते होंगे कि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहती है, उनका मूड कभी काफी अच्छा रहता है, कभी काफी खराब रहता है, यानी कि उनका मूड कभी बैलेंस तरीके से नहीं रहता है। तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है या तो फिर बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। और अगर हम बात करें विटामिन ए और विटामिन ई की, तो विटामिन ए और विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन डल हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, और अगर आपको कोई मामूली सी भी चोट लगती है तो उसे भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई सेल रिपेयर में काफ़ी मदद करते हैं और आपकी स्किन के टेक्स्चर को भी हेल्दी रखते हैं। और अगर इसकी कमी होती है तो आपके मामूली से चोट भी बहुत मुश्किल से भरते हैं, आपकी स्किन काफ़ी डल हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का उपाय क्या है? तो सबसे पहले तो जरूरी होता है कि आप बैलेंस डाइट अपनाएं, यानी कि अपने खान पान में हरी सब्जियां, दाल, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल, साबुत अनाज शामिल करने से आपको विटामिन बी, सी, डी, ई और बहुत सारे जरूरी मिनरल्स बहुत ही नेचुरली मिल जाते हैं आपको। तो ध्यान रखें कि आप, बहुत मुश्किल नहीं है इस डाइट को फॉलो करना, आप हरी सब्जियां अपने खाने में खा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाएं, दूध दही खाएं और साथ ही ड्राई फ्रूट्स खाएं, और मौसमी फल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो मौसमी फल खाएं, साबुत अनाज स्वादिष्ट तरीके से बना के खाएं, और दाल खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि आप धूप में ज़रूर बैठें, और ख़ास तौर से सुबह की धूप बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि मुश्किल होता है थोड़ा, अगर आप कामकाजी महिला हैं, आपको बाहर जाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह की धूप ज़रूर लें। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है, और ये विटामिन डी की कमी को रोकने का सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका भी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, धूप में बैठिए, कोई काम कर लीजिए, धूप में आप बैठते हुए पेपर पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है विटामिन डी की कमी को दूर करने का, धूप में बैठिए रोजाना 15 से 20 मिनट। इसके अलावा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें, आपकी नींद बहुत जरूरी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और नींद नहीं आती है आपको, तो भी आप कितना भी खाएं, कुछ भी करें, वो आपके शरीर में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। जब हम सो रहे होते हैं तो वही वक्त होता है जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा काम चल रहा होता है, जो भी हमने खाया पिया होता है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह अब्सॉर्ब करना होता है वो नींद के दौरान ही होता है। इसके अलावा आप ध्यान करें, योगा करें, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लें, इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपके हार्मोनल बैलेंस सुधरते हैं, जिससे विटामिन्स बहुत ही बेहतर तरीके से आपके शरीर में अब्सॉर्ब होते हैं। यानी कि आप खा बहुत रहे हैं लेकिन आपके शरीर को लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत चिंता करते हुए खाएंगे तो भी उस खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसी वजह से। और अगर आपने ये तय किया है कि विटामिन डी या ई, जो भी विटामिन की आपके अंदर कमी है, उन कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेंगे या कोई दवाई लेने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना बहुत हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, बहुत हानिकारक हो सकता है। आपने सोचा कि कैल्शियम की गोलियां ले लेते हैं या फिर विटामिन B12 की गोलियां ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी गोली नहीं खानी है, डॉक्टर से सलाह लें, और उसके बाद ही अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि खान पान से इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकती हैं तो ज़रूर, वो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा। लेकिन अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो ही आप किसी सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर रहें। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इन कमी के बारे में जानने के लिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें, ताकि अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो गई है तो वो जल्दी ही पता लग जाए और खान पान से ही उसे ठीक किया जा सके। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और अगर आपको चक्कर आ रहा है या फिर कोई भी आम लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसे सीरियसली ले, हल्के में ना ले, और अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी आप अपने अपनों को भी खुश रख पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप अपने अपनों का ध्यान रखेंगी ना, है ना? तो बस इन्हीं बातों के साथ मुझे, यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की, अपना रखे एकदम खास ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। आप बने रहे 90.8 FM ग्रीन के साथ। नमस्कार।

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: खांसी दो खांसी तीन बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, अगर हम अपनी फसलों में जल प्रबंधन का ध्यान रखते हैं और पोषक तत्वों का भी ध्यान रखते हैं और फिर भी अगर कीटों का प्रकोप हो जाता है तो हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। और अभी खरीफ का मौसम चल रहा है तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाई बहनों ने खरीफ सब्जियों की खेती की होगी या करने वाले होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि खरीफ सब्जियों में कीटों से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह, सर है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, सर है कीट विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद। किसान भाइयों, जो आज जो हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो खरीफ मौसम में क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए ताकि आपकी पैदावार जो है अधिक से अधिक हो और आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें।
3: जी बिल्कुल सर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि खरीफ मौसम में मुख्यतः कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती है?
4: हाँ, मुख्यतः किसान भाइयों, आप लोग जो लगाते हैं इस क्षेत्र में तो बैंगन है, उसके बाद भिंडी है, फिर हरी मिर्च हम लोग लगाने के लिए लेते हैं, हरी मिर्च लेने के लिए, फिर कद्दू वर्गीय जो विभिन्न प्रकार के जो लत्तीदार सब्जियां होती हैं उसको मुख्यतः उगाते हैं। ये प्रमुख जो सब्जियां हैं जो इस मौसम में लगती हैं। और इस मौसम में क्या होता है कि चूँकि वर्षा भी होती रहती है और तापमान भी उस ढंग से रहता है तो बड़ी तेज़ी से जो है फसल बढ़ता है और जिसके चलते जो है कि उसकी उत्पादन क्षमता भी अधिक हो जाती है इस मौसम में।
3: सर, सब्जी लगाने से भी पहले कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है, वो कौन कौन से सावधानियां हैं जो किसान भाई बहन रख सकते हैं?
4: हाँ, ये किसान भाइयों, चूंकि सिर्फ कीटनाशी ही निदान नहीं है किसी भी कीट के रोकथाम करने के लिए, तो इसको क्या है कि कुछ बातें जो है कि हम लोग अगर ध्यान में रखें तो मतलब जो कीटनाशी है उसका उपयोग हमको कम से कम करना पड़ेगा। तो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि अब जो गर्मा मौसम है ये समाप्त होने वाला है और खरीफ शुरू होने वाला है या कुछ लोग अब शुरुआत कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में मैं बताना चाहूँगा कि जो फसल चक्र है ये एक बहुत बड़ा वरदान है। फसल चक्र कहे तो मतलब एक ही फसल को अगर हम लोग लगातार एक ही खेत में करते रहते हैं तो जिसके चलते जो है कि हर फसल का कीट अलग अलग होता है और एक ही खेत में चूंकि लगाते हैं तो उनका क्रम कभी टूटता नहीं है, और क्रम जब नहीं टूटता है तो इस कारण से वो हमारे जो भी जो सब्जी की जो फसल है उस पर उनका ज़्यादा आक्रमण होता है और जिसके चलते हमारी क्षति ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जैसे कि जो सब्जी अगर हम लगा रहे हैं जिस खेत में, मान लीजिए एक ही खेत में बैंगन बार बार लगा रहे हैं तो उस खेत में मतलब हर 3 साल के बाद बैंगन ना लगा करके, सब्जी ना लगा करके उसमें अगर हम सस्य वाले जैसे कि धान है या गेहूँ है इसको लगाते हैं कम से कम 1 साल के लिए, तो एक उसका फसल चक्र टूटता है और इस कंडीशन में जो है कि कीड़ों का प्रकोप कम होता है। अब जो दूसरा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो फर्टिलाइजर देते हैं, उर्वरक जो देते हैं, उसकी समुचित मात्रा ही देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों के मन में भ्रांति हो गई है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर देंगे, ज़्यादा उर्वरक देंगे, तो उससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा मात्रा में हम देते हैं तो पौधे की

बढ़वार बड़ी तेजी से होती है, और उस कंडीशन में जब बढ़वार बड़ी तेजी से होती है तो उसके मुलायम पत्तियों को खाने के लिए कीट बड़ी तेजी से आते हैं और आपके मुलायम जो हिस्से हैं जो आपके पौधे के उसको खा करके उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अनुशंसित मात्रा ही जो है यूरिया और DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास का देना चाहिए, ठीक है। और पोटेशियम की मात्रा जहाँ तक हो वो समुचित देने से क्या होता है कि फसल जो पौधे होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार से कीटों से लड़ने से की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब वो जहाँ भी अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं तो उसमें कीटों का प्रकोप कम होता है। तो ये कुछ बातें हैं। अब जो हम लोग मेन एक और चीज़ है, चूँकि ये खरीफ मौसम आने वाला है और खरीफ मौसम में आपको किसान भाइयों को बता दें कि कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने का ये कारण है कि चूँकि वर्षा बराबर होते रहती है और वर्षा बराबर होते रहती है उस ढंग से उसका तापमान मिलता है, साथ में आर्द्रता मिलती है, जिसके चलते जो जो कीट है उसका जीवन चक्र बड़ी तेज़ी से बहुत कम कम टाइम में वो मतलब वृद्धि होता है। और जब कीट की जब वो तेजी गति से अगर उसमें मतलब वो पैदा लेगा फिर बढ़ेगा अपना जीवन चक्र पूरा करेगा तो उस कंडीशन में आपके फसल को भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है वो। तो इस कंडीशन में बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बीज उपचार कैसे करें, तो बीज उपचार कैसे करें और किन चीज़ों से करें, तो ये चूँकि इसमें आपको रोग भी लग सकता है और साथ साथ कीट भी लग सकता है, तो बीज उपचार मुख्यतः दो चीज़ों के लिए हम लोग सभी में करते हैं। तो अगर दो बीज उपचार करना है तो पहला हम लोग को फफूंद नाशी से करना चाहिए। फफूंद नाशी से इसलिए करना चाहिए कि उसके बीज उपचार अगर हम लोग कर देते हैं तो लगभग 21 दिन से एक महीने तक आपकी फसल को विभिन्न प्रकार के रोगों से ये बचाव करता है। तो किससे करें बीज उपचार, तो बीज उपचार करने के लिए जो कार्बेंडाजीम है, कार्बेंडाजीम का ये 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उसमें डालना है और साथ में थोड़ा सा पानी मिला करके और उसको हिला करके और उसको सूखे उसको फर्श पे या जो पॉलीथीन सीट है उसको उसमें छायादार जगह पे उसको सुखाना है और सुखाने के बाद मतलब उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फफूंद नाशी से तो बीज उपचार करें ही करें, फफूंद नाशी से करेंगे तो ये रोगों से बचाएगा, साथ ही साथ आपको कीटों से क्षति को रोकने के लिए भी कीटनाशी से उपचार करना है। तो कीटनाशी से किससे उपचार करें, तो कीटनाशी से उपचार करने के लिए एक गौचो दवा आती है जो इमीडा क्लोरोपिड 70 WP रहता है, ये वेटेबल पाउडर के रूप में रहता है, मतलब ये भिंगाने वाला पाउडर के रूप में रहता है। तो इसकी जो है 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से इसको मिला करके और फिर उसमें पानी उतना ही डालना है जितना कि वो भींग जाए बीज। और इसको कोई अगर आपका बीज पॉलीथीन सीट में है या पैकेट में है तो उसी में थोड़ा सा ये मतलब जो मात्रा मैंने बताया वो कीटनाशी का और थोड़ा सा जल दे करके उसको मिला करके और फिर सूखे फर्श पे मतलब उसको सुखा करके तब इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो ज़मीन में जो विभिन्न प्रकार के जो ज़मीन में जो पाए जाने वाले कीट है तो वो अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो वो हमारे बीज को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं और क्षतिग्रस्त करने के बाद जो है कि बीज का जमाव नहीं हो सकता है। अगर बीज जम भी गया, अंकुरित हो भी गया तो पौधा चूँकि बहुत कमज़ोर रहता है तो उस कंडीशन में पुनः दूसरे कीट का आक्रमण होता है और उसके बाद जो है कि हमारा जो जो जो सब्जी है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बीज उपचार करना चाहिए। उसके बाद जो है कि हम लोग जो जो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है इन चीज़ों को आपको अच्छा से मेंटेन करना चाहिए, जिसके चलते क्या होता है कि ये बढ़वार अगर अच्छा होगा तो इस पर कीट का आक्रमण कम होता है। और पुनः हमारे अपने जो चूँकि ये हम लोग बात कर रहे हैं खरीफ सीजन में तो खर पतवार से हम लोगों को मतलब अपने खेत को फ्री रखना चाहिए, क्योंकि अगर खरपतवार को अगर फ्री नहीं रखेंगे तो ये दो टाइप से हम लोग को नुकसान करता है। पहला तो ये जो हमारे सब्जी के लिए जो भोजन होता है उसको ये खरपतवार खा जाता है और दूसरा क्या है कि हमारे जो कीटों के लिए जो है ये

0: आश्रय स्थल बनता है। वहाँ पे जो कीट है वो छुपे रहते हैं, छुप जाते हैं, और पुनः वहाँ से जब उनको मौका मिलता है तो हमारे मेन जो सब्जियाँ हैं उस पे आकर के उनके पत्तियों को और दूसरे हिस्सों को वो क्षतिग्रस्त करता है। तो ये कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं इसको किसान भाइयों आप लोग ज़रूर करें। दूसरा एक बात और कहना चाहेंगे, जो कीटनाशी जहाँ से भी लेते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाली कीटनाशी लीजिए, अच्छे दुकान से जहाँ पर कीटनाशी मिलता है वहाँ से लीजिए, और आप पक्का कैश में ज़रूर डिमांड करिए, क्योंकि अगर आपके पास ओरिजिनल कैश में रहेगा तो उस कंडीशन में अगर कीटनाशी काम नहीं करता है या कोई परेशानी होती है तो आप उसको जो है आप कहीं पे भी अपने जो ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके पास जाकर के आप उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं कि हमने यहाँ से परचेज किया था और ये काम नहीं कर रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए।
1: यस सर, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब हम सर विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से कीट मुख्य रूप से खरीफ सब्जी में लगते हैं और उनका समेकित प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
0: हाँ, तो हम बात करते हैं पहले ब्रिंजल से, क्योंकि ब्रिंजल जो बैगन बोलते हैं जो किसान भाई बहुत लगाते हैं, अब तो थ्रू आउट ईयर बैगन मिलता है। तो बैगन में किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला चीज़ होती है वो फल एवं तना छेदक जो बैगन का आता है वो उसको परेशान करता है। तो यूं तो किसान भाई उसको कंट्रोल करने के लिए सीधे कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कीटनाशी का इस्तेमाल ना करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि अब ट्रैप है, प्रपंच जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रैप कहते हैं, और फेरोमोन ट्रैप आता है तो उसका आप किसान भाइयों इस्तेमाल करें। ये फेरोमोन ट्रैप की संख्या 8 से 10 होनी चाहिए प्रति एकड़ में, और इसको जो है इसको जो जनरली जो पौधे जो होता है उसके ऊंचाई से 1.5 फीट से ऊंचा पे इसको किसी लकड़ी के द्वारा इसको सेट किया जाता है। और इसमें जो है और इसको कब लगाएं अपने खेत में, तो लगभग जो आपकी जो बैंगन की खेत है बैंगन की जो फसल है उसके 30 दिन के बाद, मतलब जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब कहने का मतलब जो उसके बिचड़ा को जब हम लोग मेन फील्ड में जब लगाते हैं तो जब उसका लगभग 1 महीना हो जाए तो उसमें फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उस समय किसान भाई आप लोग को लगाना चाहिए। और इस जो फेरोमोन ट्रैप है, इस ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा ट्रैप है जिसमें मतलब मादा का सेंट निकलता है और जिसके चलते नर जो कीट है उसमें आके फंस जाते हैं। तो इसमें एक टेबलेट लगा होता है, ये टेबलेट एक सुगंध निकालता है, तो इस टेबलेट को हर 30 दिन के बाद बदल देना चाहिए, क्योंकि 30 दिन के बाद इसमें जो है उसमें जो निकलने वाली गंध होती है उसका असर घट जाता है, कम हो जाता है, इसलिए आपको बदलना चाहिए। तो ये हो गया बैगन के लिए। अब दूसरी बात क्या है कि ये तो हो गया जो हम लोग ट्रैप लगाते हैं, दूसरी बात है कि एक इस ट्रैप के अलावे जो रस चूसने वाले जो कीट है, जैसे कि अगर आपके बैगन के खेत में अगर थ्रिप्स लगा हुआ है तो उस कंडीशन में उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एलो स्टिकी ट्रैप, एलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं कि पीला चिपकदार प्रपंच होता है, एक कार्डबोर्ड में होता है उस वो पीला से पेंट किया हुआ रहता है और उसमें गूंद लगाया हुआ रहता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से फील्ड में अगेन 1.5 फीट की ऊंचाई पे उसको लगाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उसमें वो चिपक जाता है, और चिपक जाने के कारण जो है इसकी संख्या घट जाती है और आपके जो पौधे हैं बैंगन के जो पौधे हैं वो इससे मतलब ये जो रस चूसने वाले कीट से हैं वो बच जाता है और हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गया बैगन के फ्रूट एंड शूट बोर्डर के लिए और उनके जो रस चूसने वाले जो कीट हैं उनके लिए। अब हम आगे बात करते हैं भिंडी के लिए। तो भिंडी में क्या होता है, तो भिंडी में भी क्या होता है, भिंडी का जो फल एवं उसके तना को छेद करने वाला एक कीट होता है, तो ये क्या करता है, इसके जो शिशु होते हैं वो जो शुरुआती कंडीशन में क्या होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है जो भिंडी का, तो उसको काटता है और जब फल निकलने लगता है भिंडी का तो ये भिंडी में इसके जो शिशु है वो छेद करके अंदर घुस जाता है, उसके

अंदर खाता है और पुनः आप किसान भाई देखते होंगे क्या कि उसके एक छेद बनाता है और छेद से आप देखते होंगे कि कुछ बाहर की ओर बुरादा की तरफ निकलता है, मतलब वो उसके मलमूत्र हुआ करते हैं। तो ये भिंडी फ्रूट एंड शूट बॉर्डर है। तो इसको जहाँ तक रोकथाम करने के लिए है, तो सबसे पहले किसान भाई मैं बताना चाहूँगा कि ये जहाँ भी आपको दिखे आपके अगर भिंडी में ऐसा कहीं दो चार अगर आपके किसी किसी भिंडी के पौधे में दिख रहा है तो उसको तोड़ लेना चाहिए या काटते हैं अब जैसे भी भिंडी को फल को काट करके और उसको मिट्टी के अंदर दबाना है। सेम केस बैंगन के केस में भी करना चाहिए। फील्ड में कभी भी उसको जो काना है या जो भी है जो क्षतिग्रस्त जो है इन कीटों के द्वारा उसको तोड़ करके फील्ड में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसको छोड़ने से क्या होता है, इसमें कीट और रहते हैं और ये क्या होगा कि फिर से उस कीट से बहुत सारे कीट निकल करके उनके जो शिशु हैं या उनके वयस्क हैं वो निकल करके आपके जो दूसरे पौधे हैं उनको वो क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसलिए उसको आपको कहीं एक जगह जमा करके मिट्टी में दबा देना है। अब उसको बात करते हैं दूसरी जो भिंडी के लिए, तो पुनः इसको जो है नीम बेस्ड नीम आधारित जो है कीटनाशी है जो नीम का जो तेल है उसका जैसे 1500 ppm नीम का तेल जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ उसमें स्टिकर मला करके इसको छिड़काव करने से जो है ये भिंडी का फ्रूट एंड शूट बॉर्डर इसे रोक जाएगा। अगर आपकी इन्फेस्टेशन ज़्यादा है तब इसके रोकथाम करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5 SG जो सलवुल ग्रेनुल के रूप में आता है उसको पहले भिंगाना है घुलाना है और घुलाने के बाद इसकी 4 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके आपको जो है कि मुख्यतः जो है कि 4 बजे के बाद इसको आपको छिड़काव करने से जो है इसका जो है कि रोकथाम हो जाएगा। अब जो भिंडी में जो लगने वाले जो दूसरे कीट है तो आप देखते होंगे क्या कि भिंडी के जो पत्ता है उसके नीचे हरा हरा बहुत छोटा छोटा फुंदकी टाइप से जो है वो रहता है। तो ये क्या करता है, ये आपके पत्तियों से रस चूसता है और रस चूसने के बाद क्या होता है धीरे धीरे ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और पीली जब पड़ जाएंगी तो आपकी जो भिंडी का उत्पादन है कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो इसके रोकथाम करने के लिए हम लोग जो येलो स्टिकी ट्रैप अभी बात कर रहे थे, एक येलो स्टिकी ट्रैप या ब्लू स्टिकी ट्रैप इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो संख्या है 1 हेक्टेयर में लगभग 100 स्टिकी ट्रैप को इस्तेमाल करने से जो है कि हम लोगों को कीटनाशी का उपयोग नहीं करना पड़ता है और हमारी जो भिंडी है वो कीटनाशी रहित उत्पादन हो सकता है। अब एक और जो कीट है उसका हम लोग व्हाइट फ्लाई कहते हैं। तो ये व्हाइट फ्लाई ये आपके जो खरीफ मौसम आ रहे हैं इसमें इनकी समस्या किसान भाइयों ज़्यादा आता है। आप चूंकि समझ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है कि सफ़ेद मक्खी किसको बोलते हैं, तो आपके जो खेत में जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली और चितकावर जब दिखने लगे तो यही जो है कि व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो खेत है खेत में बीच बीच में कहीं कहीं देखेंगे कि उसका जो भेन और भेनलेट है जो पत्तियाँ होती है वो हरा रहेगा और भेन और भेनलेट पीला हो जाता है। और जब आप नहीं इसको देखभाल करेंगे कंट्रोल करने के लिए उपाय नहीं करेंगे तो होता है कि पूरे खेत में आपके भिंडी का पूरा पौधा ऐसे ही दिखने लगता है, कभी कभी तो भिंडी भी पीला हो जाता है। तो ये व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और इस ये जो व्हाइट फ्लाई है सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं ये येलो वेन मोज़ेक वायरस एक होता है, एक वायरस को ये ट्रांसमिट करता है। मतलब ये ट्रांसमिट करने का मतलब है क्या कि अगर एक पौधे में हो गया तो इस पे व्हाइट फ्लाई इससे रस चूसेगी और ये जहाँ जहाँ दूसरे पौधे पे जा कर के रस चूसेगी उस पौधे में ये फैल जाता है। तो किसान भाइयों इसको रोकथाम करने के लिए जो पहला जहाँ आप देखें कि अगर जिस पौधे में ये है तो जिस पोर्शन में है उसको ऊपर से काट करके इसको मिट्टी में दबा देना है। अगर पौधे में ज़्यादा फैल गया है तो पूरे पौधे को उखाड़ करके मिट्टी में दबाना है और उसके बाद जो कीटनाशी है जैसे थायोमेथोक्सम 25 WG इसकी 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में साथ में स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करना है। अगर थायोमेथोक्सम उपलब्ध नहीं है देन आप जो है थायोमेथोक्सम 25 WG एक टाड़ा के नाम से भी आता है, एक टाड़ा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा तो इमिडाक्लोपीड 17.8 SL इसकी
ml मात्रा प्रति लीटर पानी में इसको आपको छिड़काव करने से ये जो एलोवेरा मोज़ेक वायरस है ये आप रोकथाम इससे हो सकता है। अब कुछ बात करते हैं जो मिर्च लगा होता है, तो मिर्च में भी

0: क्या होता है, मिर्च में भी आप देखेंगे क्या कि ऊपर के जो पत्तियां होती है वो किकूड़ने लगती हैं, जिसको आप लोग लोकल भाषा में तुकूड़ना कहते हैं। तो ये मुख्यतः रस चूसने वाले कीटों के चलते होता है, और इसके रोकथाम करने के लिए पुनः जो हमने अभी बताया थायोमेथोक्जम या इमिडाक्लोपीड जो जितना मात्रा बताए हैं उसको इस्तेमाल करने से ये आप मिर्च में इसका जो किकुरी रोग है इससे आप लोग बच सकते हैं। किसान भाइयों को बहुत लोग का रहता है कि मैं दवा इस्तेमाल करता हूं उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो इसके लिए ये है किसान भाई को जिसमें हो जाएगा उसको कभी भी सही नहीं हो पाएगा, उसको आपको उखाड़ के हटाना है, दूसरे में ये फैलने से आपको बचाता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, वो काम ज़रूर करता है, लेकिन जो पोर्शन अगर क्षतिग्रस्त हो गया है वो कभी सही नहीं होगा। अब आते हैं कद्दू वर्गीय सब्जी में, तो कद्दू वर्गीय सब्जी में खरीफ मौसम में भी लोग करेला लगाते हैं, उसके बाद खीरा लगाते हैं, कुछ कद्दू भी लगाते हैं। तो इसमें जो है अगर कद्दू की बात करें तो कद्दू में जो लाल भृंग का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उस कंडीशन में जो है अगर हम लोग राख का इस्तेमाल करते हैं तो राख छिड़काव करने से ये इसके भृंग का प्रॉब्लम कम होता है। अगर जहाँ राख नहीं है तो फेन वैलेरेट का जो डस्ट है 5% उसकी जो है 10 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुड़काव करने से उससे हम लोग मतलब बच सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर खीरा में जो शिशु है कैटरपिलर है या शिशु या जो चलने वाले कीट है उसके चलते अगर कोई छेद कर रहा है या फ्रूट फ्लाई लगता है तो अगेन जो है उसके लिए जो क्यू लियो ट्रैप आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्रैप आपके पास उपलब्ध नहीं है देन आप जो है तब आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करके इससे रोकथाम कर सकते हैं। तो ये संक्षेप में जो है मुख्यतः जो भी आपके जो खरीफ फसलों में जो लगने वाली कीट है उनके लिए हमने उपाय बताया है। इसमें देखना आपको ये है कि आपको कैसा कीटनाशी आपको छिड़काव करना चाहिए, नीम बेस से लेकर के हमने रासायनिक का भी नाम बताया है, लेकिन कोशिश किसान भाइयों की यही रहनी चाहिए कि हम कम से कम जहरीला कीटनाशी इस्तेमाल करें ताकि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े। धन्यवाद।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो तरीके बताए उन तरीकों को अपनाकर किसान भाई बहन अपने खरीफ फसलों को खरीफ सब्जियों को बचा सकते हैं कीटों के प्रभाव से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री

सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाले सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाईमिथो 8 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा की पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में। आप सभी को पता है कि कल लास्ट एग्जाम है थर्ड ईयर के सिक्स्थ सेमेस्टर का, और कल है आपके कोर्स APG

0: 3-2-1 का एग्जाम यानी कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट टू रवि क्रॉप्स, और आपके कोर्स टीचर डॉक्टर श्रेया सेन हमारे स्टूडियो में आज के रेडियो रिवीजन के लिए। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आइए मैम रेडियो रिवीजन शुरू करें।
1: डियर स्टूडेंट्स, एपीजी 3-2-1 में बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्रॉप्स जो रिलेटेड हैं रबी क्रॉप से, रबी सीजन से। इसमें जो मुख्यतः क्रॉप है वो है वीट, बार्ले, ओट्स, फिल्पी, लेंटिल, लेथायरस, रेप सीड, मस्टर्ड, लिनसीड। फॉरेज क्रॉप में नेपियर, बाजरा, सरगम, मीज, और कैश क्रॉप में शुगर केन एंड पोटैटो है। इन क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिक चीज जो हम लोगों को ध्यान रखनी होती है वो रखनी होती है क्रॉप का साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ, उसके प्रोजेनिटर्स कौन कौन से हैं, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, और ब्रीडिंग मेथड्स कौन कौन से ऑप्ट करते हैं। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि किस क्रॉप को हम लोग को कैसे डील करना है। जैसे सबसे पहले यदि हम वीट की बात करें तो वीट का साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम एस्टिवम है, जिसका क्रोमोसोम नंबर 42 होता है। इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो एशिया माइनर है। ये एक तरह का सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और इसमें क्लिस्टोगैमी पाई जाती है। यदि हम इसकी इवोल्यूशन की बात करें तो वीट जो है वो एलो पॉलीप्लॉइड नेचर का होता है एंड हेक्साप्लॉइड नेचर का होता है ये, जिसमें कि ए, बी और डी जीनोम पाया जाता है। ए जीनोम की सोर्स की बात करें तो वो ट्राइटिकम मोनोकोकम है, बी का जो सोर्स है वो एजिलॉप स्पीसीज है, और जब ए और बी जीनोम का क्रॉस हो गया था तो उससे बना था ट्राइटिकम टर्जिडम, जिसका कि जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ए ए बी बी है, और डी जीनोम का जो सोर्स है वो ट्राइटिकम टाउची है। जो आज का कल्टीवेटेड वीट है उसके जीनोम में ए, बी और डी जीनोम पाया जाता है। यदि हम इसमें ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बेसिक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है वो है ब्रीडिंग फॉर हायर यील्ड। तो जब भी आप हायर यील्ड की बात करते हैं तो आपको मेंशन करना होगा कि हायर यील्ड के लिए कौन कौन से ट्रेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पाइकलेट लेंथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स, नंबर ऑफ सीड पर स्पाइकलेट, इंक्रीज इन सीड साइज, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यील्ड के इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर ब्रीडिंग फॉर अर्लीनेस, ब्रीडिंग फॉर डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस। तो डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस की जब भी आप बात करें तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैसे मेजर डिजीजेस हैं जिसके कारण की वीट में लॉसेस होते हैं, जैसे कि रस्ट हो गया, स्पॉच ब्लॉच हो गया। यदि आप इंसेक्ट की बात करें तो उसमें जो मेजर इंसेक्ट है वो है फॉल आर्मी वॉर्म, एफिड्स, सकिंग पेस्ट, जो भी है। वीट में मेजर अभी जो इशू चल रहा है दैट इज ब्रीडिंग फॉर एबायोटिक स्ट्रेसेस। इसमें जो मेजर एबायोटिक स्ट्रेस है दैट इज हीट एंड ड्रॉट। ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी, क्वालिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यदि हम क्वालिटी की बात करें तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो वीट का होता है वो डिपेंड करता है ग्रेन वेट, ग्रेन के हार्डनेस, ग्रेन के साइज, शेप एंड कलर पे। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, टेस्ट वेट को हम लोग हेक्टोलीटर मास से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वीट के दो कलर्स होते हैं बेसिकली, रेड वीट एंड व्हाइट वीट। तो रेड वीट इज कंसिडर्ड मोर सुपीरियर देन व्हाइट वीट। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो वीट में जो मेजर प्रोटीन पाया जाता है डैट इज ग्लूटेन। ग्लूटेन के कारण ही बेकिंग हम अच्छे से कर सकते हैं, और ग्लूटेन का जो मेजरमेंट होता है डैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंटेशन वैल्यू। ब्रीडिंग मेथड्स की बात करें तो वीट में जो मेजर ब्रीडिंग मेथड्स है दैट इज प्योर लाइन सेलेक्शन, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, बैक क्रॉस मेथड, म्यूटेशन ब्रीडिंग, मल्टी लाइन ब्रीडिंग एंड इवन हाइब्रिड ब्रीडिंग। तो यदि मल्टी लाइन्स जब भी आप एक्सप्लेन करो तो यू हैव टू मेंशन द क्लीन एंड डर्टी, क्लीन क्रॉप अप्रोच एंड डर्टी क्रॉप अप्रोच एंड द मेथड्स। जैसे कल्याण सोना की काफ़ी सारी मल्टी लाइन डेवलप की गई है तो यू हैव टू कोट एग्जांपल इन ईच ब्रीडिंग मेथड कि कौन कौन सी वैरायटीज किस ब्रीडिंग मेथड से डेवलप की गई है। म्यूटेशन ब्रीडिंग में जो सरबती सोनोरा है एंड पूसा लर्मा, यू हैव टू मेंशन द सोर्स ऑफ म्यूटाजेन एंड एग्जांपल्स ऑफ कोर्स। यदि हम हाइब्रिड वीट की बात करें तो हाइब्रिड वीट कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। इसके जो मेजर रीजन है वो ये है कि आपको डाइवर्स एनवायरमेंट के अक्रॉस हेट्रोसिस नहीं मिलता है, और इसमें फर्टिलिटी रिस्टोरेशन का भी इशू है। मोर ओवर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाता है। नेक्स्ट क्रॉप हमारा है बार्ली। बार्ली का साइंटिफिक नेम हॉर्डियम वल्गारे है और इसका क्रोमोसोम नंबर 14 है। इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन वेस्टर्न एशिया या इथोपिया है। प्रोजेनेटर की बात करें तो ये हॉर्डियम स्पॉन्टेनियम है। बार्ली बेसिकली दो तरह का होता है, टू रोट बार्ली एंड सिक्स रोट बार्ली। यदि टू रोट बार्ली का हम एग्जाम्पल दें तो दैट इज हॉर्डियम स्पॉन्टेनियम एंड हॉर्डियम डिस्टिचम। सिक्स रोट बार्ली का एग्जाम्पल दें तो दैट इज हॉर्डियम वल्गारे। तो बार्ली में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है बल्बोजम मेथड को एक्सप्लेन करना। बल्बोजम मेथड मेथड जो है वो क्रोमोसोम एलिमिनेशन टेक्निक है, जिससे कि आप किसी भी स्पीसीज को यदि हॉर्डियम बल्बोसम से क्रॉस करेंगे तो इन F1 जनरेशन जैसे ही उसका एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है उसके कुछ दिन के बाद जो हॉर्डियम बल्बोसम का है वो क्रोमोसोम वो

एलिमिनेट हो जाता है और आपको रैपिडली जो होता है वो एक हैप्लॉइड प्लांट मिल जाता है, और जैसे ही आप क्रोमोसोम डेवलप करोगे तो 100% होमोजाइगस प्लांट मिल जाता है। ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड नेचर का होता है, और इसका जो मेजर ब्रीडिंग मेथड्स है दैट इज प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्रॉप है हमारा ओट्स। ओट्स का साइंटिफिक नेम एवेना सटाइवा है, जिसका क्रोमोसोम नंबर 42 होता है। ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है।

करें तो इसमें जो मेजर डिजीज लगती है वो फ्यूजेरियम विल्ट लगती है। इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन चिकपी एंड काबली पी, तो इसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, फ्लावर कलर में डिफरेंसेस है, सीड साइज में डिफरेंसेस है, तो वो आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। जो बेसिक ब्रीडिंग मेथड इस्तेमाल होता है इसमें पेडिग्री और बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड का इस्तेमाल होता है। अब हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में आपको पढ़ना है लेंटिल, लेथायरस पी। लेंटिल में जो है वो आपका दो तरह का लेंटिल होता है, दैट इज माइक्रोस्पर्मा एंड मैक्रोस्पर्मा, जो कि सीड के बेसिस पे है। जो छोटी सीड वाली मसूर होती है वो माइक्रोस्पर्मा होती है और बड़ी सीड वाली को मैक्रोस्पर्मा बोला जाता है। मसूर में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं जिसको कि कहते हैं ट्रिप्सिन। इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो साउथ वेस्ट एशिया है। इसका साइंटिफिक नेम लेंस कुलिनारिस है और क्रोमोसोम नंबर 14 है। दाल बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें 24-28% प्रोटीन होता है अलॉन्ग विथ आयरन। मटर का साइंटिफिक नेम जो है पीसम सेटाइवम है, क्रोमोसोम नंबर 14 है, और लेथायरस का भी साइंटिफिक नेम लेथायरस सेटाइवस विथ क्रोमोसोम नंबर 14। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है पी में मेजर इशू डिजीज का कौन सा होता है, दैट इज पाउडरी मिल्ड्यू, और लेथायरस में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कौन सा प्रेजेंट होता है, दैट इज BOAA जो कि न्यूरोटॉक्सिन है। जब भी हम लेथायरस ब्रीडिंग की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि ब्रीडिंग फॉर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड। अब जो मेजर ऑयल सीड क्रॉप है दैट इज रेपसीड एंड मस्टर्ड। रेपसीड एंड मस्टर्ड जो है यदि हम इसकी साइंटिफिक नेम की बात करें तो दैट इज ब्रासिका स्पीसीज। इसमें तीन अलग अलग तरह के स्पीसीज होते हैं, ब्रासिका निग्रा, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस या जिसको ब्रासिका रैपा भी बोलते हैं, ब्रासिका ओलेरेसिया। ब्रासिका के इवोल्यूशन को नागा हेरू ने दिया था और इस इवोल्यूशन का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि हम ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस की बात करें तो इसके जीनोम का कंपोजिशन AA होता है और क्रोमोसोम नंबर इसका 20 होता है। ब्रासिका निग्रा का जीनोम BB होता है, क्रोमोसोम नंबर 16 होता है, और ब्रासिका ओलेरेसिया का जीनोम C होता है और क्रोमोसोम नंबर 18 होता है। ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस और ब्रासिका निग्रा के क्रॉस से बनता है ब्रासिका जेंसिया, जिसको कि हम लोग इंडियन राई भी बोलते हैं, और इसका जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन AABB होता है विथ क्रोमोसोम नंबर 36। ब्रासिका निग्रा और ब्रासिका ओलेरेसिया के क्रॉस से बनता है ब्रासिका कैरिनेटा, जिसका जीनोमिक कंपोजिशन BBCC होता है और क्रोमोसोम नंबर 34 होता है। ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस और ब्रासिका ओलेरेसिया के क्रॉस से बनता है ब्रासिका नापस, जिसका कि जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन AACC होता है और क्रोमोसोम नंबर 38 होता है। अब यदि हम इसकी नेचर ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं, कुछ सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। तो यदि ब्रासिका में जो तोरिया, तारामीरा और ब्राउन सरसो है वो क्रॉस पॉलिनेटेड नेचर का होता है और ये सेल्फ इनकम्पैटिबल होता है, जबकि यदि येलो सरसो की हम बात करें, इंडियन सरसो की बात करें, तो ये सेल्फ कंपैटिबल होता है और सेल्फ पॉलिनेटेड नेचर का होता है। ये ध्यान रखना जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो स्पोरोफाइटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है मस्टर्ड में, और इसका जीन एक्शन जो होता है वो डोमिनेंट होता है। मस्टर्ड में एक चीज और भी ध्यान रखना है कि इसमें जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है दैट इज इरोसिक एसिड एंड ग्लूकोसिनोलेट। तो इस एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को रिड्यूस करके बनाया गया कनोला। कनोला मस्टर्ड की वो वैरायटी है जिसमें कि इरोसिक एसिड और ग्लाइसिनोलेट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, जीरो टाइप एंड 00 टाइप। तो जो जीरो टाइप होता है उसमें क्या होता है, या तो इरोसिक एसिड कम होगा या ग्लाइकोसिनोलेट कम होगा। इसके एग्जाम्पल्स यदि आप देखो तो एग्जाम्पल्स हैं पूसा करिश्मा, पूसा मस्टर्ड 21, PM24 एंड PM22। वही यदि 00 मस्टर्ड की बात करें तो इसमें दोनों इरोसिक एसिड भी कम होता है जो कि less than 2% होता है, और ग्लूकोसिनोलेट की बात करें तो वो भी कम होता है, दैट इज less than 30 micromole per gram। इसका एग्जाम्पल है पूसा 00 मस्टर्ड 31। मस्टर्ड में एक और फेनोमिना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज बर्निज बर्स्टा सिस्टम ऑफ मील स्टर्लिटी जो पाई जाती है। तो बर्निज जो है वो जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्टर्लिटी के लिए, जो कि आइसोलेट किया गया है फ्रॉम बैक्टीरिया बेसिलस एमाइलोलिक्यूफेसियंस। ये जो होता है ये आपका बेसिकली टेपिटम के सेल्स में एक्सप्रेस होता है जो कि स्टर्लिटी काउज करती है, और बर्स्टार जीन जो है वो भी बेसिलस एमाइलोलिक्यूफेसियंस से आइसोलेट किया गया है, और इसका मेजर जो काम होता है वो होता है फर्टिलिटी को रिस्टोर करना। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है

0: दैट इज शुगर केन. शुगर केन में नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. शुगर केन के टाइप्स पूछे जाते हैं, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में बेसिकली जो ग्रो होता है डैट इज सकैरम बारबेरी, सकैरम साइनेसिस, और जो बेसिकली जो न्यू जो शुगर केन की ओरिजिन है वो न्यू जीनिया में हुई है. जो नोबलाइज शुगर केन बोलते हैं डैट इज सकैरम ऑफिसिनारम को बोलते हैं, जिसका क्रोमोजोम नंबर 80 होता है. प्रोजिनेटर की बात करें तो इसके प्रोजिनेटर सकैरम रोबस्टम है. शुगर केन के फ्लावरिंग के लिए बहुत ही वार्म नाइट चाहिए, ह्यूमिड कंडीशन चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ शुगर जो कि सिर्फ और सिर्फ TNAU कोयम्बटूर में अवेलेबल है. इसलिए मेजर जो ब्रीडिंग का काम होता है वो TNAU कोयम्बटूर में होता है. यदि किसी को भी कोई भी क्रॉसेस अटेम्प्ट करना है तो दैट शुड बी डन एट शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर. पोटैटो की बात करें तो पोटैटो का क्रोमोजोम नंबर 48 होता है और साइंटिफिक नेम इसका सोलानम ट्यूबरोसम होता है. इट मे बी आइदर डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और पेंटाप्लॉइड. इसकी भी जो फ्लावरिंग होती है वो फ्लावरिंग आपकी बेसिकली कुफरी में होती है. तो जो भी ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी जिसको भी ब्रीडिंग का वर्क करना होता है, दैट शुड बी डन एट कुफरी, हिमाचल प्रदेश. इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो साउथ अमेरिका है या पेरू भी बोलते हैं. प्रोजिनेटर जो है वो सोलानम स्टीनोमम है. इसका इवोल्यूशन की बात करें तो सोलानम स्टीनोमम का डबलिंग के कारण जो है नेचुरली कल्टीवेटेड टेट्राप्लॉइड दैट इज सोलानम ट्यूबरोसम का डेवलपमेंट हुआ है. इसके बाद जो अपने को पढ़ना है वो फॉरेज में पढ़ना है. फॉरेज में जो बेसिकली ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो है आपका नेपियर बाजरा, उसके बाद फिर फॉरेस्ट सॉर्गम्स. और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली ये पूछा जाता है कि सॉर्गम में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसको SCN बोलते हैं या दूरीन भी बोलते हैं उसको. और कुछ विशिष्ट बातें जो ध्यान देनी है वो ये है कि ब्रीडिंग मेथड्स, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में कौन सा ब्रीडिंग मेथड होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में कौन सा ब्रीडिंग मेथड होता है. तो यदि हम ध्यान दें तो सेल्फ पॉलिनेटेड में बेसिकली जो आपका होता है वो प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री, बल्क मेथड, बैक क्रॉस मेथड, सिंगल सीट डिसेंट मेथड होते हैं. जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है वो बैक क्रॉस मेथड और पेडिग्री मेथड होता है. जब भी आप इन मेथड्स को एक्सप्लेन करें तो कोशिश करें विद डायग्राम आप उसको एक्सप्लेन करें और हर मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर मेंशन करें. आपके कोर्सेज में ब्रीडिंग फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस भी है. तो इसमें जब भी आप लिखे, जैसे ब्रीडिंग फॉर बायोटिक रेजिस्टेंस में बेसिकली ब्रीडिंग फॉर डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस आता है, और एबायोटिक में आपका ड्रॉट, हीट स्ट्रेस, फ्लड, वाटर लॉगिंग, चिलिंग स्ट्रेस, फ्रिज स्ट्रेस, ये सभी आते हैं. तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका स्क्रीनिंग टेक्निक और ब्रीडिंग मेथड्स आप क्या क्या ऑप्ट करते हो. एक और इम्पॉर्टेंट है बरसीम. बरसीम में ये चीज़ पूछा जाता है कि ट्रिपिंग किस में पाया जाता है. तो ट्रिपिंग जो है वो बरसीम में पाया जाता है ताकि पॉलिनेशन इंश्योर हो. जब भी आप क्रॉस पॉलिनेशन का मेथड बताएं तो उसमें ध्यान रखें जो बेसिक मेथड आता है वो पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट का आता है, जिसमें आपका रिकरेंट सिलेक्शन है. रिकरेंट सिलेक्शन के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर GCA, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर SCA एंड रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन. हर मेथड्स का अपना एडवांटेज है. नेक्स्ट आपको देखना है आइडियोटाइप. कुछ कुछ क्रॉप्स जैसे वीट, मेज, कॉटन, इन सब का आइडियोटाइप भी पूछा जाता है, तो ये आइडियोटाइप का भी ध्यान रखना है. क्वेश्चन रिलेटेड आता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन से भी. तो जब भी आप हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन लिखे तो ये ध्यान दें कि उसमें जो ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन का इस्तेमाल हो रहा है उसको कैसे मेंटेन करना है, हाइब्रिड कैसे बनाना है, ये सब चीज़ डायग्रामेटिकली मेंशन करें. तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. इन सबको ध्यान रखिए और प्रिपेयर कीजिए एग्जाम के लिए. थैंक यू.
1: थैंक यू सो मच मैम. उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा. तो आप कल बिना हेजिटेशन के एग्जाम दीजिए और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक.

तैयार है आम के अद्भुत संसार से रूबरू होने के लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लेकर आ रहा है राष्ट्रीय आम समागम 2026, जिसका आयोजन 27 से 28 जून तक किया जाएगा। आइए और देखिए देश भर की सैकड़ों आम किस्मों की आकर्षक प्रदर्शनी, जहां स्वाद, सुगंध और रंगों का अनूठा संगम आपका स्वागत करेगा। इस विशेष आयोजन की थीम है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि का संगम। आम समागम में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम प्रेमियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण। देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होगा किसान वैज्ञानिक सम्मान समारोह, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट आम उत्पादकों को बेस्ट मैंगो फार्मर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महिला आम उत्पादकों एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, यदि आपके बाग में उत्कृष्ट गुणवत्ता के आम हैं या आपके पास किसी विशेष किस्म के आम उपलब्ध हैं, आप भी आम प्रदर्शनी में अपनी आम की किस्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार एवं नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, आम प्रेमियों के लिए होगा एक विशेष आकर्षण, मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता। इस रोमांचक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अपने श्रेष्ठ आमों के साथ आइए, प्रदर्शनी में भाग लीजिए, विशेषज्ञों से सीखिए, नई तकनीकों को जानिए और आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर पाइए। 27 से 28 जून राष्ट्रीय आम समागम 2026 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
1: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। साथ ही अनुमान है कि 20 से 24 जून के दौरान 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र धान की मध्यम अवधि वाली किस्में हैं संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान और राजेंद्र श्वेता और सुगंधित किस्में जैसे राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती। किसान भाई बहनों, इन किस्मों की नर्सरी में बुआई जरूर कर लें। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालना चाहिए। और आपको बता दें, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी जैसी फसलों की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही खर पतवार नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें और अगर आपकी सब्जियों में पत्ती खाने वाली सुंडियों या फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 cc की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो खरीफ सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, सीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान दें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से आपके पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट और पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, गलाघोटू और लंगड़ी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, इसलिए सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले ध्यान दें कि करीब 2 घंटा नए गेहूं के भूसा को पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा की पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में। आप सभी को पता है कि कल लास्ट एग्जाम है थर्ड ईयर के सिक्स्थ सेमेस्टर का, और कल है आपके कोर्स APG 321 का एग्जाम, यानी कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट टू रबी क्रॉप्स। और आपके कोर्स टीचर डॉक्टर श्रेया सेन हमारे स्टूडियो में आज के रेडियो रिवीजन के लिए। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आइए मैम, रेडियो रिवीजन शुरू करें।
2: डियर स्टूडेंट्स, APG 321 में बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्रॉप्स जो रिलेटेड है रबी क्रॉप्स से, रबी सीजन से। इसमें जो मुख्यतः क्रॉप है वो है व्हीट, बार्ले, ओट्स, फिल्पी, लेंटिल, लेथायरस, रेपसीड, मस्टर्ड, लिनसीड। फॉरेज क्रॉप में नेपियर, बाजरा, सरगम, मीज, और कैश क्रॉप में शुगर केन एंड पोटैटो है। क्रॉप्स के बारे में